FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 21 जून वर्ष 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज के विचार का विषय है करे योग रहे निरोग।
2: करे योग रहे निरोग। योग भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। योग अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति को खोजने के बारे में एक कला है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से बचने में मदद करता है। योग हजारों सालों से भारतीयों के जीवन शैली का हिस्सा रहा है। ये भारत की अमूल्य धरोहर है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका प्रचार प्रसार आज हो चुका है। प्राचीन समय से मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण और अनमोल उपहार है योग, जो जीवन भर मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ कर रखता है। ये शरीर और मस्तिष्क के बीच

0: सामंजस्य स्थापित करने और इन दोनों को संयुक्त करने का सबसे अच्छा अभ्यास है। योग एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति के सभी आयामों पर, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर सुदृढ़ बनाता है। आज बहुत सारे लोग स्वास्थ्य बेहतर रखने या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए योग का अभ्यास करते हैं। माना जाता है कि योग का उद्गम अत्यंत प्राचीन काल से है। हजारों सालों में योग लगातार बदलता और विकसित होता रहा है। योग को लेकर देश विदेश में अनेकों शोध और अध्ययन हुए हैं जो इसकी महत्ता को साबित करते हैं। दुनिया भर में माना जाने लगा है कि योग एक वैज्ञानिक विधि है जो हमारे जीवन में गुणात्मक बदलाव ही नहीं ला सकता है, बल्कि हमारी जीवन शैली को बेहतर कर सकता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार वेदों को ज्ञान का मुख्य आधार माना जाता है और इसी वैदिक ज्ञान परंपरा द्वारा योग का अवतरण हुआ है। योग के कई शाब्दिक अर्थों के अतिरिक्त इसका सारभूत तात्पर्य है स्वयं का वास्तविक स्वरूप पहचानते हुए ईश्वर से जुड़ जाना। योग को 8 अंगों में विभाजित किया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के इन 8 अंगों का क्रमानुसार नियमित अभ्यास करना ही इसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। योग मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त करता है। योग हमें शरीर और मन का रूपांतरण करना सिखाता है, जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे जीवन में भी कई सकारात्मक बदलाव लाता है। योग का अभ्यास हमारे मन को संयमी बनाता है, हमें अनुशासन समझाता है, हमारे मन को तैयार करता है। योग हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। योग उनके लिए है जो अपना जीवन सच में बदलना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, और हमें तय करना है हम जीवन में योग अपनाएं और स्वस्थ रहें। योग के हैं जब इतने सारे लाभ, तो क्यों ना अपनाएं अपने जीवन में योग। और हम तो यही कहना चाहेंगे, योग भगाए रोग, नित्य इसको अपनाएं, इस पथ चलने वाले जग में खुशियां पाएं।
1: करें योग, रहें निरोग, इस विषय पर विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे आज के विचार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

श्री हरि विष्णु का पालनकर्ता स्वरूप अत्यंत मनोहारी है, जिन्हें नारायण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नारायण लक्ष्मी रमण है, निधिपति हैं, जो सदैव हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस नश्वर संसार में हरि नाम की औषधि का मूल जो भी जीव समझ पाया है, उसने स्वयं के भीतर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया है। आज की आराधना का पहला भजन नारायण वंदना के साथ।

शिव सृजन संहार है शिव, शिव क्रोध उपहार है शिव, शिव से है सब कुछ धरा पर आत्मा का आधार है शिव, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है।

जीवन में दया को धर्म का मूल माना गया है। अपने भीतर दयालुता के गुण को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि दयालुता आपको सम्मान दिलाती है। दया से जुड़े छोटे से भी छोटा कार्य प्रार्थना में झुकने वाले हजारों मस्तकों को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। दयालुता के इस भाव से सदैव ईश्वर की कृपा की अमृत वर्षा बरसती रहती है।

जो भजे हरि का नाम सो ही भव से पार है, हरि हरि हरि जपिए इस नाम की महिमा अपरम पार है।

दिलराज कौर, भाई त्रिलोचन सिंह रागी, ऋचा नारायण, अनीता प्रसाद और साथियों के स्वरों में अभी आपने सुने भक्ति वंदन। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कोलकाता पश्चिम बंगाल भी चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर

0: विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योग अभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: Thank you, Namaste. And we can see that the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Honorable Governor of West Bengal, Shri Ravindra Narayan Ravi, and the Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari, have arrived at the iconic Red Road. And the Honorable Prime Minister will be leading the nation today, and he will personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here, and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
0: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं, और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
2: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
0: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
3: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिने

0: सीटों का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर, गंगोत्री से गंगा सागर तक आप अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आर एन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुसियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, आमादेर मध्ये उपविष्ट हुएछेन विश्वेर सबचेये जनप्रिय नेता भारतवर्षेर यशस्वी प्रधानमंत्री एवं जार हाथ धरे सिटी अफ जय एई कल्लोलनी तिलोत्तमा कलकाता तथा पश्चिमबंगे जो कम्स टू होम जो बंगे फिरे एलो से माननीय नरेंद्र मोदी जी के 11 कोटी पश्चिमबंग वासीर पक्ष थेके राज्य सरकारेर पक्ष थेके हृदय थेके स्वागत अभिनंदन श्रद्धा कृतज्ञता एवं प्रणाम निवेदन करछि। महामहिम राज्यपाल माननीय आर एन रवि जी रयेछेन, भारत सरकारेर माननीय स्वाधीन दायित्व प्राप्त राष्ट्रमंत्री प्रताप राव जाधव जी रयेछेन एवं सम्मानित व्यक्तिबर्ग मीडियार बंधुरा एवं योग प्रेमी जनगण रयेछेन। माननीय प्रधानमंत्रीर नेतृत्वे एकटु परेई एकटि सुविशाल बृहत् ऐतिहासिक कार्यक्रम होते चलेछे। इतिमध्ये कार्यक्रमेर आज के जे आंतर्जातिक योगा दिवस जा माननीय प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीते छड़िए दिएछेन, आमादेर पश्चिमबंगे एतदिन एर संगे राज्य सरकार बा सरकारी उद्योग जुक्त छिल ना, কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন তারা যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে এবারে বন্দে যোগ যোগ পূজা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রায় 257,000 রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান এই যোগে পার্টিসিপেট করছে। আমার বিশ্বাস আজকে পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে, দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, কোটিরও বেশি মানুষ এই যোগ উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। আর কলকাতা বিগত দিনের সব রেকর্ড ভেঙে লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো, 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন, যোগই একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগই আনন্দ, যোগই প্রেম, এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, বেদ উপনিষদ গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বাড়াবো না, ইতিহাস আমরা জানি, আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026 আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি।
2: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 257,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than 1 crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais, where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
4: राज्यपाल श्री आर एन रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के

कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।

और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग।

उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मीन्स दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50। दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प्स अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड कीप एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिसीज अवे। मोर ओवर विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड। द मोर वी नो अबाउट अवर सेल्फ द बेटर वी कैन मैनेज अवर सेल्फ। दैट इज वाई योगा फॉर हेल्दी एजिंग दिस थीम मस्ट बी सीन एज वन फॉर पीपल ऑल एजेस नॉट जस्ट फॉर द एल्डरली। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य

0: बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जन समूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं।

0: रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं। तो उसके लिए

0: ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
1: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है, ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
0: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से।
1: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्री गण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Manish Sarnaji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
3: Yes, actually asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है, मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं। तो
1: जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना, जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारी टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरे जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
0: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
0: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
1: जी।
0: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं
1: जी।
0: वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि
1: जी। मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
3: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
3: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
3: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है
1: जी।
3: आज देखा कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी।
3: yes, and...
1: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
0: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
1: जी।
0: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
2: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almes in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ, तो अर्ध चक्रासन है हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है।

0: जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहाँ पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित है, आमंत्रित अतिथि उपस्थित है माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है जी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इम्प्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइन्ड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, से हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
2: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और and now about this asana, अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एट नंबर ऑफ बेनिफिट्स है, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता
2: है। Now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
0: जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी
1: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियास है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन,
1: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसनास इन द परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
1: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ है,

0: टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी।
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
1: जी।
0: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
1: जी। गुरु पुनेश सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता मैं, बहुत ही सुंदर।
1: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन। इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
1: जी,
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
0: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
1: जी। सेतु बंधासन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह के

0: क्रिया है शारीरिक, अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है, यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्धहलासन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्धहल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर बैठकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी,
1: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु
0: जी
1: विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन
0: जी
1: सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
0: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
0: जी
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप
0: जी
2: कितना भी सख्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखरा बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है, हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग दी कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
1: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और
0: जी
1: योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो
0: जी
1: कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने

0: आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो
1: जी
0: योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही। जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं। और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है। उन
1: जी?
0: सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है।
1: जी
0: प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है। आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा
1: जी
0: करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कह रहे हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा।
1: जी
0: मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें, या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी
1: जी
0: कहा गया है, युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेद। मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है डॉक्टर प्रतिमा
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला
1: जी?
0: प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा,
1: जी
0: उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही,
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से नियंत्रित
0: व्यवस्थित
1: कर
0: करता
1: देता है।
0: है।
1: जी और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये।
1: जी
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है,
1: जी
0: ऑक्सीटोसिन हो। तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ
1: जी
0: दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है। तो
1: जी
0: इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो
1: जी
0: हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
0: और बाहर
1: निकालते
0: से
1: हैं।
0: कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि
1: जी
0: अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो
1: जी
0: हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम
0: स्वयं
1: जुड़ते
0: से।
1: हैं, अपने भीतर हम जाते हैं। जी
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज द टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड बिकमिंग वन विद द यूनिवर्स।

0: the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships. And also adjacent to Red Road, there flows the River Ganga, which is also known as Hooghly. And on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there. And in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों. माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो है वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं. 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े. माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए. और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है. देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कम कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं. हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं. और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है. तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है. स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं. आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है. और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है. और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं. और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना. विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं. आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया. इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग. आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना. मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स. मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं. सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से

0: अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई, राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
3: ये आकाशवाणी करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ ढापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रय तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
7: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की कुश्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर

राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: We end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. Three Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका।
2: जय हिंद बच्चों। आया है फिर एक नया रविवार लेकर बच्चों की विविध प्रस्तुतियों की बहार जिनसे सजेगी हमारी आज की बाल वाटिका। फिर इस बार तो प्यारे बच्चों, आज की बाल वाटिका में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत सत्कार और कीजिए स्वीकार अपनी दीदी मेघा रावत का स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज का दिन तो हम सभी के लिए बेहद ही खास है ना, क्योंकि बच्चों आज है फादर्स डे और आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे फादर्स डे तो जरूर मना रहे होंगे, है ना। प्यारे बच्चों, हर बच्चे के लिए उसके पिता आदर्श होते हैं, है ना। प्यारे बच्चों, कहा जाता है पिता से अच्छा मार्गदर्शक तो कोई और हो ही नहीं सकता। पिता केवल एक पिता ही नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। प्यारे बच्चों, माँ के प्यार की चर्चा तो हम अक्सर करते ही रहते हैं, है ना, लेकिन एक पिता का त्याग, संघर्ष और समर्पण किसी से कम नहीं होता। यही कारण है कि हर साल जून माह के तीसरे रविवार फादर्स डे मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, इस अवसर पर लोग अपने पिता को धन्यवाद अदा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और फादर्स डे की शुरुआत किसी सरकार या संगठन ने नहीं बल्कि एक बेटी ने अपने पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए की थी। ये कहानी है अमेरिका के सोनारा स्मार्ट डॉट की, जिनके पिता ने पत्नी के निधन के बाद अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया। अपनी माँ के सम्मान में मनाए जाने वाले मदर्स डे से प्रेरित होकर सोनारा ने सोचा कि पिता के लिए भी एक विशेष दिन तो अवश्य होना चाहिए। यही कारण है बच्चों कि तब से जून माह के तीसरे रविवार फादर्स डे मनाया जाने लगा। प्यारे बच्चों, बच्चों के जीवन में पिता की भूमिका अद्भुत होती है। वे मार्गदर्शक, रक्षक और पालन पोषण करता होते हैं, जो बच्चों को चुनौतियों से पार पाने में हमेशा मदद करते हैं। जिस प्रकार माँ का प्रेम दया करुणा का सागर होता है, तो ठीक उसी तरह पिता का प्रेम उस मजबूत आधार की तरह होता है जो हमारे जीवन को सबल दिशा और सुरक्षा प्रदान करता है। और आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चे फादर्स डे तो बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रहे होंगे, है ना बच्चों। तभी तो बच्चों पापा के लिए कहा गया है, माँ की ममता जितनी गहरी पिता का प्यार भी तो कम नहीं, छुपा रहता है हर शब्द के पीछे वो मौन प्रेम जो कभी दिखा नहीं। सच में बच्चों, पिता न केवल अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं बल्कि वे बच्चों के पहले शिक्षक, मार्गदर्शक और आदर्श भी होते हैं। वे अपने अनुभवों से हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, है ना। तो बच्चों, हमें एक पिता के त्याग समर्पण को वर्ष में केवल फादर्स डे के दिन ही नहीं अपितु हर दिन उनके इस संघर्ष का सम्मान अवश्य करना चाहिए और कुछ ऐसे फादर्स डे मनाना चाहिए

0: तो प्यारे बच्चों, ये तो हुई फादर्स डे पर बहुत सी बातें। और अब बच्चों, क्या आप जानते हैं आज फादर्स डे के साथ साथ और भी है कुछ खास। आज संपूर्ण विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, है ना प्यारे बच्चों। योग को अक्सर हम सभी सिर्फ कसरत या आसनों का एक जरिया मान लेते हैं, है ना। लेकिन बच्चों, अगर बहुत गहराई के साथ देखा जाए तो योग असल में एक साधना है, है ना। योग हमारे शरीर और दिमाग के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। ये हमें स्वस्थ और मजबूत रहने में मदद करता है। हर सुबह जब हम योग करते हैं तो हम पूरा दिन कितना तरोताजा महसूस करते हैं, है ना। योग हमें ध्यान केंद्रित करना भी सिखाता है, है ना। योग हमें शांति से बैठना और स्पष्ट रूप से सोचना भी सिखाता है। और आप नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तो योग पढ़ाई के लिए भी मददगार होता है। यह हमारे शरीर को फिट रखता है, दिमाग को शांत बनाए रखता है, है ना प्यारे बच्चों। योग वास्तव में एक वैज्ञानिक जीवन शैली है जिसका हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष पर गहराई से प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में तेजी से फैल रहे मानसिक रोगों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि योग एक सुव्यवस्थित व वैज्ञानिक जीवन शैली है जिसे अपनाकर अनेक प्रकार के प्राण आघात रोगों से बचा जा सकता है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी योग को एक विषय के रूप में अपनाया जा रहा है। नैतिक जीवन पर भी योग का अभ्यास करने से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्यारे बच्चों, योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है और जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। और आज तो योग का अभ्यास विश्व भर में विभिन्न रूपों में किया जा रहा है और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के अभ्यास के अनेक लाभों के बारे में विश्व भर में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत सहित पूरे विश्व भर में हर साल एक नई थीम के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विभिन्न जगहों पर योग शिविर, सेमिनार और योग प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और लोगों के जीवन में योग के महत्व को भी समझाया जाता है। तो चलिए योग प्राणायाम पर ही हो जाए एक कविता, जिसे लेकर हमारे साथ हैं स्नेहा।
1: नित्य जो करता मानव योग, रहे जीवन में सदा निरोग। चुस्ती फुर्ती यह दिखलाए, आलस उसके पास न आए। तन मन रहता सदा ही स्वस्थ, लगे कभी ना कोई रोग। नित्य जो करता मानव योग, पूरे मन से करे जो ध्यान। पाता है वही सच्चा ज्ञान, जीवन सुखमय बन जाता है। ईश्वर संग होता संयोग, नित्य जो करता मानव योग। कर सकते सब बूढ़े बच्चे, आसन होते सारे अच्छे। अपना लेता है जो इनको उत्तम जीवन लेता भोग, नित्य जो करता मानव योग।
0: ये तो है बच्चों, योग प्राणायाम शरीर के लिए बेहद जरूरी है। तभी तो बच्चों, योग के महत्व को देखते हुए ही हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, है ना। तो चलिए आज अच्छी बात क्रम में आपको मिलवाते हैं योग शिक्षक अजय कनवाल जी से। अजय कनवाल सर, आपका हमारे कार्यक्रम बाल वाटिका में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
0: सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने योग कब से शुरू किया?
2: मैंने योग सबसे पहले 2015 से शुरुआत करी इसकी। योग करने से मुझे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लाभ हुए, आध्यात्मिक लाभ भी मुझे प्राप्त हुआ। और जो काम मैं पहले आसानी से कर नहीं पाता था, उसको आसानी से कर पाया। योग भारत की प्राचीन एवं आध्यात्मिक विरासत है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमें विरासत में मिली हुई है। योग हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। और योग के महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र का पहला ही श्लोक है।

0: योग अनुशासनम, हमारे जीवन में अनुशासन को लाना ही योग है।
1: सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमारा कार्यक्रम बच्चों के लिए ही है, तो बच्चों के लिए योग करना आज के समय में कितना जरूरी है?
0: हर बच्चे के लिए योग आवश्यक है। योग को प्रतिदिन करने से बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। योग करने से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और उनमें अच्छे गुणों का विकास होता है।
1: सर कुछ ऐसे आसन होते हैं जो बच्चों को करने चाहिए, और क्या बच्चों को योग खुद से कर लेना चाहिए या किसी गुरु की उन्हें जरूरत होती है योग सीखने के लिए?
0: बच्चों के लिए ऐसे आसन होते हैं उनको शारीरिक और बौद्धिक रूप से उनका विकास करें, और हमें बच्चों को योग किसी योग टीचर के सानिध्य में ही करना चाहिए। बच्चों को ऐसे आसन करने चाहिए जो उनके शरीर को मजबूत बनाए और उनमें बल को बढ़ाए। और काफी सारे ऐसे आसन हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे सुखासन। सुखासन में बैठने से बच्चे की एकाग्रता शक्ति का विकास होता है, और जैसे वृक्षासन है उससे शरीर मजबूत बनता है, और भुजंग आसन है उससे बच्चों की रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और उनकी लंबाई बढ़ने में भी मदद करता है। और बच्चों के लिए जैसे बालासन है वो दिमाग को शांत रखता है और दिमाग को तेज भी करता है। वज्रासन है वो पाचन शक्ति को सुधारता है।
1: सर मैं आज योग दिवस है तो क्या आप बच्चों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें भी योग सीखना चाहिए, योग से क्या क्या लाभ होते हैं?
0: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हर वर्ष योग की एक थीम होती है, इस बार वैसे योग की थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। जो भी हम योग करते हैं हेल्थी एजिंग के लिए, हमेशा हेल्थ स्वस्थ रहने के लिए करते हैं। और बच्चों के लिए तो योग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ना केवल बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, उनमें एक अनुशासन भी लाता है। और जब हमारे जीवन में अनुशासन होता है तो हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उसको अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और बच्चे जो है, काफी सारे बच्चे आजकल हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और उनका मन इधर उधर भटकते रहता है, इसके लिए तो योग काफी जरूरी है। योग केवल एक आसन नहीं है, योग में काफी सारी चीजें हैं। उसमें महर्षि पतंजलि द्वारा 7 चीजें बताई गई है योग में, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 7 चीजें मिलके योग को पूर्ण करती हैं, लेकिन बच्चों के लिए योग और प्राणायाम ज्यादा जरूरी है।
1: सर आपने योग के विषय में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी हमने अच्छी बात क्रम में योग शिक्षक अजय कनवाल जी से योग के बारे में कितना कुछ जाना, है ना? तो प्यारे बच्चों, आप भी योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। प्यारे बच्चों, ये योग प्राणायाम हमारे जीवन को उल्लास और उमंग से भर देते हैं, और जब हम योग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करने लगते हैं, है ना? तो चलिए आज योग दिवस के इस अवसर पर आप नन्हे मुन्ने बच्चों से ही जान लेते हैं योग पर आपके क्या है अनुभव खास।
2: मेरा नाम पल्लवी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं रोज ताड़ासन करती हूँ, तो हम बच्चों को ताड़ासन जरूर करना चाहिए।
3: मेरा नाम शिवाई है,
4: मुझको योगा करना अच्छा लगता है।
3: मेरा पसंदीदा योगा है शीर्षासन। शीर्षासन करने से हमको सांस लेने से मदद मिलती है और रक्त परिसंचरण तंत्र में भी सहायता मिलती है। आप सभी बच्चों को भी रोज योगा जरूर करना चाहिए, इससे हमें पढ़ाई करने में भी बहुत मन लगता है।
5: मेरा नाम ऋषभ है, मुझे योगा कपाल भांति करना अच्छा लगता है। आप सभी को योगा जरूर करना चाहिए।
6: मेरा नाम अनिकेत है, मैं घर में रोज सुबह जल्दी उठकर योग करता हूँ और मुझे योग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सूर्य नमस्कार करना बहुत पसंद है, इसे करने में मुझे एकाग्रता आती है। इसीलिए आप सभी को योग जीवन में अपनाना चाहिए।

प्यारे बच्चों, अभी आपने वंदे मातरम हमारे देश का ये राष्ट्रीय गीत सुना और आप सभी आकाशवाणी अल्मोड़ा की प्रातःकालीन सभा में इस गीत को तो जरूर सुनते होंगे, है ना बच्चों? लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं इस गीत के रचयिता कौन हैं? वो हैं बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी। प्यारे बच्चों, इन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस गीत का उल्लेख किया है और इसी सप्ताह यानी कि 26 जून को हम मनाएंगे इनकी जयंती। इनका जन्म 26 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के कांठलपाड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके साहित्य में बचपन से ही रुचि रही। वर्ष 1856 में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हो गए। प्यारे बच्चों, बंकिम चंद्र चटर्जी दोनों विधाओं, कविता और उपन्यास में माहिर थे। इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी जिनमें आनंद मठ सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है और इन्हें साहित्य सम्राट के रूप में भी जाना गया है। प्यारे बच्चों, ये बांग्ला साहित्य को आम जनमानस तक पहुंचाने वाले पहले साहित्यकार थे और मृणालिनी, इंदिरा, राधारानी, देवी चौधरानी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक हैं। और बच्चों, इनके द्वारा लिखा गया ये गीत वंदे मातरम न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य प्रेरणा स्रोत बना बल्कि इसने जन जन के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक नई चेतना जागृत की। और बच्चों, इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने संगीत भी दिया और अरविंद घोष जी ने इनकी इस अद्भुत रचना के लिए इन्हें राष्ट्रवाद का ऋषि जैसी उपमा से भी नवाजा। प्यारे बच्चों, इस अमर गीत वंदे मातरम को लिखकर महान साहित्यकार, रचनाकार और स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चटर्जी का 8 अप्रैल 1894 को निधन हो गया। तो प्यारे बच्चों, 26 जून आने वाली इनकी जयंती के अवसर पर बाल वाटिका की ओर से आइए इन्हें करते हैं

0: और अब बच्चों, चूचू करती चिड़िया रानी पर आज नन्ही नंदनी का क्या है कहना, चलिए जानते हैं उनकी इस कविता से।
1: बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी, फिर अंडे से ईगी तू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी, फिर जब उनके पर निकलेंगे उड़ जाएंगे बया बनेंगे हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। ये कविता लिखी है महादेवी वर्मा ने। धन्यवाद।
0: तो प्यारे बच्चों, इन पशु पक्षियों का संरक्षण आप भी जरूर करें और इन प्यारी न्यारी पक्षियों के लिए अपने घर आसपास दाना पानी की व्यवस्था जरूर करें। और अब बच्चों, बहुत से जानवरों पर क्या है कहना नन्हे शिवाय का, चलिए जानते हैं इस कविता से।
2: जंगल में रहता है शेर महान, उनकी ढाल से कांपे मैदान, चीता भागे बिजली साते, उसकी चाल है सबसे नए अंदाज, हाथी चलता धीरे धीरे पर उसकी ताकत दुनिया में जीरे, भालू करता शहद की पेड़ों पर चढ़े बिना रो, हिरन कूदे मस्ती में झूमे, हरियाली है उसका सुकून, बंदर खेले डाल डाल कभी न थके करे धमाल, नदी के पास मगरमच्छ सोए छुपके से शिकार को खोए, रोमड़ी चालाक हर पहेली को कल्पिया

0: तेज।
1: तो प्यारे बच्चों, शिवाय की इस कविता से हमने जानवरों के बारे में कितना कुछ जाना, है ना प्यारे बच्चों? एक संतुलित पर्यावरण हेतु हमें पशु पक्षियों की बेहद जरूरत होती है, जिससे कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत बना रहता है।
2: चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया।
1: प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई पशु पक्षियों पर। और बच्चों, हमारे देश में कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपने क्रियाकलापों से भारत देश को गौरवान्वित महसूस कराया। जैसे शेरे पंजाब कहे जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह को ही देख लीजिए। नेत्रहीन होने के बावजूद अपने शौर्य पराक्रम साहस से गौरव गाथा लिखी, और जिसे इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित किया गया। तभी तो बच्चों, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के लिए कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष एक शासक था ऐसा, जो न सर का ताज सजाया था, सभी को बराबरी का दर्जा देने वाला, भारत माँ का वीर सपूत कहलाया था। तो चलिए बच्चों, आज प्रेरक व्यक्तित्व क्रम में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में विस्तार से जान लेते हैं दित्या से।
3: महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला हुआ था। ये सिख समुदाय के महान योद्धा और पंजाब के पहले सिख शासक थे। इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1799 में लाहौर पर अधिकार करके सिख साम्राज्य की नींव रखी। इनका शासन बहुत ही न्यायप्रिय था। इनकी सेना में सिख, हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के सैनिक शामिल थे। इन्होंने अपने राज्य में एकता, शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर को सोने से मढ़वाया, जो आज पूरी दुनिया में सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इनकी विरासत आज भी जीवित है। इनके सिंहासन को लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है।
1: तो बच्चों, जाना ना आपने दित्या से महान योद्धा रणजीत सिंह के बारे में विस्तार से। प्यारे बच्चों, हमें भी ऐसे महापुरुषों से प्रेरित जरूर होना चाहिए और इनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।
2: देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।
1: और अब बच्चों, देश प्रेम को बयां करती हुई एक कविता लेकर हमारे साथ हैं कोमल।
4: ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तल झुकनित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहक रही है, वह पूर्ण भूमि मेरी, वह सर्व भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है मस्त झाड़ियों में, अमरा या घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मरे पवन सी तन मन सवारती है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, जन्मी जहाँ थी रघुपति, जन्मी जहाँ थे सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई व अंसी पूर्ण गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुरेश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाई, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी।
1: सच कहा कोमल आपने, ये जन्मभूमि हमारी है और हमें अपनी जन्मभूमि मातृभूमि से प्रेम तो अवश्य करना चाहिए और अपने देश की संस्कृति, परंपराओं और विरासत का सम्मान भी जरूर करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आजकल आप सभी की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, है ना? और आप लोग इन छुट्टियों का भरपूर आनंद भी ले रहे होंगे, है ना बच्चों? लेकिन बच्चों, जहां आप इन छुट्टियों में खेल कूद मौज मस्ती कर रहे हैं, तो वहीं आपको इन छुट्टियों का सदुपयोग भी जरूर करना चाहिए। और आज यही बात अपनी कविता में लिए हमारे साथ हैं ललिता।
5: गर्मियों की छुट्टियां आई, खुशियां मनाने को लाई, पर बैठो मत बस ऐसे ही, करो कुछ काम ऐसे भी,

0: पढ़ाई में मन लगाओ, नई बातें सीख जाओ, किताबों से दोस्ती करो, ज्ञान के दीप जलाओ, खेलों में हिस्सा लो, तंदुरुस्त शरीर पाओ, दोस्तों संग खेलो खूब, मिलजुल कर हंसते रहो, माँ बाप की मदद करो, घर के काम में हाथ बढ़ाओ, समय का सही उपयोग करो, जीवन को सुंदर बनाओ। संगीत नृत्य सीखो तुम, कलाओं में मन लगाओ, छुट्टियाँ हैं अनमोल समय, इसे सही ढंग से बिताओ।
1: भाई वाह ललिता, आपने तो अपनी कविता से हमें गर्मियों की छुट्टी का सदुपयोग कैसे करना चाहिए इस बारे में कितना कुछ बता दिया। प्यारे बच्चों, आप भी इन छुट्टियों में मौज मस्ती के साथ साथ इन सभी छोटी छोटी बातों को जरूर

0: समय इसे सही ढंग से बिताओ।
1: भाई वाह ललिता, आपने तो अपनी कविता से हमें गर्मियों की छुट्टी का सदुपयोग कैसे करना चाहिए इस बारे में कितना कुछ बता दिया। प्यारे बच्चों, आप भी इन छुट्टियों में मौज मस्ती के साथ साथ इन सभी छोटी छोटी बातों को जरूर अपनाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्योंकि बच्चों, आप इन छुट्टियों का आनंद तो तभी ले पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे, है ना? तो चलिए बच्चों, स्वस्थ शरीर स्वास्थ्य पर जहाँ हमने बात करी ही है, तो हो जाए एक कविता स्वास्थ्य पर ही, जिसे लेकर हमारे साथ हैं निहारिका।
2: स्वस्थ शरीर है मन की सच्ची खुशी, बिना स्वास्थ्य के है अधूरी हर इच्छा बड़ी। चेतन मन से करें हम इसका ध्यान, रखे सादगी और अपनाएं संयम। सुबह की ताजी हवा में ले सैर, फल सब्जी से भरे अपना पैर। तन में हो ताकत, मन में हो विश्वास, स्वास्थ्य बने जीवन का सबसे बड़ा आस। बीमारियों को दूर भगाए हम साथ, स्वस्थ रहे हम बढ़ाए नई राह। यह अमूल्य धरोहर है ईश्वर का उपहार, इसे बचाए दिल से हर दिन हर बार।
1: सच है बच्चों, स्वस्थ शरीर है ईश्वर का उपहार और इस उपहार को हमें बीमारियों से दूर रखने हेतु संतुलित आहार तो जरूर लेना चाहिए। साथ ही बच्चों, बुरी आदतों से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए, है ना? और बच्चों, जैसा कि आजकल हम सभी देख भी रहे हैं, कई लोग नशे की प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं। कई विषैले मादक पदार्थों का सेवन से उनका जीवन अंधकारमय हो चला है और कई बार तो बच्चों को प्रलोभन देकर नशे की ओर बढ़ावा दिया जाता है, जो कि किसी के लिए भी घातक सिद्ध होता है। और बच्चों, अगर आपको लगे कि कोई आपको गलत राह पर ले जा रहा है और बहला फुसला रहा है, तो आप सावधान हो जाएं और अपने घर पर माता पिता को जरूर बताएं। तो प्यारे बच्चों, नशा मुक्ति और नशे के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं और हर साल 26 जून को नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों के प्रयोग को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है और सर्वप्रथम 7 दिसंबर 1987 को ये दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। बच्चों, इस दिवस के माध्यम से सभी लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति जागरूक किया जाता है और इस दिन तमाम तरह के कार्यक्रम और अभियान चलाकर लोगों को नशे के गंभीर दुष्परिणामों के बारे में बताया जाता है। और बच्चों, आप भी अगर अपने आसपास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखें तो अपने घर पर बड़ों को जरूर बताएं। नशीले पदार्थों के सेवन से न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी आप तनावग्रस्त रहते हैं। तो बच्चों, ऐसे नशीले पदार्थों से दूरी जरूर बनाए रखें।

और अब बच्चों वक्त हो चला है बालवाटिका कार्यक्रम से विदा लेने का। और भी नन्हे मुन्ने बच्चे जो बालवाटिका कार्यक्रम से जुड़ना चाहें, अपनी रचनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसके लिए नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी balwatika1986@gmail.com। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9411001122। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम बाल वाटिका नन्नी पाती द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा। पिन कोड संख्या है 263601। और अब बच्चों मैं आपकी दीदी मेघा रावत लेती हूँ आपसे विदा। अब बच्चों मिलेंगे अगले रविवार एक नए अंक में आप नन्हे मुन्ने बच्चों की विविध प्रस्तुतियों के संग में। तब

0: 인!
1: 재인!
2: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: देश के अलावा विदेशों में भी योग का आयोजन किया गया। अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास का आग्रह किया। इस अवसर पर कल कनाडा के टोरंटो में सरकारी प्रतिनिधियों, राजनयिकों और योगाचार्यों ने ओंटारियो विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। वहीं ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के नेतृत्व में विशेष योग सत्र हुआ। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित हो रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का भी अभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा निश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इसराइली हमलों के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला ये महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और ऑन स्पॉट पंजीकरण के लिए कल जिला मुख्यालय जम्मू में 75 डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंजीकरण की सुविधा महाजन हॉल, शालामार और तवी नदी तट जम्मू में उपलब्ध होगी। साधुओं के लिए निर्धारित केंद्र गीता भवन, परेड और श्री राम मंदिर पुरानी मंडी जम्मू है। गैर EKYC पंजीकरणों को EKYC पंजीकरणों में परिवर्तित करने का कार्य रेलवे स्टेशन जम्मू और यात्री निवास भगवती नगर जम्मू में किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माहे में मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारतीय का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम सौदशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रस्तुत है देशकांत।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 9:10 होने वाले हैं। अब अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत के प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही हैं जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नर्सरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
2: श्रोताओं नमस्कार। असम ने इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए हैं। आपको हम बता दें कि असम के नागांव जिले की जुमरमुर ग्राम पंचायत ने स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया और एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आपको ये भी बता दें कि ये प्रतिष्ठित सम्मान दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। इसके अलावा आपको हम बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित हुगरी जान ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की है। और इसी तरह से असम के सोनितपुर जिले की न्यू नापाम ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिसे नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और श्रोताओं आज हमारे साथ हैं नागांव जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और जुमरमुर ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सचिव सनकदान नर्सरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: गीतांजलि जी, सबसे पहले तो आपकी ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने पर बहुत बहुत बधाई, और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये पुरस्कार मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, और जब पहली बार आपने इसके बारे में जाना तो कैसी भावनाएं थी आपकी?
3: पहले मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में यह न केवल जुमरमुर पंचायत के बल्कि पूरे नौगांव जिले की और आसाम के लिए एक गर्व का बात है। जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जिले के नाम घोषणा की गई तो मेरी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसी सफलता का पूरा श्रेय जुमरमुर की आम जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और हमारे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से पाई गई है।
2: सनकदान जी, आपको जब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये उपलब्धि आपकी पंचायत को दी गई, तो आपके क्या विचार थे इस पर?
4: हमें इस मंच पे बुलाने के लिए सब आप लोगों को धन्यवाद। जब हमें पता चला कि यह पुरस्कार हमें मिलने वाली है तो हम अत्यंत गर्वान्वित हुए। एक्चुअली में हम लोग पुरस्कार पाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने गाँव को बेहतर करने के लिए, हमारे जो गाँव में जो परिस्थिति है, लोग जो कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं उनके बीच में जागरूक फैलाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए थे, तो वो जाके सफल हुआ तभी हमें ये पुरस्कार मिली है।
2: गीतांजलि जी, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसी जो बातें हैं काफी महत्व रखती हैं और काफी काम भी आपके यहाँ पर किया गया है, तो इनके बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या बताएंगे?
3: हमने सबसे पहले गाँव के महिलाओं को जाकर सहायक किया। SHG जैसे ग्रुप महिलाओं के लिए खोले गए थे, उनको शामिल किया, घर घर जाकर जैविक खाद बनाए और यो कचरे प्लास्टिक को अलग अलग करके हम लोग परीक्षण दिए, और पंचायत की ओर जैसे कचरा संग्रह नियमित व्यवस्था की गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने आंगन के साथ सामाजिक रास्तों से कर्तव्य का समझकर आगे बढ़ा।
2: सनकदान जी, लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई आपने, किस तरह से उनको मोटिवेट किया?
4: सर्वप्रथम तो हमने हमारे जो गांव के अंतर्गत जितने भी स्वयं सेवक ग्रुप है, महिलाओं को हमने बुलाया अपने पंचायत में और उन लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई, उनको समझाया कि हमें जबकि हम लोग कुछ ही कार्यकर्ता है पंचायत में, तो हमने उनकी सहायता ली। वो लोग जाके अपने अपने गाँव में अपने अपने घर के आसपास के लोगों को जाके उन लोगों ने जागरूकता फैलाई है। ऐसे ही करके हम लोगों ने लोगों के बीच में पहले तो ये संदेश भेजा कि जो हमारे गांव में वो लोग के घर के आसपास जो कूड़ा फेंकते हैं उसको एक निर्धारित जगह पे फेंकना चाहिए। वैसे हमने बहुत सारे जगहों पे डस्टबिन्स भी बनाए हैं और जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट उनको सबको सेग्रीगेट किया गया था। फिर वैसे प्लास्टिक वेस्ट को हमने रिसाइकल करने के लिए भेजा और बायोडिग्रेडेबल को डंप साइट्स में भेजा, उनका अच्छी तरह से

0: डिस्पोजल हुआ, हमने निश्चित किया कि हर घर पे गैस सिलेंडर गैस जो होता है वो यूज हो, लकड़ी ये सब जलाने से उनको जो पॉल्यूशन होता है उससे उसको रोकने का कोशिश किया। तो अभी तो 100% सब लोग सिलेंडर गैस एलपीजी यूज करते हैं और बहुत सारे घरों में आजकल सोलर पावर भी लग चुका है, हमारे जितने भी स्ट्रीट लाइट है सब सोलर पावर ही है।
1: और गीतांजलि, ये एकल इस्तेमाल प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियों को संचालित किया?
2: हम लोग गाँव में जो पंचायत वार्ड है, एसएचजी ग्रुप है, एसएचजी ग्रुप को हम लोग को गांव-गांव जाकर हम लोग को प्लास्टिक एक जगह कर रखे, पंचायत को भी हम लोग को सरकार ने जो पंचायत से निकाल कर एक जगह में रखने के लिए बोले।
1: और सरनदान जी, इसमें युवाओं की क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया?
0: हमने जितने भी हमारे स्कूल्स है उन सब में भी हमने अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है उन लोगों ने पहले उन लोगों को समझाया गया कि कैसे हम लोग कचरे को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग करना है हमें। तो हर स्कूल में डेडिकेटेड डस्टबिन दिए गए थे जहाँ पे हम लोग बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्स्ट्रा करते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स जब स्कूल पे सीख के गए वो अपने घर पे भी यही सारे हैबिट्स अपनाने लगे।
1: विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई तरह के फैसले लिए जाते हैं, ग्रामीणों की भागीदारी कैसी रही थी इसमें?
0: तो हम लोगों ने जाके वार्ड सदस्यों को पहले जागरूक किया, वार्ड सदस्य अपने अपने वार्ड में जाके अपने अपने गाँव के लोगों को अपने वार्ड के लोगों को बताने लगे कि ये जो आप कर रहे हैं ये हमारे पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक है और आगे जाके ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है। तो वो लोग धीरे धीरे समझने लगे, बहुत सारे लोग अभी इसमें ये समझ चुके हैं कि कैसे हमें अपने गांव को साफ रखना है, कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, ऐसे करके हमारे गाँव के लोगों ने बहुत सारा हमें सहयोग किया है।
1: गीतांजलि जी, जो भी कार्य आपने किया जिससे आपको सफलता मिली है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई, कैसी समस्याओं का सामना आपने किया?
2: सरकार ने जैसे हम लोग को स्वच्छ भारत मिशन में हम लोग को समझाया था कि हम लोग घर घर सबको समझाया, जैसे पारदर्शी होती है हम लोग जैसे खोलते हैं उनको कैसे देंगे, घर घर जाकर हम लोग बोले जैसे साफ सफाई करना और अच्छे से रखना, पानी को सेव करना। तो पहले तो लोग सीखा नहीं, फिर जब हम पंचायत में सबको बुलाया सिखाया तो धीरे धीरे सीखने लगा और अभी ऐसा अच्छा से चल रहा है।
1: सरनदान जी, जिस तरह की चुनौतियां सामने रहती हैं उनसे निपटने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं भी बनाई जाती हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपाय भी किए जाते हैं, आपकी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास होते रहे जिनसे ये लगता रहा लोगों को कि हमें इससे जुड़ना चाहिए इन कार्यों से?
0: सबसे पहले हमने हर वार्ड में एक एक करके वार्ड सभा किए हैं और नियमित तरीके में हमने वार्ड सभा किए हैं। हम लोग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाद जाके उनके बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। हम लोग कई स्कूल के जो हेडमास्टर है, एक्चुअल में गांव के लोग शिक्षकों को बहुत ही सम्मान करते हैं, तो हम लोग उनको भी हमारे साथ हमारे वार्ड सभा में बुला के लेके जाते हैं। जब शिक्षक ये सब बताते हैं लोगों को तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं इस बातों में। दूसरा है कि हमने गांव में प्रोसेशन भी किया है, कभी कभी हम लोग करते हैं, और हमारे जो सरपंच जी है उन्होंने अपने तरीके से कुछ लोगों को लगा के गाँव में जो कचरा है वो सब झाड़ू से साफ कराया है और इवन वाटर भी छोड़ा है, पानी छोड़ा है और वो सब रास्ता को साफ कराया है। तो ऐसे करके हम लोग जागरूकता फैलाने लगे, फिर धीरे धीरे वो लोग इन सारे हैबिट्स को अपनाने लगे और ऐसे करके हम लोग पुरस्कार को पाने में सक्षम हुए हैं।
1: खुले में शौच मुक्ति की लगातार बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, क्षेत्र जिन्हें खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो आपके यहाँ पर इसमें किस तरह की गतिविधियाँ संचालित हुई?
0: हमारे यहाँ 100% ये खत्म हो चुका है खुले में शौच करना, पहले भी नहीं था इतना, लेकिन कुछ लोग थे जिनका जो शौचालय था उसका जो हालत था इतना अच्छा नहीं था, तो उनको सरकार के तरफ से एक फंड आता है उससे हमने शौचालय दिलाए और बाद में जाके वो लोग शौचालय सही में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी हमने चेक किया, तब जाके खुले में शौच एकदम 100% खत्म हो चुका है अभी हमारे गांव में।
1: सनातन जी, वैसे जो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन्हें आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश रहती है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल चीजों को किया जाए ताकि उसमें आसानी भी हो सके और पारदर्शिता भी बनी रहे, तो इस दिशा में आपकी पंचायत ने क्या कार्य किए?
0: हमने ई ग्राम स्वराज में जो हमारा जितना भी अचीवमेंट्स है वो सब आप देख ही सकते हैं, और आजकल जो PAI है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसमें हम लोगों को अपना जो जो काम है उन सबको अपलोड करते रहना पड़ता है, उस हिसाब से हमारा जो एक मार्कशीट के जैसा निकलता है उसमें हमें पता चलता है कहाँ कहाँ हमने कितना काम अच्छा किया है, कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकते हैं, और जहाँ बेहतर करना होता है हम उस पे जोर देते हैं।
1: सरनदान जी, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए किस तरह का मॉडल आपने अपनाया, क्या सोच रखी थी कि जो भी योजनाएं हैं हम उसको लोगों तक पहुँचाएं, हमारी जो गतिविधियां उन्हें अच्छे से संचालित करें?
0: यूजुअली जब हमें कोई स्कीम आती है हमारे यहाँ तो हम उसका माइकिंग करते हैं, हम गांव-गांव में अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी पेंशन स्कीम्स है वो सब कितने गाँव वासियों को मिलनी चाहिए, हम अपने वार्ड सदस्यों को बोलते हैं, वो हमें सूची देते हैं कि कितने की पेंशन

0: स्कीम के तहत जितना भी बेनिफिशियरीज है उनको ढूंढ के निकालने में वो हमें मदद करते हैं। और उसके साथ ही जिन जगहों में गांव के कुछ कुछ गलियों में अभी भी रास्ते अच्छे नहीं है तो उन लोगों से हम लोग ग्रीवेंस लेते हैं, उनका जो कंप्लेंट आता है उसमें हम लोग MGNREGA के तरह से हम उधर रास्ता बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम लोग हर वार्ड में वार्ड सदस्यों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग जाके गाँव में लोगों से बात कीजिए, क्या असुविधाएं आई है उनके बारे में हमें बताइए, हम इसका हल करेंगे। हम वार्ड सभा भी करते हैं, ग्राम सभा भी करते हैं और उसी में लोगों से उनका जो मत है वो हम लोग लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: अब चूंकि आपकी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होना एक गर्व की बात है, तो अब आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है कि आने वाला जो समय है उसमें आपकी ग्राम पंचायत और क्या बेहतर करेगी या फिर उनके माध्यम से और लोग भी और कितना अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के लिए?
0: सर्वप्रथम तो बात यह है कि हमें द्वितीय स्थान मिली है, हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम अगले बार पहले स्थान प्राप्त करें। हमने अभी तक जितना भी अचीवमेंट किया है उसमें थोड़ा और काम करना बाकी है, तो हम अभी जाके बस पहला तो यही है हमारा कि हम उसमें काम करना शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी पंचायत है वो हमसे बहुत ही प्रेरित हुए हैं और हमें यह समझ में आया है कि अभी नौगांव भी बहुत ही गर्वान्वित हुआ है हमारे इस पुरस्कार को जो हमें मिला है। इस खबर को पाके पूरे नौगांव जिले में जितने भी पंचायत है सब गर्वान्वित हुए हैं और वो लोग सब प्रेरित हुए हैं। वो लोग का भी अभी उनके अंदर भी यह आ चुका है कि हम भी इसमें काम करेंगे।
1: तो आपको ये लगता है कि अब देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है उसमें जब आपका नाम आ चुका तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी और आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी?
0: मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें एक अभी आइडियल के तरह हमें देखेंगे, हमसे सीखने के लिए वो लोग भी आएंगे कि कैसे आप लोगों ने ये पद हासिल किया है।
1: आपकी पंचायत में जो सफलता हासिल हुई है इसमें पारदर्शिता की क्या भूमिका रही और सुशासन की क्या भूमिका रही है?
0: हम लोग ने जो जो काम अपनाए हैं वो सब फील्ड पे दिखते हैं, कागज में भी है। हमने पेपर वर्क फील्ड वर्क सब कुछ अच्छे से किया है। हमारे वहाँ पे हमारे विधायक जी भी है, हमारे ही पंचायत के थोड़े ही पास में उनका गाँव है, विधायक जी भी आते रहते हैं, समय समय पे देखते रहते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। हमारे जो भी उन्नयन खंड के अधिकारी सर है वो भी आते हैं, देखते हैं कि हमने सही में काम किया है कि नहीं। जिला परिषद के भी लोग आते हैं। पारदर्शिता का बात यह है कि हम लोग हमारा जो PAI है वही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमने काम कितना किया है, क्योंकि हम लोग ऐसे उसमें जो एक्चुअल डेटा है वही अपलोड होता है उसमें, इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
1: जी गीतांजलि जी, आपके इस बदलाव से जो आपने परिवर्तन इतना बड़ा वहाँ पर किया है आपकी पंचायत के माध्यम से जो भी बदलाव वहाँ पर देखा जा रहा है, इससे वहाँ के जो लोग हैं सभी लोग उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आ रहा है?
2: उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम लोग पंचायत में जो सहायता के लिए वो हम लोग निकल आ रहे हैं, पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, आजकल हर घर से एक एक महिला निकल कर आती है, हम लोग को सहयोग करती है। जैसे आजकल समाज में ड्रग्स का बहुत चल रहा है तो महिला संगठन आकर उसको सेफ देती है, पंचायत की प्रतिनिधि हो हम लोग को पास आती है कि ऐसे ऐसे करे, ऐसे सहायता करके हम लोग को पंचायत के उन्नति करते हैं और ऐसे ही हम लोग आगे चल रहे हैं।
1: मतलब इस तरह की गतिविधियां जारी रख करके आप समाज सेवा भी कर रहे हैं?
2: हाँ।
1: तो सनकदान जी, और आगे की किस तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करने का आपने सोच रखा है?
0: हमारा जो अभी पूरा गांव में कई जगह ऐसे हैं जहां पे अभी स्ट्रीट लाइट्स लगे नहीं है, थोड़ा अंदर के जगह रिमोट एरियाज है, वहां पे हम लोग स्ट्रीट लाइट्स लगाने के सोच रहे हैं, वो भी सब सोलर पावर्ड होंगी। कुछ ऐसे जगह पे हम लोग तालाब भी बनाने चाह रहे हैं जहां पे हम लोग मीन पालन कर सके, लोगों को और जीविका हम लोग निकाल सके उनके लिए। साथ ही हम लोग आगे जाके अपने जो गांव के आसपास जितने भी घर है उन सब में अभी भी जैसे हम लोग ये जो हम लोग काम करके ये पुरस्कार हमें प्राप्त हुआ है, आगे जाके वो लोग रुक ना जाए, इस प्रयास को छोड़ ना दे, इस हैबिट को छोड़ ना दे, वो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये हम लोग मेक श्योर करेंगे, बस यही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पंचायत के प्रतिनिधियां हैं वो भी इसी तरह जैसे आज तक हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, सहयोग करते आ रहे हैं, वैसे आगे भी करते जाए। हमारे जितने भी गाँववासी हैं वो लोग भी ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे, हम लोग जितना भी जो भी हम लोग कर रहे हैं गाँव के लिए ही कर रहे हैं, हमारे राज्य हमारे देश के लिए कर रहे हैं, इसी भावना को मन में रख के अगर आगे भी वो यही ऐसे ही काम करते जाए तो सबके साथ मिलके हम लोग जरूर आगे बढ़ सकेंगे।
1: जी सनकदान जी और गीतांजलि जी, आप दोनों ने इस चर्चा में भाग लिया, तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे।

0: थे स्वच्छ और हरित पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित असम की पंचायत प्रयासों पर चर्चा। इस संवाद में भाग ले रही थी जिला परिषद अध्यक्ष गीतांजलि हजारिका और सचिव सनकदान नर्सरी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

ये आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान पाठ से 131वां प्रसंग। कलाकार हैं पंडित राजन मिश्रा, पंडित साजन मिश्रा। संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कविश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर, देवताओं में श्रेष्ठ संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापी कल्याण रूप, चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष सुशोभित हैं, उन रघुवंश नाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

श्री रामचरित मानस की ये संगीतमय प्रस्तुति अभी आपने सुनी। इसका आज आपने 131वां भाग सुना। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है ईमेल, व्हाट्सएप और फरमाइशी खतों पर आधारित फिल्म नगमों का प्रोग्राम गीत निक्षर। गीत नजर के सभी श्रोताओं का प्रोग्राम में बेहद स्वागत। साथ ही कीजिए स्वीकार अपने रेडियो दोस्त रेखा सलोरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, गीत ही तो हमारी जिंदगी का रस है। जैसे धरती पर सावन आता है, हमारी जिंदगी भर भी चार दिन के लिए बसंत ऋतु छा जाती है। कोई मनमोहिनी सूरत मन को भा जाती है। जब दुनिया लगाती है मोहब्बत पर पहरे, तब दिल का साज तड़प उठता है और कुदरत मोहब्बत के सुर से खुद गीत बनाती है। दोस्तों, आज विश्व संगीत दिवस है, तो हम आज गीत संगीत की सुर लहरियों की को भला कैसे भूल सकते हैं। मोहब्बत के सुर से करते हैं आज के गीत निर्देशक प्रोग्राम का आगाज, जिसे हमने लिया है संगीत फिल्म से। आवाजें हैं पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की।

श्रोताओं, गीत नजर प्रोग्राम का आगाज हमने किया था पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के गाए संगीत फिल्म के इस खूबसूरत नगमे के साथ। इस गीत को लिखा था संतोष आनंद ने और संगीतबद्ध किया था आनंद मिलन ने। सुनने के ख्वाहिशमंद थे तल्लीताल नैनीताल उत्तराखंड से मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या। इसी नगमे को सुनना चाहा था मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की थी पटेल नगर मालौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू और गुटू ने। राजबिराज नेपाल से श्याम कुमार हाकू, तारा देवी हाकू, राजन राय हाकू, कल्पना राय हाकू, सुमनीमा, पिंकी, खुशबू, श्रुति, पूजा, पूर्णिमा और सन्नी ने। इसी गीत को सुनना चाहा था जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया देशानी और निमित आहूजा ने। श्रोताओं, गीत निजी प्रोग्राम में अब हम शामिल कर रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश का गीत। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हैं डॉक्टर दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और इनके परिवार के सभी लोग। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहानकर, राही सरिता गुहानकर, प्रिंस एकांश गुहानकर, प्रणीता गुहानकर, सिद्धांत गुहानकर, अर्जुन गुहानकर और यहीं से हैं वैशाली, शैलेश, सुमित और ध्वनि गुहानकर पड़ी। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी चौहान। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ों में गुमराह फिल्म का ये खूबसूरत नगमा। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। संगीत और योग का एक बेहद खूबसूरत रिश्ता है। यदि अपने पसंद का संगीत सुनते हुए हम योगाभ्यास करते हैं तो हमारी आत्मा को बेहद सुकून मिलता है, तृप्त हो जाता है हमारा हृदय। तो इन खूबसूरत वादियों में क्यों ना संगीत के साथ योग किया जाए।

जवाहर नगर उदयपुर से हैं बाबू भाई और भारती देवी। ऊपरकोट मोहल्ला चखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। दुर्गा कॉलोनी हासी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, रचना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश, पायल, वैदही, हंसिका और इनके परिवार के सभी लोग। लक्कड़ बाजार खंडवा से हैं मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब पवार, अलमाज बानो, छोटू पवार, शंकर लाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, हसनैन पवार और इनके ढेर सारे साथी। हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं मैं ऐसा ही हूँ फिल्म का गीत सोनू निगम, श्रेया घोषाल और बेबी अपर्णा की आवाज़ों में। दोस्तों, जहाँ एक और आज विश्व संगीत दिवस है, विश्व योग दिवस है, वहीं संयोग से आज फादर्स डे भी है, यानी पिता को समर्पित पितृ दिवस। तो हमारे बेहद सारे श्रोताओं ने इस खूबसूरत गीत की फरमाइश हमसे की है।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: गीत मंत्री प्रोग्राम में लीजिए पेश है हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश का गीत। जिला अंबागढ़ चौकी से छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा और हर्ष आहूजा, मनाली हिमाचल से हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस, चंडीगढ़ सिटी से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, विकिका मल्होत्रा, गाविया, सुचा सिंह पाठक और विनोद पुरी। अपने सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं मन की आंखें फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को सुनना चाहा है मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा ने। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। सहरसा बिहार से हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजीश, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छेलाल, बुल्की वाली और पलना झा।

मोहम्मद रफ़ी से मन की आंखें फिल्म का ये नगमा भी आपने सुना। और अब आज के गीत नजर प्रोग्राम के आखिर में लीजिए पेश है हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश का गीत। भांगलपुर से हैं दिलीप कुमार सोनी, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, यहीं से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित राय। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी, मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, यहीं से हैं मन भावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई बागरी और इनके ढेर सारे साथी। इसी गीत को सुनना चाहा है लमगड़ा अल्मोड़ा उत्तराखंड से पुष्कर सिंह बिष्ट ने। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रचिता केसु और रिधान खुराना। इन सभी की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं आदमी और इंसान फिल्म का नगमा आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में।

0: देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: अमेरिका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
2: विकसित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले हैं INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
0: इन पोतों का विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला यह महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वृत्तचित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। आज रात एक भव्य समारोह के साथ इसका समापन होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, रायलसीमा, कराईकल, केरल और माही में भी मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार और तेलंगाना में भी आज लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए पेश है प्रोग्राम सब रंग।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर से अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म का नगमा। इसी नगमे के साथ आज का फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम गीत निर्भर संपन्न करने की अपने रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गीत निर्भर अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: सबरंग प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के

0: ज़ाहिर होशियारपुरी का कलाम अभी आप सुन रहे थे। फनकार थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: सबरंग प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। इस प्रोग्राम में लीजिए पेश है हसन काजमी का कलाम। फनकार हैं तलत अजीज।

शाहिद कबीर का कलाम अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और लता मंगेशकर से। और अब आज के सब रंग प्रोग्राम के आखिर में लीजिए पेश है मजरूह सुल्तानपुरी का कलाम। गुलुकारा हैं लता मंगेशकर।

लता मंगेशकर से अभी आप सुन रहे थे बजरूह सुल्तानपुरी का कलाम। इसी के साथ आज का सबरंग प्रोग्राम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रातः के 10:30 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। प्रातः के 10:40 हुए हैं। जो पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, आज का सुरबहार केंद्रित रहता है शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों पर।

आज का सुरभार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत और साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज रविवार है और आज का सुरभार केंद्रित होता है शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों पर। श्रोताओं, आज विश्व संगीत दिवस है। हिंदुस्तानी संगीत में शास्त्रीय संगीत को हर प्रकार के संगीत की नींव माना गया है। कहा जाता है कि एक साधे सब सधे, अर्थात सात सुरों में से एक सुर को पक्की तरह से जो रियाज के द्वारा साथ लेते हैं, उनके सभी सुर खुद ब खुद सज जाते हैं। ऐसा ही है सुरों का जादू। तो श्रोताओं, करते हैं प्रोग्राम का आगाज राग कलावती के सुरों से सजे फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस खूबसूरत गीत के साथ। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और मुकेश की। इस गीत को कलावती के सुरों में साधा है संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। श्रोताओं, के अगर शास्त्रीय पक्ष की बात करें तो ये राग खमाज थाट से उत्पन्न है। इसकी जाति है औड़व। औड़व इसमें वादी स्वर ऋषभ और संवादी मध्यम प्रयोग किया जाता है। इसका गायन समय है रात्रि का दूसरा पहर और इस राग की प्रकृति चंचल है। मधुर शांत सुगम संगीत के लिए उत्तम है ये राग।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, सुरबहार कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं गीत गाया पत्थरों ने फिल्म का नगमा। इस गीत को संगीतकार रामलाल ने राग दुर्गा के सुरों से सजाया है। श्रोताओं, राग दुर्गा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है। ये माता दुर्गा की स्तुति और भक्ति रस के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है। इसके अगर शास्त्रीय पक्ष को जानना है तो ठाट विलावल, जाति औरव औरव, वादी धैवत, संवादी मध्यम और इसका गायन समय है रात्रि का द्वितीय पहर। चुनाव, आइए सुनते हैं राग दुर्गा के सुरों से सजा फिल्म गीत गाया पत्थरों ने का ये गीत।

श्रोताओं, राग दुर्गा के सुरों से सजा गीत गाया पत्थरों ने फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। और अब मैं आपको सुनवाती हूँ राग बिहाग से सजे फिल्म खूबसूरत के गीत। राग बिहाग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बेहद ही मधुर राग है। ये राग मुख्य रूप से श्रृंगार रस, शांति और मधुरता से परिपूर्ण है। इसे विशेषकर रात्रि के दूसरे पहर में गाते बजाते हैं। थाट बिलावल से उत्पन्न है ये राग और इसकी जाति है औड़व संपूर्ण। इसमें वादी स्वर गांधार, संवादी निषाद प्रयोग किया जाता है।

ता लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

सुरबहार प्रोग्राम के समापन में लीजिए पेश है राग यमन से सजा इंतकाम फिल्म का गीत। श्रोताओं, राग यमन में इस गीत को ढाला है।

रागयमन कल्याण थाट से उत्पन्न राग माना जाता है, जिसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, वादी गांधार और संवादी निषाद होता है। इसे रात्रि के प्रथम प्रहर में गाते हैं। श्रोताओं, रागयमन किसी भी विद्यार्थी के लिए एक मूलभूत राग है, जिसे संगीत सीखने के शुरुआती दौर में सिखाया जाता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत आपने हम हिंदुस्तानी फिल्म से सुना। इस गीत को आवाजें दी थी मुकेश और साथियों ने। गीत प्रेम धवन का था और संगीत से संवारा था उषा खन्ना ने। लीजिए अब पेश है शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति और स्वर्णलता का गाया पुकार फिल्म का गीत। ए आर रहमान की संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

सैनिक भाइयों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। शब्द रचना जावेद अख्तर की है और धुन बनाई है मदन मोहन ने।

अभी आपने पृथ्वी फिल्म का गीत सुना। इस गीत को आवाजें दी थी उदित नारायण और साधना सरगम ने। गीत लिखा था जलीश शेरवानी ने और संगीत से संवारा था विजू शाह ने। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गीत। इस गीत को आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। नुसरत फतेह अली खां के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

लता मंगेशकर और कुमार सानू के गाए कच्चे धागे फिल्म के इसी गीत के साथ सैनिक भाइयों कार्यक्रम संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 11:30 हुई हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग जौनपुरी में गाया ख्याल, विलंबित लय आड़ा चौताल में और तराना तीन ताल में निबद्ध है।

Yeah, I know.

दोस्तों, आपने महसूस किया होगा जब कभी भी हम तनावग्रस्त होते हैं, उस वक्त अगर कहीं से संगीत की मधुर ध्वनियाँ हम तक पहुँचती हैं तो हमें अपना तनाव कम लगने लगता है। ठीक उसी तरह तनाव में आने पर सलाह दी जाती है कि गहरी गहरी सांसें लें, क्योंकि ये दोनों ही मस्तिष्क की तरंगों को शांत करते हैं और तनाव पैदा करने वाले हॉर्मोन्स को कम करते हैं। नदी का किनारा हो, हवाओं में रवानगी हो, लहरों में संगीत हो, यूं ही खुद में गुम होने का आलम हो।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी पसंद, और आज मेरी पसंद है अंतर्राष्ट्रीय योग और संगीत दिवस। दोस्तों, यूं तो योग और संगीत एक दूसरे के पूरक हैं, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि संगीत सुनने या गुनगुनाने से हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, जबकि योग हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की ही रक्षा करता है, हमारे लिए फायदेमंद होता है। तभी तो योग से दमक उठते चेहरे खूबसूरत लगते हैं। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा।

दोस्तों हम योग में तल्लीन हूँ और साथ में शास्त्रीय संगीत की लहरिया हूँ, तो यकीन मानिए हम आसानी से भावनात्मक संतुलन पा जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमारे शरीर को आराम देती हैं, दर्द से राहत देती है, मन को सुकून देती हैं। जब भी हमारे शरीर या मन की लय बिगड़ती है, वहीं बीमारियाँ घर कर लेती हैं।

संगीत का आनंद हमें गाने सुनने और वाद्य यंत्र बजाने से मिलता है, तो योग हमें मदद करता है संगीत में एकाग्र होने के लिए। इन दोनों विधाओं में निहित असाधारण अनुशासन, तपस्या और भक्ति इनके उपचार क्षमता और प्रभाव की शक्ति का प्रमाण है। योग और संगीत साथ साथ चलते हैं, ये दोनों ही एक संतुलित जीवन और मस्तिष्क के लिए बहुत काम आते हैं।

आज की मेरी पसंद में आपने आजा नचली, कुदरत, तरकीब, सुरसंगम और जब वी मेट फिल्मों के गीत सुने। गायक कलाकार थे राहत फतेह अली खां, परवीन सुल्ताना, अलका याग्निक, जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, पंडित राजन, पंडित साजन मिश्र और उस्ताद राशिद खां।

योग सोई शक्ति जगाए, रोग शोक भी दूर भगाए, संगीत लाता लय जीवन में, प्रेम सुधा रस बस तन में। ये थी आज की मेरी पसंद, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली बार मेरी पसंद मैं एक नए सोच नए विचार के साथ हाजिर होंगी। अभी दीजिए माधुरी को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

0: बहनों बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ लेकर आपका अपना कार्यक्रम घर संसार। घर संसार सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सखी सुनीता का स्नेह भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगी, प्रसन्न होंगी और स्वस्थ होंगी और अपना व अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही होंगी। बहनों अब आज के कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत योग से। बहनों स्वस्थ रहने के लिए जितना ज़रूरी अच्छा खानपान है उतना ही ज़रूरी है योग। जी हाँ बहनों, हमारे जीवन में योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम पूरा दिन परिवार की खुशियों और ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। लेकिन एक सवाल अगर हम खुद से पूछें कि क्या हमने अपने लिए भी कुछ समय निकाला है, तो अक्सर इसका जवाब होता है समय ही नहीं मिलता और इसी कारण थकान, तनाव, कमर दर्द, चिंता और कई स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। मैंने ज़रा सोचिए, अगर घर की नींव ही मजबूत ना हो तो घर कैसे मजबूत रहेगा? महिलाएं परिवार की नींव हैं। यदि हम स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगी तभी हमारा परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा और यही बात हमें योग सिखाता है। बहनों योग केवल शरीर को मोड़ने या कुछ आसन करने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर, मन और आत्मा का ध्यान रखने की एक सुंदर कला है। रोजाना 15 से 20 मिनट का योग हमें नई ऊर्जा देता है, तनाव कम करता है और हमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। योग के महत्व को समझाने और हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करने के लिए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सन 2014 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस की महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। बहनों इस वर्ष हम मना रहे हैं 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस साल की हमारी थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बहनों ये थीम इस बात पर जोर देती है कि योग केवल युवाओं के लिए नहीं बल्कि बढ़ती उम्र में भी बेहतर स्वास्थ्य, सक्रिय जीवन शैली और आत्मनिर्भरता बनाए रखने का जरिया है। बहनों कार्यक्रम में जारी रखेंगे आपसे बातों का ये सिलसिला और सुनेंगे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का साथी योग विषय पर की गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत। लेकिन उसके पहले सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
5: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
6: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें bis.gov.in पर।
0: बहनों हम आपसे बात कर रहे थे योग के विषय में और अब हम विस्तार से जानेंगे योग से होने वाले शारीरिक व मानसिक लाभों के बारे में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं श्रीमती कमलेश बिष्ट, जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में एक योग ट्रेनर हैं। तो सुनते हैं योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का साथी विषय पर उनसे की गई हमारी ये क्षेत्र संकलित बातचीत। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में। मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि योग क्या है।
7: नमस्कार, सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो योग एक कनेक्शन है, जुड़ाव है, अटैचमेंट किसी भी चीज के प्रति जब हम कनेक्शन बनाते हैं। जैसे अध्यात्म से देखा जाए तो आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या है, योग है। और वर्तमान समय में जो सबसे

0: इम्पोर्टेंट आजकल चल रहा है वो आपका स्वास्थ्य चल रहा है, और जब हम इसके साथ कनेक्शन बनाते हैं तो ये योगी कहलाता है।
1: जी मैम, अब हम ये जानना चाहेंगे कि नियमित योग करने से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है।
0: देखिए, अगर हम नियमित योग करते हैं तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम खाने की इम्पोर्टेंस समझते हैं कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से योग भी हमारी जीवन शैली का एक भाग है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम हमें किसी भी प्रॉब्लम्स का या फिर बीमारियों का सामना ना करना पड़े, योग को हमको अपनी जीवन शैली बना लेना चाहिए। और इसको करने से इससे बड़ा बेनिफिट है कि देखो आप स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी भी कोई रोग नहीं होगा, आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी, मांसपेशियां लचीली बनेंगी, रक्त का संचार ठीक रहेगा, शरीर में ऊर्जा अधिक से अधिक डे बाई डे बढ़ते जाएगी। तो योग देखा जाए तो आपको संपूर्ण रूप से लाभ ही प्रदान कर रहा है।
1: जी मैम, मैम शारीरिक लाभों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो योग हमारे मन को शांत और तनाव मुक्त बनाने में किस प्रकार सहायता करता है?
0: कहा जाता है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा, अगर मन में कोई विकार है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। तो हमको दोनों को स्वस्थ बनाना है। यदि आप योग करते हैं तो योग में एक बात कही गई है, उसका पहला नियम है अथ योगानुशासनम, अर्थात योग आपको अनुशासन सिखा रहा है। यदि अनुशासन आपके जीवन में आ जाएगा तो आपको हर चीज की वैल्यू समझ आएगी कि अब हमें क्या खाना है, हमें क्या नहीं खाना है, कितना हमको खाना है और फिर हमको उसे कैसे डाइजेस्ट करना है। और धीरे धीरे ऐसे नकारात्मक विचार जो कहीं ना कहीं हमारे मन को अशांत कर रहे हैं वो धीरे धीरे क्या करेगा, योग करने से वो नकारात्मक विचार आपसे दूर होंगे, क्योंकि योग जो होता है वो हमारे प्राण पे काम करता है। अगर हमारा प्राण मजबूत है तो प्राण मजबूत से क्या होगा, आप संकल्प और विकल्प में नहीं फंसेंगे, आपको सही निर्णय लेना आ जाएगा। कहा गया है कि जो हमारा मन होता है, मन की वृत्तियां बताई गई हैं, वृत्तियां प्रमाण, विकल्प, निद्रा और स्मृति, और योग करने से ये वृत्तियां नियंत्रण में आती हैं। तो धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगता है और मन में उत्पन्न होने वाले जो नकारात्मक विचार हैं वो शांत हो रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे नकारात्मक विचार से जो रोग उत्पन्न होते हैं, एंजाइटी हो जाती है, तनाव हो जाती है, किसी कार्य में मन नहीं लगना, तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
1: मैम, योग और प्राणायाम का आपस में क्या संबंध है और ये दोनों मिलकर किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं?
0: सर्वस्व क्या है, योग है। योग के 8 अंग बताए गए हैं जिसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम और नियम। इसमें जो प्राणायाम है वो भी योग का ही एक अंग है। तो इसमें हमारा जो शरीर है तो हम योग कर रहे हैं, हमने ऊर्जा का प्रयोग किया। आसन जब हम करते हैं, आसन करने में हमारी ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है, वो जो एनर्जी है वो क्या है, आपका प्राण है। ये प्राण भी आपका 5 प्रकार का बताया गया है, प्राण, समान, अपान, उदान और यान, जो कहीं ना कहीं आपके शरीर में व्याप्त है। और आप आसन तभी कर पाएंगे जब आपका प्राण मजबूत होगा, और आपका प्राण किससे मजबूत होता है, प्राणायाम। और इसमें कहा गया है तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात प्राणायाम वह विधि है जो आपके प्राण को मजबूत बना रहा है और उसको लंबायमान कर रहा है। आप कह सकते हैं कि इन दोनों में बहुत मजबूत संबंध होता है कि अगर आप आसन करेंगे तो प्राणायाम करेंगे, आपने एनर्जी का यूज किया है तो आप एनर्जी को वापस लेंगे और एनर्जी आती है आपकी प्राणायाम।
1: जी मैम, मैम बच्चों और युवाओं के जीवन में आजकल हम देखते हैं कि पढ़ाई और प्रतियोगिताओं का बहुत दबाव रहता है, तो उनके लिए योग कितना उपयोगी हो सकता है?
0: पहले का समय था उसमें बच्चे खेलते थे, खेलने कूदने से उनका संपूर्ण शारीरिक विकास भी होता था और मानसिक विकास भी होता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है, आपकी स्टडी है, आपका लोड इतना है कि बच्चों को खेलने का समय ही नहीं मिलता, और टेक्निकल चीजें इतनी आ गई हैं कि आप मोबाइल, लैपटॉप इसमें ही अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, जिसके कारण साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, बच्चों की एसिड वीक हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल हो जा रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जा रहा है। और ये सब कुछ किससे हो रहा है, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी कुछ भी नहीं है प्रॉपर, क्या है बॉडी में ना तो ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा है और ना ही ब्लड का फ्लो अच्छा है। अब बच्चों के विकास के लिए योग का बहुत अधिक महत्व है।
1: तो मैम, अपने डेली रूटीन में बच्चे को कैसे अपना सकते हैं?
0: मन समय में हर स्कूल और कॉलेजेस में एक योग ट्रेनर रखा गया है, अगर उनकी सुविधाएं हैं तो वो इजीली सिखाते हैं बच्चों को, उनको खेल खेल में सिखाया जाता है। जैसे कई आसन होते हैं जैसे बटरफ्लाई होता है, चक्की चालन होता है, नौका संचालन होता है, तो उन्हें खेल खेल

0: में आप सिखा सकते हैं कि आप अगर नाव चला रहे हैं आपकी स्ट्रेचिंग कैसे होगी, आप उसमें ब्रीदिंग कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उससे कहीं ना कहीं इंटरनल आपको इफेक्ट होंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा।
1: मैम इसी तरह अगर महिलाओं की बात करें तो दैनिक जीवन में योग किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है, किस प्रकार वो उनकी बीमारियों से लड़ने में सहायक हो सकता है और उन्हें स्वस्थ बना सकता है?
0: कोई भी रोग होता है उसका स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाते
1: जी,
0: जब वो रोग एक्सेस में बढ़ जाता है उसके बाद ही आप उसका अनुभव कर पाते हैं। और वो अनुभव कैसे होता है, आपको पेन के रूप। महिलाओं के संग एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके जो भी दैनिक दिनचर्या जो भी कार्य उनके ऐसे रहते हैं वो इस प्रकार उसमें उलझी रहती है कि वो अपना ध्यान ही नहीं दे पाती, जिसके कारण क्या होता है धीरे धीरे बीमारियां बढ़ जाती हैं। और जब वो एक्सेस में बढ़ती हैं तब उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब प्रॉब्लम बढ़ गई है। कई लोगों का ये मानना होता है कि मैम हम लोग तो घर के सारे काम करते हैं और वो भी तो एक्सरसाइज है, तो मैं उनको एक बात समझाना चाहूंगी कि जो योग और एक्सरसाइज उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक्सरसाइज जो होती है वो केवल आप बॉडी मूवमेंट कर रहे होते हैं, बट योग जो होता है वो आपकी सांसों पे काम करते हैं, वो ब्रीदिंग के साथ किया जाता है, वो एनर्जी के साथ किया जाता है, उसमें आप जितनी एनर्जी लगा रहे हैं उसको वापस भी लिया जाता है। तो कभी भी मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एक्सरसाइज के साथ जिमिंग के साथ उसकी कंपेयर ना की जाए। योग का अपना एक अलग क्षेत्र है, वो आपकी बॉडी पे काम कर रहे हैं। और आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मुझे एक स्लिम सी बॉडी मिल जाए, अच्छा सा बॉडी शेप हो जाए, लेकिन योग के क्षेत्र में आपका एक पतला होना या स्लिम बॉडी होना वो सेकेंडरी है, सबसे पहले है आपका स्वस्थ होना। और जो स्वस्थ होगा वो अपने दैनिक कार्यों को बहुत अच्छे से निभा सकता है, सारे दायित्व को अच्छे से निभा सकता है, तो यदि वो योग करती है तो ये सबसे अच्छी बात है।
1: मैक्सिमम ये देखा जाता है कि महिलाओं में कमर दर्द है और सर्वाइकल उनको होता है, तो किस तरीके का योग वो अपने दैनिक जीवन में से कर सकती है?
0: जैसे आपने सर्वाइकल की बात की, तो सबसे पहले हमें सर्वाइकल को समझना पड़ेगा
1: जी।
0: देखिए हमारी गर्दन में 7 बोन्स होती हैं जो सर्वाइकल के नाम से जानी जाती हैं, और जब धीरे धीरे इनमें इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और इन्फेक्शन जब 7 बोन्स में कम्प्लीट हो जाता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस कहलाता है। इसका मतलब यह है कि जो आपकी मसल्स हैं वो स्टिफ हो गई हैं और टाइट हो गई हैं। अब ना तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छा है और ना ही ऑक्सीजन का फ्लो, और उसके बाद क्या हो रहा है वो पार्ट आपका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सर्वाइकल का जो पेन होता है वो आपके आधे सर में भी जाएगा, कंधों तक जाएगा, हाथ की उंगलियों तक जाएगा, झंझनाहट स्टार्ट होना, चक्कर आना, ये आम बात है, इसमें हो जाता है, छाती में दर्द रहना। अगर आप चाहते हैं तो हमारा पहला नियम ये है कि धीरे धीरे हमको ऐसी एक्सरसाइज करनी होगी जिसमें हैंड रोटेशन होते हैं, नेक रोटेशन होते हैं, और आप कुछ एक्सरसाइज होती हैं स्विमिंग वाली होती हैं, तो आप अगर उनको करते हैं या फिर एक आप घर में ना करके, मैं ये राय दूंगी आपको कि अगर आप किसी योगाचार्य के सामने कुछ समय उनसे अभ्यासों को सीख लें और उसके बाद ही अगर आप करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। और जैसे इसमें भुजंगासन भी किया जाता है, मार्जरी भी किया जाता है, लेकिन निर्देशानुसार। कमर दर्द में जो सबसे कारगर आसन होता है वो मरकट आसन है, मरकट आसन के भी कई स्टेप होते हैं वो कराए जाते हैं आपको। इसके अलावा आप सेतु बंद कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं और चक्रासन कर सकते हैं, और उसके बाद जब आपको लगेगा कि अब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो जो भी गुरु होगा वो आपको एकदम चक्रासन या कोई भी ऐसे आसन नहीं कराएगा, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को इस लेवल पे पहुंचाएगा, उसके बाद ही आपको इन आसनों का अभ्यास करने के बाद ही आपको रोगों से मुक्त कराएगा।
1: जी मैम, मैम जैसे हम देखते हैं रक्तचाप की भी एक समस्या रहती है, चाहे वो उच्च रक्तचाप की हो या निम्न रक्तचाप की हो, तो क्या ये भी द्वारा इसको कम किया जा सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है। योग जो होता है वो बैलेंस की बात करते हैं। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि बॉडी में हमारे 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, 3 एलिमेंट्स होते हैं, और ये आपकी बॉडी में ऑलरेडी हैं, और जब ये 3 एलिमेंट्स बैलेंस में रहते हैं आप स्वस्थ हैं, और जब बैलेंस में नहीं रहते तो अस्वस्थ हैं, और इनको बैलेंस में रखने का काम योग करते हैं। और योग में जब आप ब्रीदिंग करते हो, सांस लेना, सांस छोड़ना, तो उससे आपकी जो ब्लड फ्लो है वो भी बैलेंस में आ जाते हैं, जिससे बीपी हाई हो या लो हो वो फिर सॉल्व हो जाती है परेशानी आपकी। और इसमें आप कर सकते हैं, बीपी हाई का अगर दिक्कत है तो आपको ताड़ासन करना चाहिए, सारे ऐसे आसन करने चाहिए जिसमें ब्लड का फ्लो आपका पैरों की तरफ हो जाए, ध्यान दीजिए पैरों की तरफ कहीं, जिसमें ब्रेन की तरफ ना जाए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो ध्यान दीजिए उसमें आप सारे आसन ऐसे करेंगे जिसमें ब्लड का फ्लो आपका ब्रेन की तरफ जाए, ऊपर की तरफ।
1: जी मैम, मैम बढ़ती उम्र के साथ कई समस्याएं सामने आती हैं, तो ऐसे में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको योग से तरह से लाभ मिल सकता है?
0: देखिए, वैसे तो जो योग होता है वो चाहे बच्चा हो, व्यस्क हो या फिर बूढ़े

0: सभी के लिए कारगर होता है। अगर आपके सामने कोई पेशेंट है उसकी इसको देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको योग कराए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने जैसे बोला कि एक व्यस्त व्यक्ति है, आप उसको क्या योग कराएंगे, तो उसकी कंडीशन को देखा जाएगा, उसकी डिजीज को देखा जाएगा। उसके बाद हम उनको पूरा गाइड करते हैं। जो डिजीज है उनमें जो आसन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप हर आसन हर व्यक्ति को करा सकें, प्लस उनके लिए ज्यादा कारगर है कि वो प्राणायाम करें।
1: जी मैम, जो लोग योग प्रारंभ करना चाहते हैं आपकी राय में उन्हें कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो सोचना नहीं है, अगर करना है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। उनको एकदम हाई लेवल पर लेकर नहीं जाएंगे, और कल नहीं आज और अभी से ही स्टार्ट करेंगे, ये उनके अंदर भावना होनी
1: चाहिए। तो क्या कुछ खास बातें भी उन्हें ध्यान में रखनी होगी कि कैसे वो स्टार्ट करें?
0: पहले आपको अपनी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, मसल्स को लचीला करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हाईली योग के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आप किसी योग सेंटर में जा रहे हैं या किसी योगाचार्य के अंडर में आप योग कर रहे हैं, तो वो फिर उसका दायित्व बनता है कि वो पहले आपको देखे कि आपकी स्टार्टिंग है, कि बॉडी कितनी लचीली है, तो वो फिर अपने अकॉर्डिंग आपको कराएगा।
1: जैसे जो घर पे ही योग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन से ऐसे आसन हैं जो सुटेबल हो सकते हैं?
0: महिलाओं के लिए आसन अलग होते हैं, पुरुषों के लिए अलग होते हैं, सबसे पहले तो ये बात जान लेनी। और स्टार्टिंग जो होती है वो सबसे पहले कदम ताल से ही स्टार्ट होती है, जिसको आम भाषा में वॉक कहते हैं। धीरे धीरे पैर के पंजों को उठाना सूक्ष्म आसनों से स्टार्ट करते हैं। तो आप घर में सबसे पहले कदम ताल से स्टार्ट कर सकते हैं, बटरफ्लाई कर सकते हैं, अर्धचक्रीय आसन है, चक्की चालन कर सकते हैं, नौका संचालन कर सकते हैं, ऐसे कई आसन है, उच्चासन कर सकते हैं। धीरे धीरे लेट कर आप उत्तान पादासन कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, पादवृतासन कर सकते हैं, खड़े होकर हस्त उत्तानासन पादहस्तासन कर सकते हैं। ऐसे आसन है जो आप इजीली कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। आपको बस एक चीज देखना पड़ेगा कि मुझे कोई डिजीज तो नहीं है।
1: जैसे हमारा कार्यक्रम महिलाओं का कार्यक्रम है और हमारे कार्यक्रम से सभी स्तर की महिलाएं जुड़ी हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम घर संसार के माध्यम से हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे वे योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित हो सके?
0: सबसे पहले तो मैं तो सभी माताओं और बहनों से तहे दिल से क्वेस्ट समझें या फिर एक अच्छा मतलब निर्देश उन्हें देना चाहूंगी। मुझे लगता है महिलाओं के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं बट वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देती ही नहीं है। उनको समझना पड़ेगा कि अगर मैं हूँ तो सब कुछ है। अगर उनका हेल्थ है तो वो अच्छे से बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, परिवार में सारे दायित्व अपने निभा सकती हैं। क्योंकि अगर महिलाएं एक दिन भी बीमार पड़ जाती हैं या कोई भी उनको प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोई भी कार्य सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्हें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, तब ही उनसे सभी प्यार कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ हैं तो सारे कार्य संपन्न होंगे अच्छे से, अन्यथा अगर अस्वस्थ रहेंगे तो फिर आप कोई भी दायित्व नहीं निभा सकते।
1: जी कमलेश जी, आप हमारे कार्यक्रम घर संसार से जुड़ी और आपने योग से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारी श्रोता बहनों के साथ साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें उन्हें स्वस्थ, सकारात्मक और संतुलित जीवन की ओर प्रेरित करेंगी। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का साथी विषय पर योग ट्रेनर श्रीमती कमलेश बिष्ट से की गई हमारी क्षेत्र संकरित बातचीत। और अब बहनों, कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं सैनिक फिल्म का ये मधुर गीत।

बहनों आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर संसार। बहनों जिस प्रकार योग करने से हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, उसी प्रकार हमारे मन की शांति और खुशी को बनाए रखने में एक और चीज़ हमारी बहुत बड़ी साथी है और वो है संगीत। बहनों संगीत की मधुर धुनें हमारे मन को सुकून देती हैं, तनाव को कम करती हैं और जीवन में नई ऊर्जा भरती हैं। बहनों संगीत के महत्व को बताने के लिए हर वर्ष 21 जून यानी आज ही के दिन विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य संगीत को बढ़ावा देना, नए कलाकारों को मंच देना और लोगों को ये बताना है कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने और जीवन में खुशी तथा शांति लाने का माध्यम भी है। बहनों एक अच्छा संगीत सुनने से मन शांत होता है, तनाव चिंता और उदासी कम करने में भी ये मददगार होता है। साथ ही ये हमारे मूड को बेहतर बनाता है और सकारात्मक सोच विकसित करता है। हम संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को बड़ी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। बहनों हमें अपनी पसंद के अनुसार संगीत जरूर सुनना चाहिए। इस वक्त कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हमारी एक श्रोता की पसंद का गीत। उम्मीद करते हैं कि आपको भी जरूर पसंद आएगा। आप भी आनंद लीजिए हमारे साथ इस मधुर गीत का।

बहनों इसी गीत के साथ अब वक्त हो चला है आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने का। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब आज के अंक से अपनी रेडियो दोस्त सुनीता को दीजिए अनुमति। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है दीपिका पंत। नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं आप। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 3 पोत दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता

0: बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह

0: जन सहभागिता के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा में बड़ी संख्या में योग साधकों के संग योगाभ्यास कर योग को जीवन शैली बनाने का आह्वान किया और चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं योगेश धस्माना और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा

0: किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन भी बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट्स सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: और आज कई केंद्रीय और राज्य मंत्रियों ने भी योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जन सहभागिता के साथ मनाया गया। राज्य के सभी जिलों में विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत जिले के बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधकों, सशस्त्र सीमा बल के जवानों, छात्र छात्राओं, युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है। वर्तमान समय में तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवन शैली से उत्पन्न चुनौतियों के बीच योग एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखें बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएं तथा नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक पहचान मिली और आज विश्व के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग से जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बनबसा में राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य शारदा नदी तट पर योग और आध्यात्मिक साधना को व्यापक रूप से बढ़ावा देना है। इस बीच राजधानी देहरादून में विश्व योग दिवस पर देहरादून में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रतिभागियों के साथ योग कर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया गया तथा नियमित योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री उनियाल ने कहा कि योग आज केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।
2: भूमि से बचने के इस योग को आज पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया, ये इस बात का प्रतीक।

0: बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी।
1: इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि आज आयोजित NEET UG पुनर्परीक्षा में 22,00,000 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। श्री प्रधान ने यह भी बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकांश परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और पुनर्मूल्यांकन तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी परिणाम भी जल्द प्रकाशित कर दिए जाएंगे। राज्य में भी पुनर्परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार ने परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए नो रिस्क रणनीति अपनाई है। राज्य में 53 परीक्षा केंद्रों पर करीब 21,000 अभ्यर्थी कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा देंगे। राजधानी देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित MDDA के सिटी फॉरेस्ट पार्क को और अधिक आकर्षक एवं जन सुविधाओं से युक्त बनाने की दिशा में कदम तेज हो गए हैं। इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 12 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित इस आधुनिक पार्क का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया और लोगों से सीधे संवाद कर जानकारी ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पार्क में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि पार्क आने वाले लोगों के सुझाव प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम विकसित किया जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जन सहभागिता के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबसा में बड़ी संख्या में योग साधकों के संग योगाभ्यास कर योग को जीवन शैली बनाने का आह्वान किया और चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए चराग जयपुर के कलाम के बाद आइए सुनते हैं नुसरत बद्र का लिखा नगमा आवाज़ है सोनू निगम की।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम का समापन करते हैं जगजीत सिंह के गाए बशीर बद्र के कलाम से।
1: मुझे

0: जगजीत सिंह के गाए बशीर बद्र केसरी कलाम के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है राकेश ढोंडियाल का लिखा रूपक हिमालय की रखवाले।
1: प्रस्तुत है उत्तराखंड के हिमालय संरक्षण आंदोलनों पर केंद्रित विशेष रूपक हिमालय के रखवाले। आलेख और प्रस्तुति राकेश ढोंडियाल।

हिमालयी राज्य उत्तराखंड के विवाह संस्कारों में इन दिनों पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ एक नई पर्यावरणीय परंपरा भी जुड़ गई है।

0: हाल ही में जब देहरादून की निष्ठा रावत का विवाह हुआ तो ससुराल विदा होने के पूर्व उन्होंने अपने घर के आंगन में एक फलदार वृक्ष का पौधा लगाया। आज निष्ठा की माँ सुरेशी देवी इस पौधे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी हैं। वे पूरे जतन से हर दिन इसकी देखभाल करती हैं।
1: पानी डाल के गोबर मिट्टी से हर दिन खुदाई करके उसको ठीक ठाक के रखते हैं।
0: माँ और बेटी के रिश्ते की डोर को वृक्षों का रक्षा सूत्र बनाने का ये विचार सूझा था राजकीय इंटर कॉलेज ग्वालदम में सेवारत एक प्रवक्ता को, जिनका नाम है कल्याण सिंह रावत। दरअसल वे पूर्व में वृक्षारोपण के कई औपचारिक आयोजनों का हश्र देख चुके थे।
2: एक जगह पर वृक्षारोपण हुआ, मैंने देखा कि खूब पेड़ लगे, दूसरे साल एक पेड़ भी जिंदा नहीं हुआ और मुझे लगा हमें कुछ दूसरे रूप में वृक्षारोपण करना होगा ताकि हम एक पेड़ लगाएं वो जिंदा रहे। बस माँ और बेटी के इस प्यार को मैंने एक पेड़ से जोड़ा। जब बेटी विदा होगी वो अपने दूल्हे के साथ एक पेड़ लगा करके जाएगी और जब वो चले जाएंगे तो माँ अपनी बेटी की लगाए गए पेड़ को कभी सूखने नहीं देगी।
0: उत्तराखंड के एक छोटे से शहर ग्वालदम से जब इस अनूठी पहल की शुरुआत हुई तो इसे मैती आंदोलन का नाम दिया गया।
2: पहाड़ में हमारा मैत का मतलब मायका होता है और मैती का मतलब होता है गांव की संपन्नता।
0: जल्द ही ये आंदोलन बेटी के मायके तक सीमित न रहकर उसके ससुराल भी जा पहुंचा।
2: बेटी को सबसे पहले ससुराल में पानी दिखाया जाता है कि बेटी ये पानी है, ये हमारी गांव की जीवन रेखा है और वही बेटी उस पानी को भरकर अपने सारे परिवार को पिलाती है और संकल्प दिलाती है कि मैं भी इस पानी को बचाने के लिए काम करेंगे। तो हमने कहा पानी केवल पूजा करने से नहीं बचता है, पानी बचेंगे जब हमारे पास जंगल होंगे, हमारे पास पेड़ होंगे, तो एक पेड़ लगाने की परंपरा हमने वहाँ भी डाली है। जब पांडेरा पुजाई होगी वहाँ भी आप एक पेड़ लगाएंगी। तो इसी तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ता गया, लोगों ने आत्मसात किया और आज इंडोनेशिया में तो कानून बना दिया है कि आप शादी तब करेंगे जब आप एक पेड़ लगाने का प्रमाण पत्र देंगे। इधर राजस्थान ने और गुजरात ने और हिमाचल प्रदेश ने अपने यहाँ कैबिनेट में पास कर दिया है कि हम इस आंदोलन को, चाहे किसी रूप में है, हर शादी पर एक पेड़ लगाने की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से आज 17-18 राज्यों में भी ये आंदोलन दस्तक दे चुका है और 5-6 देशों में, नेपाल में मैती नेपाल के नाम से चल रहा है, वहाँ भी पेड़ लगाने की परंपरा है और ये आंदोलन कहीं ना कहीं हमारे हिमालय और हिमालय की सभ्यता को बचाने में कारगर साबित होगा।

0: पर्यावरणीय महत्व के अपने कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विज्ञान के इस दूरदर्शी प्रवक्ता ने हिमालय पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों और इसके कारण उत्पन्न होने वाले जल संकट का अनुमान बहुत पहले लगा लिया था।
1: हमारे पहाड़ में जब बारिश होती थी तो एक सम बारिश होती थी और लगातार वो बारिश चलती थी, वो हमारे खेतों को मिलती थी और वही पानी जमीन के अंदर जा करके हमारे जो नीचे एक्वीफियर होते वो भर जाते थे। लेकिन मैंने देखा कि लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि साहब वहाँ बादल फटा, दूसरी जगह बादल फटा, और फिर बारिश का क्या हुआ कि बारिश हो ही नहीं रही थी, लगातार सूखा पड़ रहा था। ये हो रहा था कि धीरे धीरे जो CFC है और जो ग्रीन गैसें हैं ये बढ़ रही हैं, तो इनके बढ़ने से वायुमंडल का तापक्रम बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग एक नया शब्द आया था, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और इसको तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हमारे पास जंगल होंगे और हमारे पास वन होंगे।
0: मैती आंदोलन की शुरुआत सन 1995 में हुई थी। 3 दशक भी नहीं बीते थे कि इस हिमालयी राज्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों ने भयावह रूप ले लिया। तापमान बढ़ा, बर्फबारी कम हुई और हिमनद पिघलकर पीछे की ओर जाने लगे। भूविज्ञानी प्रोफेसर हरिश्चंद्र नैनवाल, जो पिछले 30 वर्षों से हिमनदों में हो रहे बदलावों पर शोधरत हैं।
2: हिमालय में, चाहे वो सेंट्रल हिमालय हो चाहे वेस्टर्न हिमालय हो, इनमें जो हिमनदों की खिसकने की दर है वो लगभग 20 मीटर प्रति वर्ष है। ग्लेशियर का ये कहते हैं मास बैलेंस। मास बैलेंस का मतलब यह है कि एक साल में कितनी बर्फ ग्लेशियर में आई और एक साल में कितनी उससे एबिलेट हुई, पिघली है। तो अगर आई कम है, पिघली ज़्यादा है, तो नेगेटिव मास बैलेंस हुआ और यही हो रहा है। मैक्सिमम हिमालयन ग्लेशियर में नेगेटिव मास बैलेंस है। इन दो जोन पे, जहाँ पे बर्फ आकर के टिकती है उसको जोन ऑफ एक्युमुलेशन कहते हैं, जहाँ से बर्फ पिघलती है उसको जोन ऑफ एबिलेशन कहते हैं। इनके बीच की जो लाइन है इसको ELA कहते हैं, इक्विलिब्रियम लाइन एल्टीट्यूड। यही क्लाइमेट चेंज में सेंसिटिव लाइन है। हम देख रहे हैं कि ELA लगातार ऊपर को शिफ्ट होती जा रही है। इसका मतलब ग्लेशियर का नेगेटिव मास बैलेंस है, ग्लेशियर में एक साल में प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर एबलेट हो रहा है।
0: हिमालयी हिमनदों में आया ये परिवर्तन 18 देशों के लगभग 2 अरब लोगों को सीधा प्रभावित करने की सामर्थ्य रखता है।
2: इंडियन हिमालयन रीजन में हमारे पास करीब 9,575 ग्लेशियर हैं। तो हिमालय हमारे पास एक वाटर रिसोर्स है। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो हमारी मैक्सिमम नदियाँ, चाहे भागीरथी हो, अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, सारी की सारी नदियाँ ग्लेशियर फेड रिवर हैं। ऐसी नदी जिनके मुहाने पर हिमनद हैं, और हमारे जितने भी बड़े बांध हैं वो सारे बांध ऐसी नदियों पर बनाए जाते हैं जो हिमनद से जनित हो रही हैं। तो पहला तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर ग्लेशियर में कोई चेंज आएगा तो इन नदियों में चेंज आएगा। इन नदियों में चेंज आएगा तो इन पर बने हुए बांध में जनरेशन में चेंज आएगा, इन नदियों से होने वाली बाढ़ में चेंज आ गया, इन नदियों से होने वाले इरिगेशन में चेंज आ गया। ग्लेशियर हेल्थ की नेगेटिव हुई तो ग्लेशियर की पिघलने की दर ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से उसके नीचे जोन में, चाहे सिंचाई पे हो, चाहे मानव रहित कोई भी और कार्य हो, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, उन सब पे व्यापक दुष्प्रभाव इसके पड़ेंगे।
0: ১৯৮০ के बाद पृथ्वी का तापमान 0.18 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है। तापमान वृद्धि के कारण चट्टानी हिमनद कितने विध्वंसक हो सकते हैं, इसका अनुमान 2021 में उत्तराखंड के रैणी गांव में हुई तबाही से सहज ही लगाया जा सकता है।
2: अब आप ये देखिए कि ये जो रॉक ग्लेशियर टूटा, ये भी टेम्परेचर की वजह से टूटा है। ये टूटा तो आपका एक गाढ़ है वहां पर, उसमें आ गया और वहां पर थोड़ी देर के इसने ब्लॉकेट किया और उसके बाद नदी में स्थित जो हमारे पावर प्लांट थे उन सबको ध्वस्त कर दिया।
0: 2013 में केदारनाथ में आई आपदा जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के स्वरूप में आए बदलाव का एक स्पष्ट संकेत है।
2: बारिश उतनी हो रही है जितनी पहले होती थी, परंतु बारिश होने का जो समय है उसमें बहुत बदलाव हो गया। एक बारिश आपकी हुई जैसे केदारनाथ में हुई, क्लाउड ब्रस्ट हुआ, 24 घंटे के अंदर आपका 300 मिलीमीटर पानी पड़ गया, तो उसने जमीन के ऊपर जो रॉक है, पेड़ है, मिट्टी है, सबको बहा के लेकर के नीचे ले गया। मतलब पानी आपका नदी में गया, नदी से समुद्र में गया, उस पानी से हमारे जमीन के अंदर कुछ भी नहीं गया, सरफेस वाटर। तो वो आपके जो एक्वीफर हैं वो सूखे हैं। एक दूसरा हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, रोड कटिंग है या और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, वो कई बार, मैं हर बार तो नहीं कहूँ, कई बार वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं होती। कई बार हम एक्वीफर को ऐसे काट देते हैं कि उससे पानी नीचे चला जाता है, हमें मिलता नहीं। तो इससे नाले भी खत्म हो रहे हैं और जो नदियाँ रेन से फेड थी उनके संग्रहण क्षेत्र में अगर बारिश कम हो रही है तो नदियों में पानी भी कम होगा।

0: जहां एक ओर कल्याण सिंह रावत वृक्षारोपण के माध्यम से जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की मुहिम में जुटे हैं, तो वहीं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने एक सरल तकनीक के माध्यम से उत्तराखंड की नदियों को पुनर्जीवित कर वन क्षेत्र विस्तार का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है।
1: छोटे छोटे धारे और नदियों के संरक्षण के लिए हमने सरल समझा कि अगर हम आज जंगल लगाएंगे तो जंगल

पैदा होने में 10 साल लगेंगे, तो हमने और भी सरल तरीका कर दिया, पूरे कैचमेंट उसको वाटर सेट इसीलिए कहा जाता है, उसी से पानी नदियों को और धारों को मिलता है, तो हमने उनमें जल छिद्र बना दिए, एक क्यूबिक मीटर के एक हेक्टेयर में 300 जल छिद्रों से हमारी नदी में पानी आया। फिर हमने ऑब्जर्वेशन लूना शुरू की कि वहाँ पे क्योंकि हाई मॉइस्चर था, नीचे पौधे पैदा हो जाते थे, कभी सरफेस फायर नहीं लगी। जो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ कि जंगल अपने आप वापस आने लगे, हमने कोई एफॉरेस्टेशन नहीं किया, कुछ छोटे मोटे किए होंगे जंगली जानवरों के लिए, लेकिन वहाँ पे अब साल का बहुत अच्छा फॉरेस्ट कहलाता है। और इतना ही नहीं, अब हमारे यहाँ लेपर्ड भी आता है तो हिरन भी हैं, पोर्कोपाइन भी हैं, तो सुअर भी हैं, पूरा कुनबा हमारा वहाँ इकट्ठा हो। हमने 195 स्प्रिंग जो है धारे हमने उनकी वापसी की है इसी सिंपल और सरल प्रयोग के साथ। नया विज्ञान चंद्रमा में जा सकता है, मंगल में भी, लेकिन अगर पानी लाना हो तो आप प्रकृति को समझना होगा।

0: आज जहां हिमालय है, जुरैसिक काल में वहां टैथी सागर हुआ करता था। इसके दोनों ओर दो विशाल भूखंड थे। भूगर्भीय गतिविधियों के कारण जब यूरेशियन और भारतीय प्लेटें आपस में टकराई तो दबाव के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। भारतीय प्लेट आज भी लगभग 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से उत्तर की ओर खिसक रही है। इस कारण हिमालय हर साल 4 से 10 मिलीमीटर ऊंचा हो जाता है। गतिशील हिमालय पर जलवायु परिवर्तन की मार ने इसे बेहद संवेदनशील बना दिया है। चिपको आंदोलन के प्रणेता और हिमालय बचाओ का नारा देने वाले सुंदरलाल बहुगुणा इसीलिए अपनी आखिरी सांस तक हिमालयी क्षेत्र में बड़े बांधों के निर्माण के विरुद्ध मुखर रहे। सुंदरलाल बहुगुणा के पुत्र और वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा।
1: बड़े बांधों से हम बाज आए, आखिर आपको बांध इसलिए बनाना कि आपको फोर्स के साथ पानी की धार चाहिए। तूतियां सब जगह बह रही है। रन ऑफ रिवर पद्धति से बिजली बनाए कि जैसे यूरोप के देशों में बना रहे हैं। उन्होंने पहले बड़े बांध बनाए, रूस ने सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाए और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ अराल सागर नामक एक समुद्री पूरा सूख गया। आप कल्पना कीजिए कि कभी अगस्त मुनि के बारे में सुनते जो समुद्र पी गए, लेकिन हमारी सभ्यता के भस्मासुर ने रूस का एक पूरा समुद्री पी डाला। उस समुद्र खत्म में आज कहीं है ही नहीं, वो धरती पर अराल सागर उसे कहते हैं।
0: पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी हिमालय क्षेत्र में बड़ी संरचनाओं के निर्माण के पक्षधर नहीं है। उनका मानना है कि पीढ़ियों से अर्जित अनुभवजन्य ज्ञान को दरकिनार कर टिकाऊ विकास संभव नहीं है। इसी मंत्र को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने उत्तराखंड की लुप्तप्राय पंचक्की घराट की सम्मानजनक वापसी करवाई।
2: जब हमने इस प्रयोग को किया था तो पहले बहुत से लोगों ने हमें ये कहा कि ये तो बहुत पुरानी बात कह रहे हो, ये कैसे जिंदा होगी। सच ये है कि आज घराट एक डिग्निटी के साथ वापिस आया और घराटी भी जो पहले आटा पिसाई करीब 5-7 किलो एक घंटे में होती थी, आज वो 30-30 किलो एक घंटे में हो गई। डीजल इंजन इलेक्ट्रिकल इंजन ने घराट को जहां मार दिया था, कई जगह अब घराट ने ही डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन बंद करवा दिए, क्योंकि नया विज्ञान और परंपराएं इन दोनों का समावेश था और आज घराट एक नई सिरे से जिंदा हो गया और नेशनल वाटर मिल स्कीम भी आ गई। परंपरा भी एक ज्ञान विज्ञान रहा है जिसे विजडम हम कहते हैं, और विजडम हजारों सालों में आती है, वो एक दिन में रिप्लेस नहीं की जा सकती। लेकिन अगर उसी विजडम को उपयोग में लाते हुए हम उसमें नए विज्ञान का समावेश करें तो हम बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। बनस्पत इसके कि कोई नया विज्ञान आप गाँव में लेके जाए तो न तो नया चलेगा और पुराना तो गायब कर ही दिया।
0: हिमालय के संरक्षण और इस क्षेत्र के समाजों के सतत विकास के लिए डॉक्टर जोशी पारिस्थितिकी युक्त आर्थिकी में विश्वास रखते हैं। संपूर्ण भारत और विश्व में इस

0: विचार को प्रचारित करने के उद्देश्य से उन्होंने हाल ही में मुंबई से देहरादून तक 1600 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा की।
1: कोई भी इकोनॉमी स्टेबल तब होगी जब इकोलॉजी स्टेबल होगी, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमी के आधार ही नेचर के प्रोड्यूस है और नेचर पे ही आप डिपेंड है।
0: हिमालय के प्रति चिंता को अपना कर्म क्षेत्र बनाने के लिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने नौकरी छोड़कर वर्ष 1983 में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्था हेस्को की स्थापना की। हिमालय के पर्यावरणीय अध्ययन के साथ ये संस्था परंपरागत ज्ञान में आधुनिक विज्ञान का समावेश कर सतत विकास के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी नवोन्मेष में जुटी है। बुरांस नाम के जंगली फूलों का स्क्वैश उत्तराखंड में आज एक बड़े व्यापार का रूप ले चुका है। इसकी पहली प्रसंस्करण इकाई लगाने का श्रेय भी हेस्को को जाता है।
1: वो ऐसे लगी थी कि एक गांव में जब हम पदयात्रा करके जा रहे थे तो बुरांस एक फूल होता है लाल रंग का, उसकी चटनी और भात लोगों ने खिलाया, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या? उन्होंने कहा साहब बुरांस है। तो हमारे एक साथी था, उसकी समझ में आया कि साहब इसका तो बड़ा अच्छा स्क्वैश बन सकता है।
0: डॉक्टर जोशी सकल घरेलू उत्पाद की तर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद के आकलन की बात करते हैं। उत्तराखंड उनके इस विचार को अमली जामा पहनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
1: ग्रोथ के चार पिलर थे, कितनी नौकरियां दी, कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कितना एग्रीकल्चर हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। इन चारों में प्रकृति पर्यावरण कहीं नहीं था। इसमें नदियों का हिसाब किताब नहीं था, पानी का हिसाब किताब नहीं था, हवा का नहीं था, मिट्टी का नहीं था। ये जीवन के चार आधार हैं, क्योंकि प्राथमिकता इकोनॉमी थी तो ये चला। लेकिन अब पिछले एक दशक से दो दशक से एक इकोलॉजिकल क्राइसिस आनी शुरू हो चुकी है। और क्राइसिस ये है कि पानी हमारा बीच में से साथ छोड़ रहा है, पॉल्यूशन किस स्तर पर पहुंच गया है, मिट्टी जहरीली हो गई है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया है, और जंगल के नाम पर हम बहुत ज़्यादा रिच नहीं माने जा सकते। तो इसलिए समय आ चुका है कि एक और ग्रोथ मेजर होना चाहिए जो कम से कम हमें बराबर ये बताए कि इस साल हमारी ये GDP थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो इसी साल हमने कितने जंगल बढ़ाए, कितना पानी जो बारिश का पड़ा उससे रिचार्जिंग की, अंडरग्राउंड रिचार्जिंग की, कुएं तालाब नदियों को हमने सुसज्जित किया, और कितनी मिट्टी हमने ऑर्गेनिक की।

0: संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 50 से 100 वर्षों के दौरान तापमान वृद्धि और वर्षा के स्वरूप में बदलाव जैसे कारक न सिर्फ कृषि को प्रभावित करेंगे बल्कि इसका खाद्य सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने स्थानीय किसानों को इस समस्या के बारे में वर्षों पूर्व आगाह कर दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा के पुत्र और वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा।
1: 1978 में उत्तरकाशी में गंगा में बहुत भीषण बाढ़ आई थी। एक पूरा पहाड़ फिसल के वहाँ हरदिल से नीचे गंगा नदी पर आ गया, उसने पूरी नदी को ब्लॉक कर दिया। तो मेरे पिता उस समय पैदल चलते चलते गोमुख पहुँचे, पहली बार वो गोमुख गए। और जब उन्होंने वहाँ गोमुख ग्लेशियर की दुर्दशा देखी तो उन्होंने उस समय से सेब और चावल खाना छोड़ दिया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा भाई इसमें तो पानी बहुत खर्च हो रहा है और अगला संकट पानी का आने वाला है, ग्लेशियर हमारे सिकुड़ रहे हैं। तो उन्होंने उस बात को पहचाना और गोमुख में भी 2-3 बार गया हूँ, पर मेरे देखते देखते मैं हर बार जब वहाँ जाता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखता हूँ।
0: जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की दिशा में सुंदरलाल बहुगुणा का ये निर्णय बहुत मायने रखता था। चिपको आंदोलन में उनका सहयोगी रहा एक किसान इस बात का मर्म जान गया। वो जान गया कि बदले परिवेश में हमारे पारंपरिक बीज टिकाऊ खेती और खाद्य सुरक्षा के लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं। विश्वविख्यात बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध इस किसान का नाम है विजय जड़धारी।
2: हाइब्रिड बीज हैं या उन्नत बीज हैं, ये बहुत जल्दी सूखे के कारण खराब हो जाते हैं। जब ज़्यादा बारिश होगी तो सब खराब हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पारंपरिक बीज हैं, सूखा भी आ जाएगा तब भी होगा ही होगा, बारिश भी ज़्यादा आ गई तो तब भी होगा ही होगा। और पारंपरिक बीजों में भी जिसको मोटा अनाज वैज्ञानिकों ने कहा

0: जिसको अंग्रेजी में मिलेट बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा कारगर है सूखे से लड़ने के लिए। जैसे हमारा मंडुआ, झंगोरा, कौणी हो गया, चीणा हो गई, मारसा हो गया, वो गलकुट्टू हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा कारगर है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1986 में पहला सूखा उत्तराखंड में पड़ा, 86-87 में। आप देखिए उस साल कई फसलें पिट गई, लेकिन रामदाना, चौलाई, मारसा जिसको बोलते हैं, उसकी फसल बहुत बढ़िया हुई। कोदा की भी हुई, झंगोरा की भी हुई, लेकिन और फसलें पिट गई, धान पिट गया। उनमें इतनी रेजिस्टेंस है, इतनी इम्यूनिटी है, हर चीज़ को वो झेल जाते हैं।
1: विजय हाइब्रिड बीजों और रासायनिक खेती को आजमा चुके थे। शुरुआत में बहुत अच्छे परिणाम मिले, लेकिन 3-4 साल में ही इनके खतरनाक असर दिखने लगे।
0: तो तब दिमाग में बात आई कि नहीं, ये खेती हमारी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, हमारी मिट्टी को खराब कर रही है और हमें एक तरह से बीजों पर निर्भर बना रही है। तो हम लोग दूरस्थ के इलाकों में गए, उन इलाकों में गए जहाँ आज का साइंटिस्ट नहीं पहुँचा था, जहाँ कृषि विभाग नहीं पहुँचा था। तो हमने देखा वहाँ विविधता बची हुई है, तरह तरह के बीज हैं। तो फिर बीजों का कलेक्शन हम लोगों ने शुरू किया और अपने खेतों में उन बीजों को उगाकर फिर किसानों में बांटना शुरू किया।
1: विजय जड़धारी ने इस तरह बीजों की सैकड़ों प्रजातियों को न सिर्फ इकट्ठा किया, बल्कि उन्हें स्वयं उगाकर कई किसानों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया।
0: बीज बचाओ आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि 230 तरह का राजमा हमारे पास है अभी उत्तराखंड में। मंडुआ की 12 प्रजातियां मैंने रखी हुई हैं और उनको हर साल उगाते हुए हैं। झंगोरा की 8 प्रजातियां हैं। नौरंगी को लोग रयास, जिलंगा और रैंस के नाम से जानी जाती है। 25-30 तरह की नौरंगी की दाल हमारे पास है। लोबिया की 10-12 प्रजातियां। भट्ट जो ट्रेडिशनल पारंपरिक हमारा सोयाबीन है, उसकी भी 5-6 प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में, 4-5 प्रजातियां तो हम अकेले ही उगा लेते हैं।
1: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुल खेती योग्य जमीन का सिर्फ 13% हिस्सा सिंचित है। वर्षा पर निर्भरता के चलते यहाँ के किसानों ने एक प्रकार की मिश्रित खेती इजाद की थी, जिसे बारहनाजा कहा जाता था। भारत की हरित क्रांति के प्रभाव में ये खेती सिर्फ दूरस्थ अंचलों तक सीमित रह गई। बारहनाजा का शाब्दिक अर्थ है 12 प्रकार के अनाज। हालांकि इसमें अनाज के अलावा बहुत कुछ और भी था,
0: यानी अनाज भी है, दलहन भी है, तिलहन भी है, मसाले भी हैं। जैसे बारहनाजा का मुखिया मंडुआ हो गया, कोदा हो गया, फिर मारसा हो गया, कुट्टू पापड़ हो गया, जन्याला हो गया, गहत हो गया, भट्ट हो गया, नौरंगी हो गया, तिलन में तिल हो गया, भंगजीर हो गया, मसाले में जख्या है, जैसे भांग है, कहीं कहीं भांग भी लोग उगाते हैं। यानी बारहनाजा में ऐसी फसलें हैं जो हमारी खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विजय जड़धारी ने लुप्त प्राय बारहनाजा को न सिर्फ स्वयं अपनाया, बल्कि इसे पर्वतीय क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय बना दिया।
0: बारहनाजा ऐसी फसल है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है और किसानों का हजारों हजार साल का ज्ञान है। और ये बारहनाजा जो पद्धति है, ये किसानों ने सोच समझ के स्वीकार की है। किससे सीखा? जंगल कहीं एकल नहीं होता है, जहाँ भी होता है मिश्रित होता है।
1: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित और कई महत्वपूर्ण पुस्तकों के लेखक विजय जड़धारी आज 69 साल की आयु में भी बारहनाजा की खेती करते हैं। देश विदेश के मंचों पर इनकी आवाज उठाने के फलस्वरूप मोटे अनाजों को पौष्टिक अनाजों के रूप में मान्यता मिली।
0: मंडुआ में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। आप देखिए, पुराने समय में जो हमारे पूर्वज होते थे, भड़ होते थे, तो अगर कहीं गिर जाते थे, पेड़ से गिर गए, ढंगार से गिर गए, तो किसी की हड्डी नहीं टूटती थी। आज तो लोग पलंग से नीचे गिर जाते हैं तो हड्डी टूट जाती है। तो यहाँ का जो खान पान है, हमने कहा इनको मोटे अनाज नहीं, पौष्टिक अनाज कहा जाना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर भी हम लोगों ने इसका एक मिलेट नेटवर्क ऑफ इंडिया बना के, और अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने 10 मई 2018 को एक गजट नोटिफिकेशन करके इन अनाजों को पौष्टिक अनाज, न्यूट्री सीरियल के नाम से मान्यता दी।

0: प्रख्यात साहित्यकार निर्मल वर्मा ने एक स्थान पर लिखा है कि पर्वतीय लोग बेहद संवेदनशील होते हैं। इसका कारण है प्रकृति के साथ उनका गहरा जुड़ाव। यही वजह है कि उत्तराखंड में प्रकृति और पर्यावरण के सरोकारों को लेकर कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जिनकी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी है। लेकिन क्या हिमालय की सुरक्षा सिर्फ हिमालयी लोगों की चिंता है?
1: पिछले कम से कम 4 दशक से हिमालय के प्रति पूरे विश्व में चिंता बढ़ी है, और उसकी वजह यह है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हिमालय की जो भी गतिविधि है, ये हिमालय की जो आपदा है, वो कभी भी स्थानीय आपदा नहीं है, बल्कि वो वैश्विक आपदा उसे माना चाहिए। क्योंकि सातों जो महाद्वीप हैं, इसके जो समुद्र हैं, 7 समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन हम अपनी गतिविधियों से इतने मजबूर हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी हम वो कर रहे हैं। अगर हम यू टर्न नहीं ले सकते तो जो गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग बताया था संयम का, तो वो तो हमें अपनाना ही पड़ेगा।
0: यदि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के आंकड़े देखे जाएं, तो हम पाएंगे कि हिमालय क्षेत्र में लोगों का कार्बन उत्सर्जन विकसित समाजों की तुलना में नगण्य है। बावजूद इसके ये लोग दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतने के लिए अभिशप्त हैं।
1: जो लोग आज भी प्रकृति के संरक्षक हैं, वो प्रकृति के ऑनरेरी गार्ड हैं। कोई उनको वेतन नहीं मिल रहा, लेकिन आज वो फिर भी उसे बचाए हुए हैं, तो उनको इसका मुआवजा देना चाहिए। और ये मुआवजा उन देशों को या उस समाज को, उन समाजों को देना चाहिए कि जिसकी वजह से प्रकृति का विनाश हुआ है।
0: दुनिया के तीसरे ध्रुव के रूप में विख्यात हिमालय जैव विविधता, प्राण वायु और जल का असीम भंडार है। भौगोलिक सीमाओं में बटा होने के बावजूद ये एक वैश्विक विरासत है। इसकी सुरक्षा का दायित्व सबका है। यदि हिमालय बचा रहा तो निश्चित ही ये धरा भी बची रहेगी।

0: हिमालय के रखवाले। उत्तराखंड के हिमालय संरक्षण आंदोलनों पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। वाचक स्वर विनय ध्यानी, आलेख एवं प्रस्तुति राकेश ढोंडियाल।
1: अभी आप सुन रहे थे रूपक हिमालय के रखवाले। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। ये प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत।

उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम में आपने पहला कुमाऊनी लोकगीत सुना तनुजा नौटियाल के स्वर में। अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश प्रसाद के स्वर में।

रेखा विष्ट के गाए इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ उत्तराखंड के लोकगीतों का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर

0: पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
1: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन

0: INS धुनागिरी संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि CBSE के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: CBSE की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे CBSE की 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। CBSE जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल

0: नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर G.S. बिस्ट की जानकारी, स्वीट कॉर्न एवं बेबी कॉर्न मक्का की वैज्ञानिक खेती।
3: किसान भाइयों, मक्का विश्व की प्रमुख धान्य फसलों में से एक है। भारत में धान एवं गेहूं के बाद मक्का सबसे महत्वपूर्ण धान्य फसल है। यह व्यापक रूप से उपभोग करने वाली धान्य फसल भी है। सामान्य मक्का के अतिरिक्त मानव भोजन के रूप में नाना प्रकार की विशिष्ट मक्का जैसे क्यूपियम, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न इत्यादि, इसके उपयोग प्रकार इसे हल्के नाश्ते स्नैक्स का एक स्वास्थ्यकर व पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। विविध जलवायु हेतु अनुकूलन क्षमता के कारण मक्का समुद्र तल से लेकर 3000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। उत्तराखंड में मक्का खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल है। यहाँ लगभग 22,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मुख्यतः हरे भुट्टे के लिए मक्का की खेती की जाती है। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। वर्ष भर यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। सैलानियों के आगमन से पर्यटक स्थलों व वहाँ पहुँचने वाले रास्तों में हरे भुट्टे की बहुत मांग रहती है। विगत कुछ वर्षों से राज्य में बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न का उपयोग भी बढ़ रहा है और यह प्रायः स्थानीय बाजारों में देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान में इनकी आपूर्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा से हो रही है। किसान भाइयों, वर्तमान वैज्ञानिक युग में जहां खेतीबाड़ी केवल जीवन निर्वाह का साधन न होकर एक व्यवसाय के रूप में उभर रही है, आवश्यकता है अधिक से अधिक मुनाफा देने वाली फसलों को उगाया जाए ताकि अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न की खेती भी एक अच्छा विकल्प है। किसान भाइयों, आज हम बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न की उत्पादन तकनीकी व व्यावसायिक खेती पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न क्या है। बेबी कॉर्न मक्के का अनिषेचित भुट्टा है जिसका आकार उंगली नुमा होता है। इससे सिल्क निकलने के 1 से

तीन दिन के अंदर तोड़ लिया जाता है। इसमें सिल्क 2 से 3 सेंटीमीटर तक लंबे रहते हैं। इसे सलाद, सब्जी, पकौड़े, खीर इत्यादि के रूप में खाया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अचार, मुरब्बा, जैम इत्यादि भी बनाए जाते हैं। छिलका रहित बेबीकॉर्न की उपयुक्त लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर व व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा व विटामिन्स के अलावा फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। स्वीटकॉर्न एक विशिष्ट मक्का है जिसमें सुक्रोज की मात्रा 16 से 24% तक होती है तथा यह खाने में मीठी होती है। एक या अधिक जीन की उपस्थिति स्वीटकॉर्न को सामान्य मक्का से अलग करती है। स्वीटकॉर्न की कटाई दानों की दुधिया अवस्था में की जाती है। स्वीटकॉर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देशों में सर्वाधिक लोकप्रिय सब्जियों में से एक है। भारत में स्वीटकॉर्न के हरे उबले मक्खन लगे भुट्टे बड़े चाव से खाए जाते हैं। मक्का गर्म जलवायु की फसल है। इसकी बढ़ावर के लिए अधिक तापमान व नमी की आवश्यकता होती है। अच्छे जमाव के लिए 21 डिग्री तथा बढ़ावर के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। घाटियों व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अप्रैल प्रथम सप्ताह तक जमाव हेतु आदर्श तापमान मिल जाता है। व्यावसायिक खेती व सफल उत्पादन हेतु उपयुक्त किस्मों का चयन महत्वपूर्ण है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अतिशीघ्र पकने वाली संकुल किस्म VL बेबीकॉर्न 1 व संकर किस्म CM VL बेबीकॉर्न 2 में से चुनाव कर सकते हैं। संस्थान द्वारा विकसित इन प्रजातियों की अप्रैल प्रारंभ में बुआई कर जून के प्रथम सप्ताह में बेबीकॉर्न की तोड़ाई की जा सकती है। इन किस्मों के अतिरिक्त अन्य केंद्रों द्वारा विकसित किस्में HM4 इत्यादि की खेती भी की जा सकती है। स्वीटकॉर्न हेतु संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित संकर किस्म CMVL स्वीटकॉर्न 1 के अतिरिक्त अन्य प्रमुख किस्मों माधुरी, प्रिया, मधुमक्का, सुगर 75, प्रेम, विन ऑरेंज स्वीट से उपयुक्त किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, स्वीटकॉर्न व बेबीकॉर्न की खेती सामान्य मक्का की भांति रेतीली भूमि से लेकर चिकनी मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट से भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ व नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक हो तथा जल निकास का उचित प्रबंध हो मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। खेत की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई करनी चाहिए तथा बाद में बुआई से पूर्व एक जुताई और करनी चाहिए। खेत पूरी तरह समतल हो तथा उसमें जल निकासी का उचित प्रबंध हो। मिट्टी की भौतिक स्थिति को दुरुस्त रखने व उसकी जल ग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु पहली जुताई के समय 2.5 से 3 क्विंटल प्रति नाली की दर से गोबर की खाद डालनी चाहिए। फॉस्फोरस व पोटास की आवश्यकता हर खेत में समान नहीं होती, अतः बुआई से पूर्व मिट्टी की जांच कर उर्वरकों की उचित मात्रा डालनी चाहिए। स्वीटकॉर्न व बेबीकॉर्न हेतु गोबर की खाद के अतिरिक्त 100 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस व 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। उर्वरकों की यह मात्रा 2.664 किलोग्राम DAP, 3.34 किलोग्राम यूरिया व 1.33 किलोग्राम MOP प्रति नाली से पूरी की जा सकती है। DAP व पोटास की पूरी मात्रा व यूरिया की 1/3 मात्रा बुआई से पहले खेत में मिला देनी चाहिए। यूरिया की शेष मात्रा का आधा भाग पौधे की घुटने तक की अवस्था व शेष भाग नरमंजरी या बल्लर आने पर टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। कुर्मला तनाभेदक कीट, कटवम इत्यादि का प्रकोप हो तो 500 ग्राम फोरेट 10G प्रति नाली अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, उपयुक्त किस्मों के प्रमाणित बीज ही बोने चाहिए। बुआई कतारों में करनी चाहिए। स्वीटकॉर्न हेतु कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर व कतार में पौधों से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर रखने से प्रति हेक्टेयर पौधों की आदर्श संख्या 65,000 से 67,000 रखी जा सकती है। बुआई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। बीज 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। एक नाली क्षेत्रफल में 1300 से 1400 पौधे रखने चाहिए, जिसके लिए 200 से 225 ग्राम बीज पर्याप्त है। बीज के फफूदी लगने से जमाव प्रभावित होता है तथा प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ें व तना सड़ने लगते हैं। इससे बचाव के लिए कवकनाशी थीरम 3 ग्राम या कार्बनडाइजियम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर बोना चाहिए। चूंकि बेबीकॉर्न पुष्पावस्था में तोड़ ली जाती है, अतः इससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में सामान्य मक्का से दुगने पौधे रखे जाते हैं। पौधों के आदर्श घनत्व हेतु 2 लाइनों के बीच 50 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस तरह प्रति नाली 2500 से 2700 पौधे

0: रखे जा सकते हैं, जिसके लिए 800 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। खेत में यदि पौधे घने हों तो बुआई के 10 से 12 दिन के पश्चात कतारों में पौधों की छटाई कर कमजोर पौधों को निकाल लें। प्रारंभिक अवस्था में फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक होता है। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु बुआई के तुरंत बाद अंकुरण से पूर्व एट्राजिन 50% चूर्ण के 40 ग्राम या एलाक्लोर 50 ईसी के 80 मिलीलीटर का 15 से 16 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रतिनाली छिड़काव करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो जमाव के 15 से 20 दिन में गुड़ाई कर खरपतवार निकाल लेने चाहिए। जब पौधे घुटने तक ऊंचे हो जाएं, यूरिया की 1/3 मात्रा डालकर पौधे में मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। पौधों में नर मंजरी निकलते समय शेष बची 1/3 यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। किसान भाइयों, भरपूर उत्पादन के लिए फसल का कीट व बीमारियों से बचाव भी आवश्यक है। कटवर्म व तनाभेदक कीट मक्का की फसल को हानि पहुंचाते हैं। बुआई के समय फोरेट के प्रयोग से इन कीटों से बचाव किया जा सकता है। यदि कीट का प्रकोप हो तो जमाव के 10 दिन बाद क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी के 15 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रतिनाली छिड़काव करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 10 दिन बाद पुनः इसी रसायन के 18 मिलीलीटर को 14 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पत्तियों का झुलसा रोग पर्वतीय क्षेत्रों में मक्का की एक गंभीर समस्या है। रोग नियंत्रण हेतु लक्षण जो पत्तियों के अनियमित आकार के धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं के दिखते ही मैंकोजेब 75 WP के 40 से 45 ग्राम को 15 से 16 लीटर पानी में घोलकर 7 दिन के अंतराल में 2 छिड़काव करने चाहिए। स्वीटकॉर्न की सामान्य मक्का से के समान ही खेती की जाती है, लेकिन मक्का की दूसरी किस्मों के साथ स्वीटकॉर्न उगाने पर उन किस्मों के पराग कणों के प्रभाव से स्वीटकॉर्न के दाने के रंग व मिठास में प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है। अतः स्वीटकॉर्न की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसे सामान्य मक्का की किस्मों से या स्वीटकॉर्न की भिन्न जीन वाली किस्मों से कम 350 मीटर की पृथक्करण की दूरी पर उगाना चाहिए या किस्मों की पुष्पावस्था में 10 से 15 दिन का अंतर रखना चाहिए। इसी प्रकार बेबीकॉर्न के लिए भी पृथक्करण आवश्यक है। साथ ही पराग बनने से पूर्व नरमंजरी भी निकाल ली जाती है, जिसे डिटेसलिंग कहते हैं, ताकि निषेचन न हो पाए, क्योंकि निषेचन से बेबीकॉर्न की गुणवत्ता प्रभावित होती है। स्वीटकॉर्न हेतु फसल की कटाई दानों की दुधिया अवस्था में करनी चाहिए, जो पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः पुष्पावस्था के 22 से 24 दिन में होती है। इस समय भुट्टे में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसके बाद शर्करा स्टार्च में परिवर्तित होने लगती है, जिससे मिठास व गुणवत्ता कम होने लगती है। इसी प्रकार बेबीकॉर्न फसल की कटाई पौधों में सिल्क आने के तुरंत बाद की जाती है। बेबीकॉर्न तोड़ते समय उसकी ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए। पत्तियों को हटाने से बेबीकॉर्न जल्दी खराब हो जाते हैं। प्रतिदिन 1 या 1 दिन के अंतराल पर बेबीकॉर्न की तुड़ाई कर लेनी चाहिए। संकर किस्म से 3 से 4 तुड़ाई की जा सकती है। बेबीकॉर्न का छिलका तुड़ाई के बाद छायादार जगह पर उतार लेना चाहिए व ठंडे जगह पर इसका भंडारण करना चाहिए। बेबीकॉर्न को तुरंत मंडी या संसाधन इकाई में पहुंचा देना चाहिए। स्वीटकॉर्न के भुट्टे तोड़ने के तुरंत बाद छिलके सहित ही बाजार में भेज देने चाहिए। सामान्यतः एक नाली क्षेत्रफल से स्वीटकॉर्न के 1500 से 1600 भुट्टे तथा एक नाली क्षेत्रफल से ही 30 से 35 किलोग्राम छिलका रहित बेबीकॉर्न प्राप्त किया जा सकता है। स्वीटकॉर्न के भुट्टे से 8 रुपया न्यूनतम दर से लगभग 12,000 से 13,000 प्रति नाली रुपया कमाया जा सकता है। स्वीटकॉर्न का बीज महंगा होता है। यदि उत्पादन लागत 1500 रुपये के घटा भी लिया जाए तो भी 2 से 3 माह में 10,000 से 11,000 रुपया प्रति नाली का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। इसी प्रकार बेबीकॉर्न जो 100 से 150 रुपये आसानी से बिकता है से 4,000 से 5,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्रति नाली कमाया जा सकता है। किसान भाइयों, बेबीकॉर्न एवं स्वीटकॉर्न दोहरे लाभ की खेती है, क्योंकि पौधों व छिलकों का इस्तेमाल पशु चारे के रूप में किया जाता है। पौधों व छिलकों से 6 से 7 कुंतल प्रति नाली पौष्टिक हरा चारा भी प्राप्त हो जाता है।
1: स्वीटकॉर्न एवं बेबीकॉर्न मक्का की वैज्ञानिक खेती, अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर GS बिष्ट की ये जानकारी सुनी। इसी के साथ खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्किन कार्यक्रम और 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। प्रादेशिक समाचार उत्तराखंड के आप सुनेंगे सायं 6:30 पर और 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। सायंकालीन सभा में 5:05 पर हमारे कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैलस्वर में आज आप सुनेंगे मनोज कुमार का गाया कुमाऊनी लोकगीत। युवा साथी युवावाणी कार्यक्रम सुनते हैं 5:15 पर। इस कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत विषय होंगे जीवन में जोड़े योग और विश्व संगीत दिवस। साथ ही लेकर आएंगे आज का इतिहास और आपके साथ आप जानकारी साझा करेंगे साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम विषय पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए उत्तरायण कार्यक्रम के प्रसारण का समय रहेगा 5:45। इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुर्सी योग और अनुकूलन योग विषयों पर। साथ ही कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम बुरांश आप सुनेंगे और आपको वार्ता सुनाएंगे स्वस्थ आयु के लिए योग, और वार्ताकार होंगे लता अरोड़ा।

साइंस 7:15 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर उत्कर्ष कुमार की जानकारी वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण एवं देखभाल विषय। मिले जुले गीता और गजलों के कार्यक्रम सबरस का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 बजे। कुछ भक्ति रचनाएं लेकर आएंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम में साय 6:41 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चित्रा सिंह और हरिओम शरण की गाई भक्ति रचनाएं। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 2:45 पर। कार्यक्रम होगा एक ही फनकार। 3 बजे आप सुनते हैं सदाबहार फिल्मी गीत। फिल्म संगीत साय 7:40 पर और इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। 2:45 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम एक ही फनकार। हमारे आज के फनकार हैं फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू जिनकी आज 21 जून जन्म जयंती है। श्रोताओं रीमा लागू हिंदी और मराठी फिल्मों में सहायक अभिनेत्री और माँ की भूमिका में अपने सशक्त अभिनय के लिए जानी जाती थीं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनकी फिल्म मैंने प्यार किया के गीत से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, बोल असद भोपाली के हैं और धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।

दोस्तों रीमा लागू ने फिल्म उद्योग की कई बड़ी हिट फिल्मों में काम किया है, जैसे हम आपके हैं कौन, ये दिल लगी, दिलवाली, रंगीला, कुछ कुछ होता है और कल हो ना हो। अधिकतर फिल्मों में इन्होंने माँ का किरदार ही निभाया है। आइए सुनते हैं उन पर फिल्माया गया हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज़ों में। रविंद्र रावल के बोलों को धुनों में पिरोया है राम लक्ष्मण ने।

फिल्मों के अलावा रीमा लागुनी, श्रीमान श्रीमती तूतू मैमे जैसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है। रीमा ने जुनून के साथ अभिनय को जिया और आखिरी दम तक उसे दिल से लगा कर रखा। आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं उनकी फिल्म कुछ कुछ होता है का गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया जतिन ललित ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए कुछ कुछ होता है फिल्म के इसी गीत के साथ एक ही फनकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हमारी आज की फनकार थी फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू। अभी आप सुन रहे थे एक ही फनकार, आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अपराह्न की 3 बजे हैं, लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

दिल को जो लुभाते हैं हर पल भाते हैं, गीतों की खनक बोलों की धमक सदाबहार बनाते हैं। सदाबहार फिल्मी गीत पेश है माधुरी कैड़ा के साथ। सभी अजीज दोस्तों को मेरा स्नेहिल अभिवादन। दोस्तों, चाहे पुराने गीत संगीत हों या फिल्में, कभी अपनी ताजगी नहीं खोते, हर दौर में पसंदीदा होते हैं। फिल्मों में वो गहरे जज्बात, खूबसूरत गीत, मनमोहक दृश्य, प्यार की मासूमियत, सब कुछ एक दर्शक दिल में रखकर थिएटर से बाहर निकलता है।

दोस्तों, पुरानी फिल्मों की लव स्टोरीज सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनमें समाज, रिश्तों और भावनाओं की गहराई भी स्पष्ट तौर से दिखाई देती थी। बगावती इश्क, अनकही चाहत और रिश्तों के संघर्ष ने इन्हें खास बनाया। यही वजह है कि 70s के दशक की कई रोमांटिक फिल्में आज भी सच्चे प्यार की कहानियों की मिसाल मानी जाती हैं।

भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इंसान हर समय किसी न किसी मानसिक या शारीरिक तनाव से जूझ रहा है, योग हमें ठहराव सिखाता है। यह भारत की वह पावन सौगात है जिसने सदियों पहले दुनिया को यह संदेश दिया था कि सच्ची खुशी और शांति बाहर की सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपी हुई है। योग हमें बाहरी भटकाव से हटाकर खुद को पहचानना सिखाता है। योग किसी प्रकार का बंधन नहीं बल्कि स्वयं को जानने की असीम स्वतंत्रता है। जब हम योग के आत्मसात करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार होता है और जीवन के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। अतः वर्तमान समय में वैश्विक अशांति और व्यक्तिगत तनाव के बीच योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक आरोग्यता का सबसे मजबूत माध्यम बन चुका है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो योग का इतिहास किसी एक जमाने या कुछ सदियों पुराना नहीं है बल्कि यह हमारी मानव सभ्यता के उदय जितना ही प्राचीन है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि योग के सबसे पहले गुरु स्वयं भगवान शिव थे, जिन्हें हम आदि योगी भी कहते हैं। उन्होंने ही हजारों साल पहले हिमालय की पावन वादियों में क्रांति सरोवर के तट पर अपने प्रथम 7 शिष्यों यानी सप्त ऋषियों को योग का यह महान और पवित्र विज्ञान सिखाया था। इन ऋषियों ने इस दिव्य ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में फैलाया। इसके बाद योग के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया जब महर्षि पतंजलि का आगमन हुआ। महर्षि पतंजलि को योग का वास्तविक जनक या पिता कहा जाता है। उनसे पहले योग का ज्ञान केवल मौखिक था और अलग अलग जगहों पर बिखरा हुआ था। महर्षि पतंजलि ने अपनी महान बुद्धि से उस पूरे बिखरे हुए ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया और योग सूत्र नाम के एक महान ग्रंथ की रचना की। उन्होंने दुनिया को अष्टांग योग का रास्ता दिखाया जिसमें 8 चरण शामिल है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने चंचल मन को वश में कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि के इसी योगदान की वजह से आज पूरी दुनिया वैज्ञानिक तरीके से योग कर पा रही है। समय के समय 7 स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों ने योग की इस खुशबू को 7 समंदर पार तक बिखेर दिया। इस गौरवशाली इतिहास में एक और बड़ा बदलाव साल 2014 में आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पूरी दुनिया के सामने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम सब मिलकर एक दिन योग के नाम करें। भारत के इस विचार को दुनिया के 177 देशों ने अपना पूरा समर्थन दिया। इसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। तब से लेकर आज तक हर साल 21 जून को पूरी दुनिया योग के रंग में रंग जाती है। 21 जून का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह साल का सबसे लंबा दिन होता है और इस समय प्रकृति की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस समय सूर्य की किरणें हमारे शरीर में नई सकारात्मक ऊर्जा और प्राण शक्ति का संचार करती है। यही कारण है कि इस काल को प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक जागृति और लंबी आयु का प्रतीक माना गया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जैसे प्रकृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खिलती है, वैसे ही हम भी योग के जरिए अपने जीवन को पूरी ऊर्जा से भर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे मन में यह विचार आ सकता है कि आखिर योग में ऐसा क्या जादू है कि पूरे दुनिया इसकी दीवानी ही हो गई है। दरअसल दुनिया के इस आकर्षण की वजह से यह है कि योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का नाम नहीं है बल्कि यह हमारे तन और मन दोनों को निरोग रखने का एक पूरा विज्ञान है। जब हम इसके व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं तो इसमें कई सरल और असरदार आसन हैं, जिन्हें हर वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं ताड़ासन और त्रिकोणासन की। ये आसन हमारे शरीर के ढांचे को सीधा रखते हैं, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं और शरीर का संतुलन सुधारते हैं। बच्चों की लंबाई और एकाग्रता बढ़ाने के लिए ताड़ासन बहुत फायदेमंद है। इसके बाद बात करते हैं हम व्रजासन और भुजंगासन की। व्रजासन इकलौता एक आसन है जी

0: इसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यह हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। वही भुजंग आसन हमारे फेफड़ों को ताकत देता है और रीढ़ व पीठ के दर्द को दूर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार की। यह 12 अलग अलग गतियों का एक पूरा पैकेज है जो पूरे शरीर का व्यायाम एक साथ कर देता है और शरीर में रक्त संचार बढ़ाता है। आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की, जिसे हम सांसों का अनमोल विज्ञान कहते हैं। आज की तनाव भरी जिंदगी में प्राणायाम हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सांसों के इस विज्ञान में सबसे पहले नाम आता है कपालभाति का। यह प्राणायाम हमारे पेट की समस्याओं को दूर करता है, मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक लाता है। इसे करने से शरीर के भीतर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। इसके बाद सबसे सरल और जादुई प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसमें एक नासिक से सांस लेकर दूसरी से छोड़ी जाती है। यह हमारे दिमाग को शांत करता है, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हमारे गुस्से को कम करता है। इसी कड़ी में ब्राह्मणी प्राणायाम का भी बहुत महत्व है। इसमें आंखें और कान बंद करके भंवरे की तरह सुंदर गुंजन की जाती है। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती या जो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, उनके लिए ब्राह्मणी प्राणायाम एक अचूक इलाज है। जैसे जैसे हमारी यह दुनिया आगे बढ़ रही है, हमारी जिंदगी उतनी ही मशीनी, तकनीकी और डिजिटल होती जा रही है। आज हमारा ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बीतता है। शारीरिक मेहनत और गतिविधियाँ न्यूनतम हो गई है। इस सुस्त जीवन शैली के कारण आने वाले समय में मोटापा, रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ, कमजोर आंखें और बहुत कम उम्र में दिल की बीमारियाँ होना एक आम बात हो जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती होगी मानसिक बीमारियाँ। तकनीकी हमें पूरी दुनिया से तो जोड़ रही है, लेकिन हमारे भीतर एक गहरा अकेलापन भी पैदा कर रही है। आज युवाओं और बच्चों में छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अवसाद और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं इतनी बढ़ गई है कि आने वाले समय में यह एक मानसिक महामारी का रूप ले सकती है। जब इंसान का मन अशांत होता है तो उसका असर उसके पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। ऐसे धुंधले और तनाव भरे भविष्य में योग ही हमारे लिए उम्मीद की एकमात्र किरण है। आने वाले कल में योग कोई शौक या विकल्प नहीं होगा, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक रूप से जिंदा और स्वस्थ रहने की एक बुनियादी जरूरत बन जाएगा। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही योग की आदत डालनी होगी, ताकि वे पढ़ाई के दबाव और कंपटीशन के तनाव को आसानी से झेल सकें। दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के लिए भी योग बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ताकि वे काम के दबाव के बीच भी खुद को शांत रख सके। अगर हमें एक स्वस्थ, संवेदनशील और खुशहाल समाज बनाना है तो योग को हर घर तक पहुंचाना ही होगा। भविष्य के इस तेजी से बदलते सफर में वही समाज और देश मजबूत से टिक पाएगा जो अंदर से शांत और सेहतमंद होगा। क्योंकि असली तरक्की सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें या तकनीक बनाना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल इंसान का निर्माण करना है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, तब तक हम किसी भी बाहरी सफलता को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए आने वाले कल में योग ही हमारी असली ताकत बनने वाला है। आज इस विषय के आखिरी पड़ाव पर हमें यह गहराई से समझना होगा कि आज 21 जून को जब हम सब मिलकर यह पावन योग दिवस मना रहे हैं, तो इसे सिर्फ आज के एक दिन का उत्सव मत समझिएगा। इसे सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डालने तक सीमित मत रखिएगा। योग कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है, यह तो आत्मदर्शन का जरिया है। इसे अपने रोज की आदत बनाना होगा। जब हम रोज सुबह सिर्फ 20 से 30 मिनट खुद को देंगे, तो हम खुद महसूस करेंगे कि हमारा जीवन कितना सुंदर और शांत होता जा रहा है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की कोई भी दौलत या कामयाबी आपको खुशी नहीं दे सकती। और इस अनमोल धन को पाने की सबसे आसान चाबी योग है। योग हमें एक बेहतर, संवेदनशील और स्वस्थ इंसान बनाता है। इसलिए आइए आज इस विशेष दिन पर हम सब मिलकर यह पक्का संकल्प ले कि हम खुद भी योग अपनाएंगे और अपने परिवार व दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। अपनी सांसों को संभालिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार योग करते रहिए। याद रखिए, करो योग, रहो निरोग।
1: तो दगड़ियों वाला आप लोग ने स्वस्थ योग लीजिए योग विषय पर जो जानकारी सुनी, जानकारी देना चाहिए लता अरोड़ा। और दगड़ियों आप शुरू कर लो हमारा आज का कार्यक्रम फरमाइशी लोकगीत न पुराश। तो कार्यक्रम में शुरुआत में जो मेरे हाथ में चिट्ठी थी वो अरे तारखेट बटी और भेजने वाला हमारे श्रोता चंद रमेश सिंह, मुकेश, राजन, जीवन और कमलेश। यो सुनना चाहनी शंकर उप्रेती और माहेश्वरी बिस्टो गई हुई शो फरमाइशी लोकगीत।

और दगड़ जो अगली चिट्ठी हम उनके भेज रहा है कि बड़छिन बटी बिजनीवाल हमारे दगड़ी छन हेमंत पांडे रवीन पंत खजान मेहरा पंकज बिष्ट और रणखेत बटी काव्या पुष्पा कामिनी पंत और जया यू सुन चाहनी नंदलाल आर्य कई भी शो लोग की।

Bu da böyle valla bulunan dendi lala ayı gayı fiş yolu ki sura orab bakıda gu açık उत्तरायण कार्यक्रम संपन्न करना भूल मैं आप लोगों का फिर बातचीत करूँ एल मगा आ गया दियो नमस्कार।

अभी आप उत्तरायण कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है।
1: ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से
0: आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से, यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हें से सुनिए,
2: जानकार बनिए,
3: सतर्क रहिए।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योगेश धस्माना और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
5: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
4: आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जिलों में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून, चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर परिसर, औली, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, चमोली और सीमांत क्षेत्रों में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया है। श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
6: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। जो भूमि उत्तराखंड हमेशा से योग की साधना की तपस्या की भूमि रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे, यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियाँ हो गई, ऐसे समय सभी योग को अपनाएं।
4: इस अवसर पर मुख्यमंत्री सशस्त्र सेना के जवानों के साथ एक वृक्ष योग के नाम अभियान के आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार क्षेत्र में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने रतनपुर, ग्रास्टनगंज, मालवीय उद्यान और निम्बूचौड़ में आयोजित सामूहिक योग सत्रों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का सशक्त माध्यम है और स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और योग साधक मौजूद रहे।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
5: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
4: प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
5: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
4: नौसेना के अनुसार इन तीन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉ. धन सिंह रावत ने आज पौड़ी गढ़वाल जिले के पाबो और पैठाणी क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने संस्कृत विद्यालय ओढ़ली नांदा में लगभग 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित नव भवन का लोकार्पण, जबकि विकास खंड थलीसैण के ग्राम पल्ली में लगभग 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उपकेंद्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने और गांवों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चमोली जिले में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक और पहल की गई है। मंडल घाटी CLF के स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित हिलांस भोजनालय का आज राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्थानीय पहाड़ी उत्पादों को तीर्थयात्रियों और पर्यटकों तक पहुंचाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने जिले के प्रमुख यात्रा मार्गों पर ऐसे और सामुदायिक भोजनालय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामोत्थान परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिल रही है। हरिद्वार में सरकार की जन कल्याणकारी व विकास परक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न नगर निकायों और विकास खंडों में जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में लोगों को भारी भागीदारी देखने को मिली तथा प्राप्त अधिकांश शिकायतों और आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया गया। जिला प्रशासन के अनुसार आयोजित शिविरों में कुल 150 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 136 आवेदनों का तत्काल निस्तारण किया गया। वहीं 851 क्षेत्रवासियों ने शिविरों में पहुंचकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और लाभ उठाया। कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण

0: प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार BA LLB, BA LLB ऑनर्स व BBA LLB पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण 20 जून से शुरू हो गया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि आगामी 4 जुलाई निर्धारित है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों से समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई। वहीं गोविंद वल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में नए शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार करते हुए 3 नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इनमें BCA, MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और MTech कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल हैं। संस्थान के अनुसार इन पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने से प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं विशेषज्ञता आधारित तकनीकी अध्ययन के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। भक्ति संगीत कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह से ये भजन।

भक्ति संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का समापन करते हैं हरिओम शरण के गाए भजन से।

0: हरि ओम शरण की गाई इसी भक्ति वंदन के साथ अब आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:50 हुआ चाहते हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मैं अंजलि भट्ट। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र को नेतृत्व करी। बोली, योग मानसिक स्वास्थ्य बटेन शारीरिक स्वास्थ्य को मार्ग प्रशस्त कर दूचे। राज्य में पहाड़ बटेन मैदान तक हजारों लोगों सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन को संदेश देने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनौन की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता तय दोहरे। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना का 3 पोत राष्ट्र तय समर्पित करें। बोली, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बनौन का खातिर विशेष कदम उठाया जाना छिन। अब समाचार विस्तार बटेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रमुख कार्यक्रम को नेतृत्व करी। ये दौरान प्रधानमंत्री बोली कि योग मानसिक स्वास्थ्य बटेन शारीरिक स्वास्थ्य को मार्ग प्रशस्त कर दूचे।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पहाड़ बटिन मैदान तक सभी जिलों में उत्साह और उमंग का दगड़ी मनेगे। राजधानी देहरादून, चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारधाम और उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर, औली, ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, चमोली और सीमांत क्षेत्रों में हजारों लोग सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन को संदेश देने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिला का बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोखू दगड़ी योग अभ्यास केरी। उन योग तय दैनिक जीवन को हिस्सा बनौन और युवाओं से नशा से दूर रोन को आह्वान करी। श्री धामीन बोली कि राज्य सरकार उत्तराखंड तय योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी का रूप में विकसित कन का खातिर प्रतिबद्ध छे।
3: विश्व को संदेश दे, यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग है, मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई, ऐसे समय सभी योग को अपनाएं।
1: ये अवसर पर मुख्यमंत्री सशस्त्र सेना का जवानों का दगड़ी एक वृक्ष योग के नाम अभियान में आम को पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण को संदेश देने। वकी विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषणन कोटद्वार क्षेत्र में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों में भाग लेने। उन रतनपुर मालवीय उद्यान और नींबूचौड़ में आयोजित सामूहिक योग सत्रों में प्रतिभाग केरी। उन बोली कि योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलन को सशक्त माध्यम ची और स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाज का निर्माण में ये की महत्वपूर्ण भूमिका ची।
4: अरवली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना का 3 पोत INS दूनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्रतः समर्पित करी। ये अवसर पर उन बोली कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच का दगड़ी अग्नि बढ़नो ची। प्रधानमंत्री ने बोली कि केंद्र सरकार हाल का वर्षों में कई नीतिगत सुधार करें और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने का खातिर विशेष कदम उठाया जाना छिन।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने बोली कि रक्षा उत्पादन का दगड़ी रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुए। नौसेना का अनुसार यूं तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री को उपयोग किए गए और निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को योगदान रहे। बागेश्वर में 15 वर्ष बाद आयोजित बहुउद्देश्य विधिक साक्षरता चिकित्सीय एवं जन जागरूकता शिविर में जनसैलाब उमड़ी। पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर में आयोजित विशाल शिविर में जिला का विभिन्न विभागों एक ही छत का मोड़ी आम जनता तय सरकारी योजनाओं की जानकारी दियोण का दगड़ी उनकी समस्याओं को मौका पर समाधान केरी। राज्य सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार मणि ने बताया कि शिविर में जिला प्रशासन पुलिस वन स्वास्थ्य कृषि समाज कल्याण पशुपालन जिला पूर्ति ग्राम्य विकास सहित अनेक विभागों का स्टॉल लगे।
5: लगभग 15 वर्षों के बाद बागेश्वर जिले में पहला विधिक शिविर है मल्टीपर्पज कैंप और ये डॉन और नालसा की दो स्कीम है, डॉन और जागृति। डॉन जो है नशा विरोधी स्कीम है, नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए, और जागृति कानून के प्रचार प्रसार से संबंधित है और लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराने की से संबंधित है। इन दो स्कीम पे आधारित कैंप जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा राष्ट्रीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर लगाया गया।
1: शिविर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण रक्त जांच और दवा वितरण का दगड़ी दिव्यांगत प्रमाण पत्र बने तथा समाज कल्याण विभाग और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का सहयोग से दिव्यांग जनों तय व्हील चेयर वैसाखी श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण वितरित करें। कैबिनेट मंत्री अर श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावतन आज पौड़ी गढ़वाल जिला का पाबो अर पैठाणी क्षेत्र में सड़क स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं को शिलान्यास एवं लोकार्पण केरी। उन संस्कृत विद्यालय ओडली नांदा में लगभग 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित नव भवन को लोकार्पण करी, जबकि विकास खंड थैलीसैंड का ग्राम पल्ली में लगभग 55 लाख रुपए की लागत से बनिया स्वास्थ्य उपकेंद्र को भूमि पूजन एवं शिलान्यास करी। ये अवसर पर उन बोली कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं तय सुदृढ़ कर और गाँव तय विकास की मुख्य धारा बटिन जोड़ का खातिर निरंतर कार्य करनी चाहिए।

0: चमोली जिला में ग्रामीण महिलाओं ते स्वरोजगार बटन जोड़ की दिशा में एक और पहल की गई। मंडल घाटी CLF का स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित हिलांस भोजनालय को आज राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्टन शुभारंभ करी। ये अवसर पर सांसद महेंद्र भट्टन बोली कि स्थानीय पहाड़ी उत्पादों ते तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों तक पहुँचे कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ते मजबूत बनाए जा सकदो। उन जिला का प्रमुख यात्रा मार्गों पर इन और सामुदायिक भोजनालय स्थापित करने का निर्देश देने मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामोत्थान परियोजना का तहत स्वयं सहायता समूह तय स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराए जाना छिन जिससे उनकी आय बढ़ोन और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलनी छे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्र को नेतृत्व करी। बोली, योग मानसिक स्वास्थ्य बटेन शारीरिक स्वास्थ्य को मार्ग प्रशस्त कर दू छी। राज्य में पहाड़ बटेन मैदान तक हजारों लोग हुन सामूहिक योग अभ्यास कर स्वास्थ्य जीवन को संदेश देनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनोन की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता धरे। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना का 3 पोत राष्ट्रतः समर्पित करें। बोली, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ोन का खातिर विशेष कदम उठाया जाना छिन। ये दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को योग समाप्त हुए। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत।

संवेद स्वरों में ये भोजपुरी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन करते हैं इन्हीं स्वरों में गाए एक और भोजपुरी लोकगीत से।

0: संवेद स्वरों में गाए इसी भोजपुरी लोकगीत के साथ अब आज का प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। आज का विषय है वर्षा जल संग्रहण, संरचनाओं का निर्माण एवं देखभाल। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उत्कर्ष कुमार और संचालन किया है श्री देवेंद्र सिंह कार्की ने।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा।
2: कृषक भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कार्की कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है वर्षा जल संग्रहण, संरचनाओं का निर्माण एवं देखभाल। जल जीवन और कृषि दोनों का आधार है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, अनियमित वर्षा, भूजल स्तर में गिरावट तथा जलवायु परिवर्तन के कारण जल का जो संकट है वो गंभीर होता जा रहा है। तो ऐसे समय में वर्षा जल का जो संरक्षण है वो अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से वैज्ञानिक जो कि कृषि एवं जल प्रबंधन विशेषज्ञ है डॉक्टर उत्कर्ष कुमार। डॉक्टर साहब, कृषि समृद्धि कार्यक्रम में आपका स्वागत।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि आज के समय में वर्षा जल जो संग्रहण है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है?
3: देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है आज के दिनों में, काफी तेज बारिश और फिर सुखाड़, इससे जो देखा गया है कि जो मानसून में जो 3-4 महीने होते हैं
2: जी,
3: उसमें बारिश का लगभग 70-75% भाग शेयर करते हैं, लेकिन अगर उस बारिश के जल को अगर हम संरक्षित नहीं किए तो वो बहकर समुद्र में मिल जाते हैं और वो हमारे किसी काम के नहीं आते हैं
2: जी।
3: तो इसी के कारण आज देखा गया है कि, और इसके कारण अगर हम देखें कि अगर वर्षा जल संरक्षण नहीं करते हैं तो भूजल का स्तर काफी नीचे जा रहा है, और ऐसी परिस्थितियों में हम यदि अगर वर्षा के पानी को संग्रहित कर लेते हैं तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्षा जल संग्रहण आज के समय में एक महत्वपूर्ण औजार आ गई है जो हम जल संकट को कम कर सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो वर्षा जल संग्रहण है वो क्या है और इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है?
3: वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है कि वर्षा के पानी को जो बह जाती है उसको रोक कर किसी भी संरचना में एकत्रित करना और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके
2: जी।
3: इससे न केवल भू जल स्तर को हम ऊपर रख सकते हैं जो कि बहुत नीचे जा रही है
2: जी,
3: बल्कि वर्षा जल का संरक्षण करके खेती और पशुपालन और घरेलू उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
2: तो सर, किसानों के दृष्टिकोण से इसके प्रमुख जो लाभ हैं वो भी हम आपसे जानें।
3: आपने सही पूछा कि वर्षा जल संग्रहण करने के बाद इसका लाभ क्या होता है। तो इसके बहुत लाभ हैं। जैसे अगर हम किसानों के हित में बात करें तो जैसे सबसे पहले किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो सिंचाई होता है
2: जी।
3: तो सिंचाई के लिए यहाँ पे जल उपलब्ध हो जाता है। जब बारिश नहीं होती है तो ये जल जो संग्रहित होती है उसको हम सिंचाई के रूप में उपयोग लाते हैं
2: जी।
3: फसलों को सूखे से बचाया जा सकता है
2: जी।
3: इसके अलावा भूजल स्तर को सुधारा जा सकता है। अगर हम वर्षा जल का संरक्षण किए तो, अगर संरचना बनाए तो उससे न केवल वर्षा जल संग्रहित होता है बल्कि भूमि की अपरदन भी रुकती है
2: जी।
3: और इसके अलावा अगर हम बागवानी और बहुफसली खेती को भी बढ़ावा मिलता है और प्राकृतिक जल स्रोत का भी संरक्षण होता है
2: जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई है किस प्रकार की संरचना बना सकते हैं इसके लिए?
3: आपने ये जो बताया कि किस प्रकार की संरचना बनाई जाती है, ये भौगोलिक स्थिति पे निर्भर करती है। अगर हम बात करें तो जैसे खेत तालाब, इसको बोलते हैं हम, जो इंग्लिश की भाषा में बोलती है वो फार्म पोंड। इसका मतलब है, खेत तालाब का मतलब है कि अपने खेत में एक जो पोर्शन होता है उसको, एक जो भाग होता है खेत का भाग, उसमें एक टैंक बना लें और उस टैंक में वर्षा के पानी को संग्रहित करके संरक्षण करें, और जब फसलों को जरूरत हो और यदि बारिश नहीं हो, अगर सुखाड़ की स्थिति हो, तो उस खेत तालाब में जो पानी संग्रहित हो उसको हम इरिगेशन में, सिंचाई में यूज करके कर सकते हैं। दूसरा है चेक डैम। जैसा ये चेक डैम आप बहुत प्रचलित शब्द है, चेक डैम का मतलब है कि चेक मतलब रोकना और डैम मतलब छोटा। चेक डैम मतलब एक छोटा सा डैम जो पानी का जो स्पीड होता है, जो पानी की जो गति होती है उसको चेक करती है, रोकती है।
2: जी,
3: अगर
2: जी।
3: पानी की गति रुक

0: जाती है तो वो धीरे धीरे भूजल के स्तर को मिल जाती है और वो पानी बहकर नष्ट नहीं होती है और वो हमारे भूजल के स्तर को सुधारती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो पहाड़ों में कंटूर ट्रेंच, कंटूर बंड, चार्ज बीट, रिचार्ज कुआं, इस तरीके के संरचना किसान भाई बना सकते हैं और इससे न केवल हमारा भूजल सुधार होगा बल्कि हम एक अच्छे खासे पोर्शन जो हमारा वर्षा है उसको हम संरक्षित करके पानी की समस्या को कम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर, जैसे कि आपने पूरी लिस्ट हमारे काश्तकार बंधुओं को बताई कि कैसे वो संरचना इसके लिए बना सकते हैं, तो हम इसी क्रम में आपसे जानना चाहेंगे कि खेत तालाब के बारे में चाहेंगे कि जैसे आपने बता भी दिया थोड़ा सा कि खेत तालाब के बारे में, तो आपसे इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि जो इसका निर्माण है वो हमारे काश्तकार बंधु कैसे कर सकते हैं।
0: जी, जैसा हमने बताया कि ये बहुत प्रचलित संरचना है खेत तालाब, और ये एक जल भंडारण ढांचा है। जैसा हम आपको बताया कि खेत में बनाया जाता है, इसमें पानी को एकत्रित किया जाता है और ऐसे स्थान का चुनाव किया जाता है जहां वर्षा जल आसानी से पहुंच सके और भूमि का ढाल तालाब की ओर होनी चाहिए जिससे कि वर्षा के जल आसानी से उस संरचना में खेत तालाब में संग्रहित हो जाए। और इसका आकार का निर्धारण, मतलब कितना साइज हो, कितना उसका आकार हो, वो हमारे जैसे जितने क्षेत्र से पानी आ रहे हैं, अगर कम क्षेत्र से पानी आ रहा है उस तालाब को कितने क्षेत्र से पानी मिल रहा है उस पे निर्भर करेगा कि उसका आकार कितना होता है और आप जो आवश्यकता है उससे हम कितनी सिंचाई ले सकते हैं। तो दोनों का एक उसका जो स्टडी किया जाता है उसके बाद उसके आकार का निर्धारण होता है और सामान्यतः हम देखते हैं कि 15x15x3 मीटर अथवा स्थानीय, चूंकि ये जो डायमेंशन है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए चूंकि जोत यहाँ छोटे होते हैं तो अपने जोत के हिसाब से, जैसे हम बता दें अगर तो 4x6x1.5 मीटर का आप बना सकते हैं टैंक, और चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी सैंडी टाइप की होती है बालू, इससे क्या होता है कि उसमें जो हमारा पानी रुकता नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक HDPE जैसे रेतीली मिट्टी के लिए क्या करते हैं, हम एक प्लास्टिक लाइन यूज करते हैं जिससे वो पानी उसी में संग्रहित रहे
1: जी।
0: और इस तरह जब पानी संग्रहित रहता है तो उसका जीवन रक्षक सिंचाई जैसे सब्जी उत्पादन में हम लाकर और पशुपालन में भी उपयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसी में हम आपसे जानना चाहिए जो चेक डैम है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे और इसके साथ ही इसका जो महत्व है वो भी आप यदि बताना चाहेंगे।
0: हाँ, चेक डैम, आप जैसा मैंने पहले बताया कि ये भी एक महत्वपूर्ण संरचना है जो एक अवरोध बांध जैसा काम करता है। अवरोध बांध का मतलब है कि पानी को रोकना, चेक मतलब रोकना, अवरोध करना, और ये हम नालों या छोटी जलधाराओं पर बनाया जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि पहाड़ में आप अगर दूर से देखते होंगे तो एक जलधारा दिखती है
1: जी जी।
0: तो वो बहुत स्पीड होती है जब बारिश के दिनों में जाती है, अगर उस पानी को हम चेक डैम से नहीं रोके तो धीरे धीरे क्या होती है कि वो एक बड़ा जलधारा का रूप ले लेता है और बहुत ही उससे कट जाती है। और इस तरीके से चेक डैम न केवल पानी की गति कम करती है बल्कि मिट्टी का कटाव रोकता है और भूजल स्तर को भी सुधारता है और उसके अलावा सिंचाई के लिए भी ये जल उपलब्ध बढ़ाती है। ये चेक डैम एक तरीके से हम बोलें तो चाल खाल, जैसे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं तो चाल खाल जैसे है, तो हम चाल ऊपर ऊंचाई में बनाते हैं और खाल जो जहां दो पहाड़ मिलते हैं उस तरीके से एक वहां एक संरचना का निर्माण होता है जिससे पानी वहां पे रुकती है और वो छोटी छोटी स्रोतों को पुनर्जीवित करती है।
1: डॉक्टर साहब, इसी में हम आपसे जानना चाहेंगे जो रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कैसे कार्य करती है।
0: हाँ, रूफ टॉप आजकल के दिनों में सरकार भी इस पे बहुत जोर दे रही है कि चूंकि आप देख रहे होंगे कि मकान बनती जा रही है और चूंकि मकान बनने के कारण जो बारिश की पानी जो मिट्टी में जाती थी पहले मकान बनने से पहले वो क्या हो रही है कि अब कंक्रीट हो जा रहा है जिससे क्या होता है कि हम मकान तो बना रहे हैं लेकिन थोड़े से जगह हम चाहते हैं कि सारे जगह कंक्रीट बन जाए और कोई पेड़ पौधा नहीं साफ सुथरा रहे। तो हम यहाँ पे सरकार भी इस पे जोर दे रही है कि जब जो हमारे कम से कम जो पानी हमारे छतों पे आती है उसको आप कम से कम उसको आप हार्वेस्ट कर लें, उसको आप एक ऐसा संरचना है जिसमें पाइप के द्वारा जो आपके छत की पानी है उसको एक पाइप के द्वारा एक जगह एक टैंक गड्ढे खोद कर मिट्टी भूजल स्रोत में मिला दिया जाए भूजल स्रोत में ताकि वो पानी बहकर बर्बाद नहीं हो, वो पुनः अपने जल स्रोतों में धीरे धीरे चला जाए और वो जो जल धारा है छोटी छोटी जल धारा उसको रिचार्ज कर ले। और इसके जो महत्वपूर्ण

0: घटक हैं, उसके महत्वपूर्ण घटक हैं वो हैं पाइपलाइन, फिल्टर यूनिट, भंडारण टैंक, रिचार्ज पिट।
1: जी डॉक्टर साहब, वर्षा जल संग्रहण में भूजल जो पुनर्भरण का क्या महत्व आप जानते हैं?
0: हाँ, इसमें जो वर्षा जल संग्रहण में भूजल पुनर्भरण का मतलब ये है कि जो जैसे हम जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में तो भूजल पुनर्भरण की समस्या थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये मैदानी क्षेत्रों में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम भूजल जो स्तर है, जो मिट्टी अंदर पानी है उसको हम सुधारना है उसके स्तर को।
1: तो डॉक्टर, यदि हमारे जो काश्तकार बंधु है वो संरचना बनाते हैं जल संग्रहण के लिए, तो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए?
0: हाँ, सबसे पहले तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सही स्थान का चयन होना चाहिए। जैसे जल ग्रहण क्षेत्र का आकलन होना चाहिए कि कितना जल ग्रहण क्षेत्र है, जैसे आपने बताया कि हमारा उसी के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि जब अगर बारिश हम छोटे स्ट्रक्चर बना लिए और हमारा जल ग्रहण क्षमता ज्यादा है तो फिर वहाँ पे ओवरफ्लो की समस्या आती है। तो उसका सबसे पहले है कि मिट्टी का प्रकार जैसे जान लें कि कैसी मिट्टी है, उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसकी ताकत कितनी है, उतना पानी को वो रख पाएगा कि नहीं। अगर हम बना लिए और मिट्टी की क्षमता नहीं है तो टूट जाएगी, इस तरीके से मिट्टी का प्रकार देख लें। फिर उसके बाद वैज्ञानिक डिजाइन और स्थानीय विशेषज्ञों से संपर्क कर अपना वो सही डिजाइन का चुनाव करें, ताकि ये संरचना वर्षों तक प्रभावी रहेगी और बहुत लाभदायक होगा।
1: तो साहब, हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी जगह जो है वो जल संग्रहण के लिए संरचनाएं तो बन जाती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद वो बेकार पड़ी हुई दिखी जाती है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो भी आपसे जानना चाहेंगे।
0: जी, आपने सही बताया कि जैसे कोई भी संरचना होती है तो उसको हम अगर देखभाल नहीं करें तो एक दो कुछ समय तक सही चलती है और फिर उसके बाद वो, अगर हम इसको देखें अगर जल संरचनाओं के बारे में, तो यहाँ पे इसमें जैसे कि मिट्टी जम जाती है, जैसे गाद भर जाती है, उसको समय समय पे अगर सफाई नहीं किया जाए तो उसकी जल क्षमता होती है और कम जाती है। जैसे पाइप कहीं जाम हो जाता है तो उसकी देखभाल होनी चाहिए, और क्षतिग्रस्त है तो हर मानसून के सीजन से पहले एक बार उसकी देखभाल होनी चाहिए। जैसे खेत के मेड़ टूट जाते हैं तो उसको भी एक बार हमारे मानसून आने से पहले उसको मरम्मत कर लें, और इस तरीके से जल संग्रहण संरचनाओं को देखभाल करें तो इससे अत्यंत आवश्यक है और इससे बहुत लाभ होगा।
1: तो डॉक्टर, किसानों को नियमित रूप से क्या कार्य करने चाहिए?
0: नियमित रूप से यही है कि जो आप संरचना बनाएं उसको हर मॉनसून से पहले एक बार देख लें कि वो कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं उसमें रिसाव नहीं है, अगर है तो एक जल निकासी उसका साफ है, और जो मिट्टी आ गए हैं एक मॉनसून में उसको निकाल दें। ये अगर छोटी छोटी बातों को हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे तो, जैसे पॉली लाइन टैंक है तो देख लीजिए लीकेज तो नहीं है, ताकि आपका मॉनसून का पानी कहीं बह गया, और अगर उसके चारों तरफ मेड़ हैं कि नहीं उसका, तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो ये जल संरचनाएं काफ़ी वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंत में यदि कुछ संदेश आप हमारे खासकर बंधु को देना चाहें?
0: मेरा यही किसानों से अनुरोध है कि वे वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाने का संकल्प लें और खेत में अपना मेड़ को ठीक से रखें मानसून आने से पहले, जिससे न केवल संरक्षित होगी बल्कि मिट्टी भी संरक्षित रहेगी। यही है कि हमारे जो जल संरक्षण है वो केवल एक तकनीक नहीं है बल्कि भविष्य की सुरक्षा है, और अगर जल है तो कल है, यही हमारा संदेश रहेगा। और बाकी किसान भाई तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन एक मानसून आने से पहले वो सभी संरचना को एक बार फिर से देख लें, ताकि वो बहुत प्रभावी रहेगा।
1: कृषक बंधु, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने श्रोताओं आकाशवाणी अल्मोड़ा की ओर से डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कृषक बंधु, यदि आपको कृषि से संबंधित किसी भी अन्य समस्या है तो आप हमें संस्थान की निःशुल्क दूरभाष संख्या 1800-1800-2311 पर प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से साइम 5:30 तक संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि समृद्धि कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अल्मोड़ा, पिन संख्या 2636-1। धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि समृद्धि। विषय था वर्षा जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण एवं देखभाल। विशेषज्ञ थे डॉ

0: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटे कुमाऊनी मा प्रादेशिक समाचार नुकदगढ़ मी छू श्रुति शर्मा। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता मा 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक प्रमुख कार्यक्रमों मा राष्ट्रक नेतृत्व करो। उनन को कि योग मानसिक स्वास्थ्य है लिबेर, शारीरिक स्वास्थ्य मार्ग ले प्रशस्त करूं। राज्य मा पहाड़ है लिबेर भाबर तलक, हजारों लोगन सामूहिकों का अभ्यास कर स्वस्थ जीवनक संदेश दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश मा योग एवं वेलनेस राजधानी बनक दिशा मा राज्य सरकारक प्रतिबद्धता दोहरे। और प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता मा स्वदेशी रूप है बड़ी नौसेनाक 3 पोत राष्ट्र के समर्पित करी। उनन को घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ुनक लीजी विशेष कदम उठाई जनई। अब समाचार विस्तारन सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता मा 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक प्रमुख कार्यक्रमक नेतृत्व करो। यो बखत प्रधानमंत्री को कि योग मानसिक स्वास्थ्य है शारीरिक स्वास्थ्य मार्ग प्रशस्त करूं।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश मा पहाड़ है लिबेर भाबर तलक सभ्य जिलन मा उत्साह और अमंग दगड़ मनाई गो। राजधानी देहरादून, चारधाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम और ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर परिसर, औली, ऋषिकेश, मसूरी, चमोली और सीमांत क्षेत्रों मा हजारों लोगन सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवनक संदेश दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिलक बनबसा मा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम मा बहुत संख्या में आई लोगनक दगड़ योगाभ्यास करो। उनन योग के दैनिक जीवनक हिस्सा बनू और युवाओं धे नस है दूर रूणक ले आह्वान करो। श्री धामील को कि राज्य सरकार उत्तराखंड के योग और वेलनेसक वैश्विक राजधानी के रूप मा विकसित करनक ले जी प्रतिबद्ध छु।
3: विश्व को संदेश थे, यहाँ हमने योग घर घर तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग है, मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियां हो गई, ऐसे समय सभी योग को अपनाएं।
1: यह अवसर पर मुख्यमंत्री सशस्त्र सेनाओं जवानों दगड़ एक वृक्ष योग के नाम अभियान मा आमक बोट लगाए बेर पर्यावरण संरक्षणक संदेश दे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषणल कोटद्वार क्षेत्र में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों में भाग ले। उनन रतनपुर, ग्रास्टनगंज, मालवीय उद्यान और नींबू चौड़ में आयोजित सामूहिक योग सत्रों में प्रतिभाग करो। उनन को कि योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलित करणक सशक्त माध्यम छू, स्वस्थ और आत्मनिर्भर।

0: समाजक निर्माण मेले एक भूमिका महत्वपूर्ण छु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना तीन पोत INS दूनागिरी संशोधक और अग्रे के राष्ट्र को समर्पित करो। ये अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोचक दगर अघिल बढ़नो। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हाल वर्षन में कई नीतिगत सुधार करी छन और घरेलू निर्माण क्षमता के बढ़ोनक लीजिए विशेष कदम उठाई छन। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादनक दगर दगर रक्षा निर्यात माले अभूतपूर्व वृद्धि भई छु।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: नौसेना अनुसार यो तीनों पोतों में 75% है ज्यादा स्वदेशी सामान का उपयोग करीगो। निर्माण माले 200 है ज्यादा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का योगदान रहो। कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावतल आज पौड़ी गढ़वाल जिले पाबो और पैठाणी क्षेत्र में सड़क स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करो। उन्हें संस्कृत विद्यालय ओंडली नांदा में लगभग 34 लाख रुपए लागत है निर्मित नई भवनक लोकार्पण करो। वहीं दूसर तरफ विकास खंड थलीसैण ग्राम पल्ली में लगभग 55,50,000 रुपए लागतक बरनी वाल स्वास्थ्य उपकेंद्र भूमि पूजन व शिलान्यास ले करो। यह अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़करण और गांव के विकासक लीजिए लगातार काम करने।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: चमोली जिले में ग्रामीण श्रेणियन के रोजगार स्वरोजगार है जोड़ने की दिशा में एक पहल करी गई। मंडल घाटी CLF स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित हिलांस भोजनालय आज राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्टल शुभारंभ करो। यह अवसर पर सांसद महेंद्र भट्टल को कि स्थानीय पहाड़ी उत्पादों के तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों तक पूजे बेर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत बढ़ाई जा सकूं। उन्हें जिलक प्रमुख यात्रा बाटन मां यस और सामुदायिक भोजनालय बनक निर्देश दी। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी बताए कि ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगारक अवसर दी जनी जैक वजल उनरी आय बढ़ून और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलने। बक्सर में 15 साल बाद आयोजित बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता चिकित्सीय एवं जागरूकता शिविर में जन सैलाब उमड़ो। पंडित बद्रीदत्त पांडे परिसर में आयोजित विशाल शिविर में जिलक विभिन्न विभागों एक के छतकताओं में आबेर आम जनता के सरकारी योजनाओं की जानकारी देनक दगर दगर उनर समस्याओं के मौक पर समाधान ले करो। राज्य सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण कुमार मणिल बताए कि शिविर में जिला प्रशासन पुलिस वन स्वास्थ्य शिक्षा कृषि समाज कल्याण पशुपालन जिला पूर्ति ग्राम विकासक दगड़ कई अन्य विभागों के स्टाल ले लगाई गई।
3: लगभग 15 वर्षों के बाद बागेश्वर जिले में ये पहला विधिक शिविर है मल्टीपर्पज कैंप और ये डॉन और नालसा की दो स्कीम है, डॉन और जागृति। डॉन जो है नशा विरोधी स्कीम है, नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए, और जागृति कानून के प्रचार प्रसार से संबंधित है और लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मुहैया कराने की से संबंधित है। इन दो स्कीम पे आधारित कैंप जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर द्वारा राष्ट्रीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर लगाया गया।
0: शिविर में स्वास्थ्य विभाग ओर बटी निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण परीक्षण रक्त जांच एवं दवा वितरण दगड़े ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र ले बांटी गई। समाज कल्याण विभाग और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सहयोगल दिव्यांग जनों के व्हील चेयर बैसाखी श्रवण यंत्र और दूर दूहर सहायक उपकरण ले बांटी गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालयों शैक्षणिक सत्र 2026-27 लीजी विधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेशक लीजी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर हेली। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार BA LLB ऑनर्स व BBA LLB पाठ्यक्रमों में प्रवेशक

0: ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ 20 ਜੂਨ ਬਟਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੋ। ਪੰਜੀਕਰਨਕ ਅੰਤਿਮ ਤਿਥੀ ਊਣ ਵੱਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਛੂ। ਅਭਿਅਰਥੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਯਕ ਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲਕ ਮਾਧਿਅਮਕ ਲੈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਇੱਛੁਕ ਅਭਿਅਰਥੀਓ ਦੇ ਬਖਤਮਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨਕ ਲੈ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਗਈ ਛੂ। वही गोविंद वल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में नई शैक्षणिक सत्र में शैक्षणिक कार्यक्रमों विस्तार करते हुए 3 नई पाठ्यक्रमों के लिए शुरुआत करी गई। यमे BCA, MTech स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और MTech कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शामिल छन। संस्थानक अनुसार यो पाठ्यक्रमों शुरू होनक वजह प्रदेशक विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और विशेषज्ञता आधारित तकनीकी अध्ययन लीजिए राज्य है भय जाना जरूरत नहीं पड़ी। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में 12 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसक प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्रक नेतृत्व करो। उन्होंने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य है शारीरिक स्वास्थ्य मार्ग प्रशस्त करूं। राज्य में पहाड़ है लिबेर भावर तलक हजारों लोगन सामूहिक योगाभ्यास कर बेर स्वस्थ जीवनक संदेश दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में योग एवं वेलनेस वैश्विक राजधानी बनक दिशा में राज्य सरकारक प्रतिबद्धता के दोहरा। और प्रधानमंत्री कोलकाता में स्वदेशी रूप में निर्मित नौसेना 3 पोत राष्ट्र के समर्पित करी। उन्हें को घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने लीजिए विशेष कदम उठाई जाने यह कदगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक यही समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
2: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

ये थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल और बेबी अपर्णा। फिल्म का नाम था मैं ऐसा ही हूँ। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है हम साथ साथ हैं फिल्म से। गीत को आवाज़ें दी हैं हरिहरन, घनश्याम और संतोष ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का समापन करते हैं। सुरेश वाडकर, सुषमा श्रेष्ठ, अलका याग्निक और साथियों के गाए घर द्वार फिल्म के इस गीत से।

0: सुरेश भाटकर, सुषमा श्रेष्ठ, अलका याग्निक और साथियों के गाए घर द्वार फिल्म के संगीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग जनपद अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा मल्ला महल अल्मोड़ा में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट।
1: आज दिनांक 21 जून सन 2026 को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा मल्ला महल अल्मोड़ा में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार योग दिवस स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी विभागों के कर्मचारियों, नागरिकों और योग साधकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

0: सर्वप्रथम अपने स्वागत उद्बोधन के साथ आप हैं डॉक्टर मोहम्मद साहिद, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा।
1: योग एक चेतना है, योग एक जीवन जीने की कला है, शरीर और चेतना का मिलन का प्रतीक है। 21 जून जो हम ये मना रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से ये संकल्प लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को घोषित किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 59वें सत्र में उद्घाटन समारोह में इसको संबोधित किया था और 175 देशों ने इसका समर्थन किया था, तब ये प्रस्ताव आया था। इस बार हम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग को मना रहे हैं। इसका थीम, इसका उद्देश्य है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, वृद्धावस्था के लिए योग। हम वृद्ध तो होंगे, हमारा लाइफ स्पान तो बढ़ेगा लेकिन हेल्दी लाइफ स्पान बढ़ेगा। हम वृद्ध तो होंगे लेकिन गतिशील, स्वतंत्र, स्थिर फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली, इस तरीके से हम अपने लाइफ स्पान को बढ़ाएंगे। पुष्प को

0: इस तरीके से एक संदेश देने के लिए इस बार की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखा है, जिसको हम सब विश्व स्तर पर इस बार 190 देश इसको मना रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि योग हमारे देश से मूल पद्धति है, यहाँ से इसकी ही उत्पत्ति हुई है, संस्कृत वर्ण है। तो हम इस समय विश्वव्यापी हैं, ग्लोबली एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमारे और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे देश में इस समय जो मुख्य बनाया जा रहा है वो कलकत्ता में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे, उनके नेतृत्व में होगा। हमारे प्रदेश का जो 21 जून का है वो बनबसा में किया जा रहा है, और सेंटर से जो किया जा रहा है वो हरिद्वार में किया जा रहा है। और अल्मोड़ा जिले में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं इस पावन भूमि पर, इस धरती पर और इस ऐतिहासिक स्थान पर हम यहाँ पर योग शुरू कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं योग कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ।
1: कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को योग के विभिन्न आसन सिखाते हुए योग साधना करवाई गई।
2: सभी योग साधक अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब आरंभ करते हैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज का प्रोटोकॉल। सामने मंच में हमारे 4 योग अनुदेशक बैठे हैं, आप सभी उन्हें देखकर कर सकते हैं। सर्वप्रथम सुखासन में बैठे हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ कंधा कमर एक सीध में, आंखें सहसा से बंद करें, दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय स्थान के पास रखें। इस दिव्य भूमि के दिव्य प्रांगण में प्राणवायु को अनुभव करते हुए प्रार्थना की पंक्तियों को हमारे सांसद दोहराएंगे।

0: अर्थात हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बनें। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसी भाव के साथ अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें और इन भावों को नेत्रों के माध्यम से हृदयंगम करें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सभी लोग दंडासन में आ जाएं, अपने हाथों को बाईं ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाएं। अब आरंभ करते हैं सूक्ष्म व्यायाम अर्थात चालन की क्रियाएं। सबसे पहले सभी लोग खड़े होने की स्थिति में आएंगे। इसके लिए अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को सामने करें, बाएं पैर को आगे रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं। हाथ और पैरों को समानांतर रखें, अपने पैरों में थोड़ा सा अंतर बनाएं, दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखें, पीठ को सीधा रखें। सबसे पहले करते हैं ग्रीवा संचालन। यदि किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की, माइग्रेन की कोई भी परेशानी है तो कृपया ध्यान दें और गर्दनों को अनावश्यक रूप से ना हिलाएं। सबसे पहले है श्वास प्रश्वास के साथ गर्दन को आगे और पीछे घुमाना है। लंबा गहरा श्वास खींचें और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाएं, जिससे आपकी ठुड्डी आपके कंठकूप को स्पर्श करे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएं।
1: कार्यक्रम में हमने कुछ प्रतिभागी कर्मचारियों और योग प्रशिक्षकों से भी बातचीत की।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शहाब हुसैन है। मैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नगर खान अल्मोड़ा में एज अ चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हूँ।
1: आज योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
2: देखिए, योग जो है केवल एक स्वस्थ शरीर के लिए नहीं, स्वस्थ मन स्वस्थ आत्मा के लिए एक जोड़ का काम करता है। और जो हमारा आज का 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो उसकी थीम ही योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि स्वस्थ आयु के लिए योग, ये थीम रखी गई है। तो योग जो है न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न ना हो, अगर आप निरंतर योग करते रहें तो उससे भी आपको पूर्ण रूप से हिफाजत करता है, सुरक्षित रखता है।
1: आज यहाँ पर मल्ला महल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो कौन कौन से लोग प्रतिभाग कर रहे हैं यहाँ पर?
2: कि यहाँ पर सर्वप्रथम तो हमारे अल्मोड़े जनपद के सम्मानित व्यक्तिगण, दूसरा जितने भी पदाधिकारी हैं जो शासन प्रशासन के, माननीय सांसद टमटा जी, सभी ने प्रतिभाग किया है और सभी ने पूर्ण मनोयोग से योग का कार्यक्रम को संपन्न।
1: क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को कि वो किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं योग के माध्यम से?

0: योग जैसे कि मैंने कहा कि ना केवल शरीर बल्कि आत्मा और मन का संयोग है, तो अगर योग को केवल एक दिन का कार्यक्रम ना बना के हम पूरे 365 दिन का कार्यक्रम, जैसे कि हमारे आयुष मंत्रालय का ये मुहिम भी चल रही है कि केवल एक दिन का योग कार्यक्रम ना रहे बल्कि 365 दिन हम इसको अपने जीवन शैली में निरंतर रूप से हम इसको समाहित करें, तो इससे हमें निश्चित रूप से बहुत ही स्वस्थ लाभ होगा।
1: विभाग द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अन्य दिनों में?
0: अन्य दिनों में जैसे कि अभी योग सत्र, ये आज का जो मेन सत्र था, इससे पहले भी जो है प्रिकर्सन में काम कार्यक्रम किए गए हैं, अनेक स्थानों पर किए गए हैं। हाबिल्ड एक संस्था है, उसके साथ में भी आयुष मंत्रालय का मतलब सामंजस्य रहा है, जिससे कि उन्होंने वर्ल्ड ऑनलाइन सबसे अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

0: कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अन्य दिनों में?
1: अन्य दिनों में जैसे कि अभी योग सत्र, ये आज का जो मेन सत्र था, इससे पहले भी जो है प्रिकर्सन में काम कार्यक्रम किए गए हैं, अनेक स्थानों पर किए गए हैं। हार्बिल्ड एक संस्था है, उसके साथ में भी आयुष मंत्रालय का मतलब सामंजस्य रहा है, जिससे कि उन्होंने वर्ल्ड ऑनलाइन सबसे अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे कि जनता में योग के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: धन्यवाद आपका। धन्यवाद।
0: आपका नाम?
2: मैं ज्योति रैकवाल, योग अनुदेशक आयुष्मान आरोग्य मंदिर सैल में हूँ। जैसे कि इस वर्ष की थीम है कि योगा फॉर हेल्थी एजिंग, मतलब हम धीरे धीरे, हमारी एज तो बढ़ रही है लेकिन हम स्वस्थ रहे, इसलिए इस वर्ष की थीम ये रखी गई है कि वृद्धावस्था के साथ हम योग को कैसे जोड़े, हमारी एज तो बढ़े लेकिन हम स्वस्थ किस तरीके से रहे। तो इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप योगा करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखिए और इस वर्ष को योग के लिए समर्पित करें। जैसे कि आप सभी को पता है, धीरे धीरे एज तो सबकी बढ़ ही रही है, बढ़ती एज के साथ धीरे धीरे सभी को हर एक परेशानियां भी बढ़ रही है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए हम छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम, योगासन डेली नियमित रूप से करें, जिससे कि आप स्वस्थ रहे और स्वस्थ लाइफ जिए। इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने जीवन में योग को अपनाएं। धन्यवाद।
3: अपने विचारों के साथ आप हैं महापौर नगर निगम अल्मोड़ा श्री अजय वर्मा।
4: भारत माता की, भारत माता की। आज मल्ला महल माँ भगवती के इस पावन धरती में मैं सभी योग भक्तों का हृदय की गहराई से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे शुभ अवसर पर, जो कि आज हमारा देश नहीं पूरा विश्व इस आयोजन को मना रहा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज ऐसे शुभ अवसर पर आप सभी लोगों का सहयोग रहा और ऐसे शुभ अवसर पर सभी हमारे नए जो प्रशिक्षण यहाँ पर को ले रहे हैं, उनके अवसर से हम लोगों को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ अपनी पहल व्यक्ति अपने जीवन की दिनचर्या प्रारंभ करता है। मेरा सभी योग प्रशिक्षण यहाँ पर को जितने लोगों ने भी प्रतिभाग किया, मैं सभी का हृदय की गहराई से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और आज के शुभ अवसर पर मैं फिर से अपने सभी देवतुल्य लोगों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और सभी जो आज पहली बार मल्ला महल में यहां पर को ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिस आयोजक मंडल ने यहां पर को ये कार्यक्रम किया, मैं उनको भी बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।
3: अपने अतिथि उद्बोधन के साथ आप हैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय टमटा।
5: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आज के शुभ अवसर पर ये बड़ा सौभाग्य है कि कुमाऊं की राजधानी के ऐतिहासिक स्थान मल्ला महल में योग का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि देश दुनिया को योग पद्धति के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, लंबी आयु तक जीना, ये भारतवर्ष की जीवन जीने की परंपरा है और ये वर्षों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से भारत के अंदर इस परंपरा का निर्वहन करके लंबी आयु तक निरोगी रहकर जीवन जीना, दुनिया के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज 180 से ज्यादा देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकारता करके आज दुनिया ने माना है। भारत जिन मान बिंदुओं में रहा है, चाहे विश्वगुरु रहा है, संपन्न रहा है, और इसलिए योग उसका भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं कि पहले हमारा जन्म भारत में हुआ है और उससे भी ज्यादा हम लोग बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि हमारा जन्म कुमाऊं की सुंदर वादियों में हुआ है। अगर आप इसी योग को कर रहे होते कहीं मैदान में, तो अभी तक आपकी शरीर की क्षमता कमजोर हो जाए। और इसलिए कि इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले मैं मनुष्य बना हूँ और दूसरा कि मनुष्य बनने के बाद भी मैं भारत माता के अंदर मेरा जन्म हुआ है, और तीसरा कि भारत माता में भी मेरा इस ऐतिहासिक देवभूमि में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ से माँ गंगा का प्रवाह जीवन जीने के लिए दुनिया को जाती नदी, यहाँ के पर्यावरण के कारण से हम सबको जीवन मिलता है, जिसके कारण से हमको ऑक्सीजन मिलती है, हम स्वस्थ और सुंदर शुद्ध हवा लेते हैं। क्योंकि मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो मैं तरस जाता हूँ कि ऐसे वातावरण में मैं कब जाऊँ, और जब मैं आता हूँ तो मैं तुरंत दुगनी ताकत के साथ मैं दिल्ली या बाहर जा करके अपने कार्य को अंजाम देता हूँ। इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं पिछले दिनों हमारे देश में साइप्रस के प्रेसिडेंट

0: आए थे और उसमें मेरा मिनिस्टर ऑफ प्रोटोकॉल मुझे दिया था, तो 3 दिन उनको रिसीव से लेकर उनके विदाई तक का कार्यक्रम मेरे पास था। सौभाग्य से महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ भी उनका भोजन रात का डिनर कराया, दिन का लंच हम एक ही टेबल में बैठे थे माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, और मुझे भी उसकी टेबल में रहने का अवसर मिला। आपको आश्चर्य होगा, अभी आप जो सीटी बजा के कौन सा योग करा रहे थे, शीतला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस शीतला योग को मेरे टाइम पर ही मेरे सामने ही बोला कि इस योग के माध्यम से क्या फायदा होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो साइप्रस राष्ट्रपति को मेरे सामने बताया कि ये योग करो, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनको योग करके दिखाया लंच के टाइम में। ये मेरी आंखों के सामने का है और ये मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि आज मुझे वो पल याद आ रहा था जब वो योग करा रहे थे। मैंने कहा ये योग को तो प्रधानमंत्री जी साइप्रस के प्रेसिडेंट को करा रहे थे, भाई बहनों ये बड़ी बात। मैं आज के कार्यक्रम में आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, योग करें, निरोगी रहें।
1: कार्यक्रम के समापन में सभी ने नियमित योग साधना करने का संकल्प लिया।
2: मैं अपने मन को सदा संतुलित रखूंगी क्योंकि इसी में मेरा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं और कुटुंब के प्रति तथा अपने सभी कार्य समाज व विश्व के प्रति सकारात्मक रूप से निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसी के साथ साथ समाज व विश्व के प्रति शांति, आनंद और संपूर्ण स्वास्थ्य के प्रचार के लिए भी प्रतिबद्ध हूँ। संकल्प के बाद अब प्रार्थना करते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास रखें, नेत्र सहजता से बंद ही रखें। दोनों हाथों को जोड़कर अब प्रार्थना करते हैं कि सभी का उत्तम स्वास्थ्य हो, सभी दीर्घायु हो और सभी का भविष्य उज्ज्वल हो।

0: अभी नेत्रों को नहीं खोलेंगे, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, ध्यान की इस ऊर्जा को नेत्रों के माध्यम से हृदयंगम करें, दोनों हथेलियों को नेत्रों में रखें, दोनों हथेलियों के बीच में नेत्र खोलें, धीरे धीरे हाथों को पूरे चेहरे में मलें और शरीर के जिस स्थान में भी कोई परेशानी हो वहां पर अपने हाथों को मलें, दोनों पैरों को खोलकर दंडासन की स्थिति में आएं, पैरों में अंतर बनाएं, दोनों हाथों को पीछे रखें, अपने पैरों को फैला लें, हिला लें, विश्राम की स्थिति में आएं और आज का योग का प्रोटोकॉल अब यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।
1: इस अवसर पर सर्वश्री जिलाधिकारी अल्मोड़ा अंशुल सिंह, कैलाश शर्मा, कुंदन लटवाल, गोविंद पिलखवाल, गंगा बिष्ट सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसी के साथ संपन्न होती है आज दिनांक 21 जून सन 2026 को आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग अल्मोड़ा उत्तराखंड द्वारा मल्ला महल अल्मोड़ा में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन पर आधारित कार्यक्रम की ये रेडियो रिपोर्ट। वाचन संकलन एवं संपादन कृष्ण सिंह लटवाल, प्रस्तुति संजय जोशी।
2: ये रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित की गई और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरस। सबरस प्रोग्राम की पहली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई हुई।

तलत अजीज की गई इसी गजल के साथ अब आज का सबरस कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। भारत ने त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला अपने नाम की। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फिर गरजा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना सऊदी अरब से होगा। अन्य मुकाबलों में जर्मनी और जापान ने जीत दर्ज की। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला टीम को बधाई दी। कुश्ती नाद लाबिम ग्रांपी बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने कुल 12 पदक जीते और अभय वेलावन ने लगातार तीसरी बार एशियन डबल स्क्वैश खिताब पर कब्जा किया।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं योग दिवस से, जहां कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रमुख कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योग किया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुँचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्रों में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: और अब रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 6 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। ऋचा घोष 15 रन बनाकर

0: कर क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ अरुंधति रेड्डी दे रही हैं। भारत ने इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। प्रतियोगिता में भारत ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से, वहीं दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया था। और अब रुख कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच हुए त्रिकोणीय श्रृंखला पर। दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का फाइनल मुकाबला भारत ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 66 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित ओवर में 377 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में धमाकेदार 94 रन की पारी खेली। कप्तान तिलक वर्मा ने 67 रन बनाए। वैभव ने अपना अर्धशतक सिर्फ 11 गेंदों में पूरा किया। इस तूफानी पारी के साथ ही वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वैभव ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
1: जब मैच बड़े होते हैं तब वैभव खड़े होते हैं और ये लंबा मारा है एक और छक्का, और इसी छक्के के साथ केवल 11 गेंदों में सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक पूरा किया है वैभव सूर्यवंशी ने।
0: अनुकूल रॉय ने भी 39 रन की अहम पारी खेली। 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 48वें ओवर में 311 रन पर सिमट गई। यश ठाकुर और विपराज निगम ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और उधर बीसीसीआई ने आज इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय सीनियर टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आज इंग्लैंड के साथ होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचों के श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई को इंग्लैंड के एजबेस्टन में खेला जाएगा। कर लेते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच के मुकाबले में आज स्पेन का सामना सऊदी अरब से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। वहीं ग्रुप जी के मैच में बेल्जियम का सामना ईरान से होगा। अन्य मुकाबलों में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को और नीदरलैंड्स ने स्वीडन को हराया। सुनते हैं इन मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
2: फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ के मुकाबले में जापान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ट्यूनिशिया को एकतरफा मुकाबले में 4-0 से हराया। विश्व कप के इतिहास में ये पहला मौका है जब जापान ने एक मैच में 4 गोल किए। इस हार के साथ ही ट्यूनिशिया का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है। इस जीत के साथ ही जापान ने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपनी दावेदारी और पुख्ता कर ली है। जापान की ये जीत वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी AFC टीम की सबसे बड़ी जीत भी है। जापान की बड़ी जीत की शुरुआत अयासे उएदा ने की। उन्होंने ऊंची छलांग लगाते हुए ट्यूनिशिया के डिफेंडरों के ऊपर से बेहतरीन हेडर लगाया और गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाते हुए जापान को 1-0 की बढ़त दिलाई। दाइची कामदा ने खिलाड़ियों को छकाते हुए जापान की बढ़त को 2 गुना कर दिया। कामदा का 4th मिनट में किया गया गोल फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी जापानी खिलाड़ी द्वारा किया गया सबसे तेज गोल है। दूसरे हाफ के 69वें मिनट में जुनिया इतो ने शानदार स्लाइड लगाते हुए जापान की टीम की ओर से 3rd गोल किया। मैच के 83वें मिनट में उएदा ने अपना 2rd और मैच का 4th गोल करते हुए जापान की आसान जीत पर मोहर लगा दी। ग्रुप ई के मुकाबले में जर्मनी ने शानदार वापसी करते हुए कोटे डी आइवर को 2-1 से हराया। टीम की इस जीत के हीरो डेनिस उंदाव रहे जिन्होंने 2 गोल दागे। इस रोमांचक जीत के साथ ही जर्मनी ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये मुकाबला शुरुआत से लेकर अंत तक बेहद रोमांचक रहा। मुकाबले में कोटे डी आइवर ने गोल करके 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर डेनिस उंदाव ने 2 गोल करते हुए मैच का पासा पलट दिया। 8 मिनट के भीतर उंदाव ने पहला गोल दागते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। मैच जब ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था तभी स्टॉपेज टाइम में जर्मनी के लिए उंदाव ने निर्णायक गोल किया। उंदाव के लिए ये प्रदर्शन खास रहा क्योंकि जर्मनी के लिए उनके पिछले 8 मैचों में ये 9वां गोल रहा।
3: Dismantling Curaçao, they dug in against Cote d'Ivoire.
2: ग्रुप एफ के मुकाबले में नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वीडन को 5-1 से पराजित किया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स ने ग्रुप में पहला स्थान भी

0: हासिल कर लिया है। नीदरलैंड्स ने नॉकआउट स्टेज में पहुंचने की अपने दावेदारी और मजबूत कर ली है। नीदरलैंड्स की ओर से इस मुकाबले में ब्रायन ब्रॉबी और कोडी गैकपो दोनों ने दो दो गोल किए। मैच की शुरुआत से ही नीदरलैंड्स आक्रामक अंदाज में खेलता नजर आया। टीम ने 5वें मिनट में ही पहला गोल कर बढ़त बना ली। इसके बाद 17वें मिनट में ब्रॉबी ने नीदरलैंड्स की बढ़त को दोगुना कर दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही नीदरलैंड्स ने मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी। 47वें मिनट में कोडी गैकपो ने शानदार फिनिश के साथ टीम के लिए तीसरा गोल दागा। इसके सिर्फ 7 मिनट बाद उन्होंने अपना दूसरा गोल दागते हुए नीदरलैंड्स की लीड को 4-0 कर दिया। स्वीडन के लिए मैच का पहला गोल 59वें मिनट में आया। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए एंथनी एलंगा ने शानदार गोल करते हुए अंतर को कम करने का प्रयास किया। 89वें मिनट में क्राइसेंसियो समरविले ने शानदार गोल कर टीम की जीत पर मोहर लगा दी। 5-1 की धमाकेदार जीत के साथ ही नीदरलैंड्स के अब 2 मुकाबलों में 4 पॉइंट्स हो गए हैं। वहीं स्वीडन की टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात हॉकी की। भारत ने महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। सुनते हैं करिश्मा की एक रिपोर्ट।
2: Nations Cup champions for 2026. They have beaten New Zealand 2-0. Jubilation in the dugout for India and on field and among their fans in the crowd here at Harbour. For New Zealand, it just wasn't their night. Take nothing away from this team. They are so well coached.
3: रविवार को फाइनल मैच की शुरुआत में मेजबान टीम का बॉल पर ज्यादा कब्जा रहा और वे बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मेहमान टीम ने पहला बड़ा मौका तब बनाया जब नवनीत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। उन्होंने 4थे मिनट में एक जबरदस्त स्ट्राइक के साथ इस सेट पीस से गोल किया और भारत को बढ़त दिलाई। भारत ने ट्रांजिशन में शानदार खेल दिखाया और अपनी ऊर्जा से न्यूजीलैंड के डिफेंस के लिए कई मुश्किलें खड़ी की। उन्होंने पहले क्वार्टर में मिले 5 पेनल्टी कॉर्नर पर अपनी बढ़त बनाई। 15वें मिनट में सुनीलिता टोपे ने दीपिका के तेज शॉट को दिशा देकर स्कोर दोगुना कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भारत ने अनुशासित खेल जारी रखा जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी लय हासिल कर वापसी की कोशिश की। मेहमान टीम को भी अंतर कम करने के कुछ मौके मिले लेकिन कोई भी टीम दोबारा गोल नहीं कर सकी, जिससे हाफ टाइम तक भारत के पास 2 गोल की बढ़त बरकरार रही। तीसरे क्वार्टर में भारत ने मजबूती बनाए रखी और जबरदस्त डिफेंस का।
1: और अब बात बॉक्सिंग की। भारत ने चेक गणराज्य में आयोजित 56वें ग्रांड प्री उस्तीनाद लाबेम बॉक्सिंग टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक जीते।
4: महिला टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए 5 में से 4 मुक्केबाजों ने स्वर्ण जबकि 1 ने रजत पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, 54 किलोग्राम में मौजूदा एशियन चैंपियन प्रीति पवार, 51 किलोग्राम में साक्षी और 60 किलोग्राम में प्रिया ने अपने अपने फाइनल में सर्वसम्मति से जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता। 65 किलोग्राम में परवीन ने रजत पदक हासिल किया। लवलीना बोरगोहेन ने 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इटली की मेलिसा जेमिनी को 5-0 से हराया। प्रीति ने 54 किलोग्राम टाइटल मुकाबले में फ्रांस की जेसा मार्सेल को इसी अंतर से हराया। साक्षी ने 51 किलोग्राम फाइनल में फ्रांस की मेसून बोरेगा के खिलाफ 5-0 से शानदार जीत दर्ज की। प्रिया ने 60 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने के लिए चेक रिपब्लिक की बारबोरा मैक्सोवा को 5-0 से शिकस्त दी। भारतीय पुरुष टीम ने भी 4 स्वर्ण पदक जीते जिसमें जादूमणि सिंह मांडेन, बाम, सचिन, अंकुश और नरेंद्र शामिल रहे। जादूमणि ने 55 किलोग्राम फाइनल में इंग्लैंड के अब्दुल बर्टन को 4-1 से हराया। सचिन ने हंगरी के वेरेस रोहलैंड को और अंकुश ने चेक गणराज्य के फ्लोरियन डैनियल पर 5-0 से बड़ी जीत दर्ज की। नरेंद्र ने हैवीवेट फाइनल में आर्मेनिया के डेविड चालियोन के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज की। 65 किलोग्राम वर्ग में आदित्य प्रताप यादव और 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पुखारिया को अपने अपने फाइनल में करीबी हार के बाद रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। 70 किलोग्राम वर्ग में सुमित कुंडू ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में आज भारत के अभय सिंह और वेलावन संथिल कुमार ने लगातार तीसरे साल पुरुषों का खिताब जीता। इस चैंपियनशिप में भारत

0: ने तीनों कैटेगरी में पदक जीते। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। और श्रोताओं अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे

0: शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, नफ के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी और इससे

0: भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता

जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है आराधना फिल्म से। गीत को आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। रचनाकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार एस डी बर्मन।

मेरा गांव मेरा देश, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ। गीत के बोल आनंद बख्शी की, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

लता मंगेशकर के गाए मेरा गांव मेरा देश फिल्म के इस गीत के बाद कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत सरगम फिल्म से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी के गए सरगम फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री बी एस भटनागर। तो लीजिए सुनिए नाटक मुक्ति धन।

0: रहमान मियां, रहमान मियां है।
1: कौन है?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी से नोटिस आया है।
1: रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे।
2: किसे पूछते हैं सरकार?
0: रहमान मियां के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान?
2: जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें।
0: वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अभी 3 हफ्ते हैं और हाँ ये लो दस्तखत कर दो, ये लो कलम।
2: जी
3: रहमान बकलम खुद,
2: ये लीजिए।
0: खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो।
2: बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब।
0: अच्छा तो मैं चलता हूँ।
2: कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा।
0: नहीं नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ, 2-3 और गांव के संबंध भी देने।
2: सलाम जमादार साहब।
0: सलाम।
1: अब तुम वकील करोगे बेटा?
3: और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा, इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चांग पड़ा है।
1: इतने रुपए कहाँ से लाओगे?
3: कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा।
1: बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आए। अम्मा मेरे पास 4 चूड़ियाँ थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई, उधार ले लूँ ना कहीं से?
2: उधार किससे ले लूँ, महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं।
1: घर में ले देकर ये 2 बैल हैं।
2: बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा?
1: फिर इस गाय ही को?
4: बहू
3: तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है।
1: तो फिर करोगे क्या?
3: कुछ तो करना ही होगा।
1: या अल्लाह।

0: तुम गेहूं बेचना ही नहीं चाहते, यहाँ बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो।
1: बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव गांव न घूमता।
2: अरे लाला छोड़ गया को, बगैया मुझे थमा, ये ले 30 रुपए नगद है, ला रस्सी दे। अरे खाटा क्या सोचा, ला
1: रस्सी गौ कुछ ही नहीं देती हो भाई,
2: पैसे दे रहे हैं।
1: अरे ये भी कुछ,
0: अरे भैया मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ, बोल क्या इरादा है। भैया तुम चुप रहो, मैं मेरे भगवान का दे रहा हूँ बात ही आप।
3: अरे ऐसी भीड़ लगा रखी है,
0: आइए आइए मुख्तार साहब। सलाम
2: सलाम
3: सलाम।
0: हुजूर ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है, मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता।
2: हुजूर 34 तो मैं दे दूं, ये बेचने वाला तो बने।
3: गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है।
2: हुजूर ये देखिए,
4: गर्दन भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन। हुजूर
3: वाह बछड़ा भी सुंदर है।
2: हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी।
3: क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो?
2: रहमान हुजूर, पचौली में रहता हूँ, पास के गांव में।
3: दूध देती है?
2: हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूले। बच्चे पैर के

0: साथ खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे।
1: क्या दाम मांगते हो?
0: 50 रुपए हुजूर।
1: हमें तो 35 का माल जचता है।
0: माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर। इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर।
1: देखो, अब सौदा तय करने की बात करो, हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे। बोलो हाँ या नहीं।
0: क्या कहे हुजूर? चलिए, गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुंचा देता हूँ। चलिए हुजूर।
1: रहमान, एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं ली?
0: हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गांव को उनसे छीन ले जाते हुजूर।
1: तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी?
0: थी सरकार, बड़ी विपत में पड़ गया हूँ, रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर।
1: लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे।
0: इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता।
1: गाय को तुमने प्यार से रखा है, वो तो दिखता है।
0: सरकार, इसे जितनी खली देंगे ना उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता सरकार।
1: तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी।
0: हुजूर, एक अर्ज और है।
1: क्या?
0: अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर।
1: अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिक्र मत करो। हाँ
0: जी सरकार।
1: बस यही सामने फाटक वाला मकान हमारा है।
0: जी सरकार। जी
1: ये कोठरी इस सामने वाली गऊ का घर है। आ जाओ आ जाओ।
0: जी
1: बस यही बांध दो खूंटे से। हाँ, और देखो इस खूंटे से बछड़े को।
0: जी बाबा जी। बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है।
1: ये लो रुपए, गिन लो।
0: जी, 10, 10-20, 10-30, 5-35। ठीक है सरकार, ठीक है। अच्छा, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: अजी सुनती हो? कहाँ हो?
2: आई। हाँ कहो।
1: एक नायाब चीज लाया हूँ आज।
2: क्या?
1: गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु।
2: सच?
1: एक मुसलमान बेच रहा था, गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया।
2: वो कैसे?
1: गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची।
2: ओह।
1: वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची, क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा।
2: जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा, नेक आदमी था।
1: अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है।
2: गऊ गाय घर में बंधी है ना।
1: चलो दिखाते हैं।
2: चलो।
1: अरे आओ आओ,
2: चलो चल कर देखें।
1: मुसलमान भी बड़ा सजीदा और सुंदर है।
2: अच्छा?
1: हाँ
2: चलो।
0: सलाम हुजूर।
1: सलाम। तुम्ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना?
0: जी हाँ हुजूर, जी हाँ।
1: रहमान है ना तुम्हारा नाम?
0: बजा फरमाया हुजूर।
1: कैसे आना हुआ?
0: हुजूर, बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है, अम्मा बूढ़ी हैं, हज करना चाहती हैं हुजूर, पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार। आप 200 कर्ज दे दें हुजूर तो काम चल जाएगा।
1: रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो
3: जी हुजूर,
1: मैं वादे पर रुपए लेता हूं, अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे?
3: हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर।
1: अच्छा तो बताओ कब दोगे?
3: सरकार दो साल की मियाद रख लें हुजूर।
1: ठीक, लेकिन अगर दो साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी।
3: ठीक है सरकार, ठीक है।
1: अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा।
3: जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ।
1: दस्तखत कर सकते हो?
3: हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है।
1: ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो।
3: जी हुजूर। रहमान पकलम खुद, ये लीजिए हुजूर।
1: गवाह तुम नहीं लाए हो, खैर वो मैं करवा दूंगा, ये रुपए लो। 180 हैं।
3: 180?
1: हाँ हाँ 180, कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली की, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं।
3: आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम।
3: छोड़ मुझे,
4: चल चल।
3: क्या
4: आया? अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता, चलता है चल।
3: चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो।
4: अरे अच्छा अच्छा चल।
5: सरकार, रहमान को ले आया हूँ।
3: सलाम हुजूर।
1: क्या सलाम हुजूर, दो साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई, बुलवाने पर आए हो। क्या तुम्हारे दो साल अभी पूरे नहीं हुए?
3: हुजूर
1: लाओ, रुपए कहाँ हैं?
3: हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ।
1: अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है, मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए?
3: अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर, तभी से बीमार पड़ी हुई है, रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हुजूर कुछ सेवा कर लूं, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है।
1: बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है।
3: हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं, पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हुजूर।
1: इस सबसे हमें सरोकार नहीं है, तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उज्र कर रहे हो कि
3: अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए, अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला टली हुजूर।
1: एक साल की मियाद बढ़ा दूंगा पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ
3: जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी।
1: ठीक, अब तुम जा सकते हो।
3: हुजूर भाई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर।
1: सलाम।

0: ने क्या कहा?
1: कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे।
0: सख्त सुस्त नहीं कहा?
1: नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है, मेरे कहने पर एक साल की मोहलत और देती है।
0: बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए।
1: नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं।
0: खुदा तुम्हें बरकत दे, अब मेरा वक्त आ गया, गम न करना।
2: अम्मा
0: बेटा,
2: अम्मा आप जी छोटा ना करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी।
0: नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती।
1: एक और पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो।
0: तुम लोगों ने मेरी
1: अम्मा

0: सलाम हुजूर।
1: तुम क्या करने आए हो?
0: क्यों मेरे पीछे पड़े हो?
1: मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
0: अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा।
1: अरे सुनो
0: जी,
1: जाते कहां हो?
0: सरकार,
1: कैसे आए थे? क्या कुछ काम था?
0: नहीं सरकार, ये सलाम करने आया था हुजूर।
1: फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो?
0: हुजूर, अम्मा।
1: क्या? तुम्हारी अम्मा?
0: हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है।
1: रो मत, रोने से क्या फायदा है, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ।
0: हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती हुजूर।
1: कहो क्या बात है?
0: हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया। अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर।
1: ऐसा क्या करना चाहते हो
0: हुजूर? अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत।
1: जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना।
0: सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा।
1: तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है
0: हुजूर? सरकार, 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा।
1: देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूँ
0: सरकार,
1: लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा।
0: अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी।
1: यहाँ दस्तखत करो।
0: आपकी बहुत मेहरबानी है।
1: ये लो कलम।
0: बहुत मेहरबानी है रहमान बकलम खुद, ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर।
1: सलाम।
0: सलाम।
2: अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे।
3: अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती।
2: अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथ ही भी घुसे तो समा जाए।
3: ए, तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा।
2: मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे।
3: सुनो।
2: हाँ बोलो।
3: अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा?
2: अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा।
3: ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे?
2: अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा।
3: लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना?
2: अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा।
3: अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए।
2: हाँ कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं।
3: और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलिहान में आती,
2: और खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है।
3: बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल,
2: नहीं तो
3: फैसला।

0: रहमान ले एक दो दम तू भी लगा ले।
1: लाओ काका लाओ। वाह वाह रहमान, अब के तेरी ऊख बड़ी घनी उठी है भैया।
0: बस किसान की मेहनत का फल तो फसल ही है भैया।
1: ये तो सच है काका, मेहनत में रहमान की तरफ से कसर नहीं हुई।
0: तब देख ही लो कैसी जोरदार ऊख है।
2: ये लो, तुम भी दो चार दम लगा लो भैया।
1: लाओ भैया लाओ।
3: भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है?
1: ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा। भैया मैं तो समझू हूँ 800 का बिक जाएगा।
3: पर मंडी में नया गुड़ पहुँचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है।
1: अरे कम से कम 700-750 तो कहीं नहीं गए।
3: तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो।
1: आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान।
3: अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी? मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी।
0: चिलन ताजा करने के काम भी आया है।
3: तुम ठीक कहते हो काका।
0: अरे क्या कर रहा है रहमान, आपको मत छेड़।
1: अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया। अरे कम्बख्त ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास?
2: अरे खेत में लग गई। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर तो ऊख तोड़ने दे।
1: अरे सारे ऊख पर घर में तोड़ने का दे। बाहर होगा आग यही तो बढ़ रही है। चलो जल्दी करो, देख जा रहे हो कैसे ऊख को।
2: अरे अयूर
1: रहमान भैया, रहमान भैया सब्र करो। उसकी मर्जी के आगे किसकी चली है?
3: जो होना था सो हो गया। किस बुरी तरह रूप जल रही है।

0: ये तो लाला का चपरासी आ रहा है, अब क्या होगा? खुदा अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। जा मेरे अल्लाह, कहाँ छुप जाओ, कहाँ छुप जाओ।
1: रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी।
0: यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना।
1: अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ
0: देखते हैं जमादार साहब, सारी भूख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता।
1: मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी भूख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं।
0: मेरा हाथ छोड़ दो भैया।
1: अरे चल,
0: मुझे मत गिर।
1: चल चल चल,
0: मैं खुद चल रहा हूँ।
1: चलता है या मैं? चल चल चल, सरकार बुला रहे हैं।
0: हुजूर मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर।
2: अरे ये क्या करते हो, मेरे पांव मत पकड़ो, छोड़ो।
0: मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदावंद बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा।
3: क्या सब भूख चल गई?
0: सरकार जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर भूख लगी हुई थी सरकार, गरीब परवर ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरिन हो जाता।
3: अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं?
0: हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, हुजूर के रुपए सर पर है और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। दो बार वायदे किए, दोनों

0: झूठा पड़ा। अब वादा नहीं करूंगा हुजूर, अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा। मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा।
1: तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरजू कौन सी है?
0: यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूं हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर।
1: उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए।
0: अरे हुजूर, ये कैसे समझ लो, यहां ना दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर।
1: नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था।
0: सरकार?
1: हाँ रहमान, हाँ।
0: नहीं नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर।
1: कैसा बोझ? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे की भी देनदार नहीं हो।
0: पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर।
1: नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो।
0: नहीं हुजूर, नहीं।
1: तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था।
0: हुजूर,
1: मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए।
0: सरकार।
1: और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे।
0: हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा, मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा।
1: नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो।
0: नहीं हुजूर, गुलाम।
1: गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त।
0: सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत।

मुक्ति धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री बी एस भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुज्तबा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, एच के वैश्य, एल एन भारद्वाज, आर एच चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।

हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जसराज का राग गुंजी कांगड़ा में गाया ख्याल और पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग सोहनी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं पंडित जसराज के राग गुंजी कांगड़ा में गाए ख्याल से। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है कैसे कीजिए। द्रुत ख्याल की बंदिश तीन ताल में है, बोल हैं नैया लगा दो मुरी पार। आपके साथ तबले पर संगत की है केदार पंडित ने, तो आइए सुनते हैं पंडित जसराज का राग गुंजी कांगड़ा में गाया ख्याल।

अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का राग गुंजी कांगड़ा में गाया ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत की थी केदार पंडित ने। और अब कार्यक्रम के समापन में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग सोहनी। आपके साथ तबले पर संगत की है आनिंदो चटर्जी ने।

अभी आप सुन रहे थे पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाए राग सोहनी। आपके साथ अबले पर संगत की थी अनिंदो चटर्जी ने। और अब इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद

0: प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिकगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।